हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026, प्रातः के 5:58 हुए हैं। आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है इस मंगल धुन के साथ।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है।

0: मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आपको लिए चलते विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम की ओर।

sientan. संस्कृत का एक श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात जो आलस करते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती, जिनके पास विद्या नहीं होती वो धन नहीं कमा सकते, जो निर्धन हैं उनके मित्र नहीं होते और मित्र के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये था चिंतन। अब भक्ति संगीत।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरोखा लिखा जोखा आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कान आज भाग 225। संगीत सरिता कार्यक्रम में चल रही है श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक पंडित SL कंडारा। आज तीसरी कड़ी होगी सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर।

8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी। सुबह 8:30 पर चित्रलोक, सुबह और शाम 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा जो केंद्रित होगा निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। सुबह 10:00 आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी, कहानी निवेदिता श्रीवास्तव की, संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11:00 चित्रपट संगीत, 11:30 पर मैटिनी शो कार्यक्रम में विश्व योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम सुनवाया जाएगा, योगीराज भारत भूषण भारतेंदु से बातचीत योग के विषय पर। 12:05 पर यादों की महफिल, 1:00 सुरीला सफर। 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे। दिन में 3:00 मनचाहे गीत कार्यक्रम होगा, 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत आप नाटक सुनेंगे मृत्युहीन प्राण। मृत्युहीन प्राण नाटक का पहला भाग आज सुनवाया जाएगा, मूल बांग्ला नाटक आलोक भट्टाचार्य का, हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठौलिया, प्रस्तुतकर्ता सुदर्शन कुमार। कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से बातचीत का तीसरा भाग सुनवाया जाएगा बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में शाम 4:00। शाम 5:00 छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिएगा संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार तीसरा भाग। जाने माने अभिनेता अमरीश पुरी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम शाम 7:00। 7:45 पर जिज्ञासा। रात 8:00 हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में कहानी स्वामिनी का तीसरा भाग, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, वाचन ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। 8:15 पर सुनिएगा चित्रलोक, 8:45 पर समाचार, 9:00 आपके लिए। रात 10:00 छाया गीत, 10:30

नेट पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। तो ये था लेखा जोखा आज दिन भर के मुख्य कार्यक्रमों का। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने रामचरितमानस गान आज भाग 225।

भरत तथा कुलगुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या तथा जनकपुर से आए सभी लोग चित्रकूट में 4 दिनों से निवास कर रहे हैं। श्री राम को देख सभी नरनारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हें वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि देव अनुकूल हों, तभी राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय देख राजा जनक का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया, उन्हें उचित सम्मान से आसन दिए। दोनों टोलियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिथिल हैं। उनकी आंखों में हैं प्रेम और शोक के

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का पुनश्च स्वागत है और स्वागत है जाने माने संगीतज्ञ वायलिन वादक पंडित एस एल कंडारा जी का। पंडित जी, वायलिन का विहंगम संसार ये शीर्षक भी आप ही का दिया हुआ है
2: जी।
1: वायलिन की व्यापकता की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि फिल्म संगीत में कितना अधिक इसका इस्तेमाल हुआ है।
2: बिल्कुल जयंत जी, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। और इस बाजे की व्यापकता को आप देखिए कि पाश्चात्य संगीत में गज के बाजों में इसकी प्रमुखता सिद्ध हुई
1: जी।
2: और बड़े बड़े कंपोजर्स ने इस पे काम किया और बहुत अच्छा काम हुआ। और उनको देख के हिंदुस्तान में भी ये बाजा जब आया
1: जी,
2: तो हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे क्लासिकल और वेस्टर्न भी, जुबिन मेहता का मैं नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने भी इस बाजे का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया अपनी सिम्फनी में। और फिल्म म्यूजिक की बात करें आप तो फिल्मों में तो इसका लाजवाब इस्तेमाल हुआ है। एक ज़माना था 50-50 वायलिन इस्तेमाल होते थे फिल्म स्टूडियोज में, और उस ज़माने में इतने अच्छे अच्छे इस पे पीसेस बने, इतना अच्छा अच्छा काम हुआ कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। श्रोताओं को आप एक पीस जरूर सुनाएं, लेकिन फिल्म का, जो कि हृदयनाथ मंगेशकर जी ने कंपोज किया हुआ है
1: जी, आशा जी की आवाज में होगा।
2: एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से झूठे नैना बोले सांची बतियां
1: जी जी, ये वो गीत है। और इस गीत में जो ग्रुप वायलिन बजा है
2: जी,
1: आप उस झलक की बात कर रहे हैं।
2: उसकी बात कर रहा हूँ बिल्कुल।
1: तो उस गीत की ये झलक जहाँ खास तौर से ग्रुप वायलिन बजाया गया है, पहले अपने श्रोताओं को सुनाते हैं फिर उस पर बात करें।
2: एग्जैक्टली।

0: क्या बात है, मजा आ गया पंडित जी। लग रहा था कि बस इसे सुनते ही चले जाएं, मगर इसकी विशेषता के बारे में आप बताइए।
1: इस गाने में, इस गीत में जिस तरह से हृदयनाथ मंगेशकर जी ने वायलिन का इस्तेमाल किया
0: जी,
1: मेरे ख्याल से 25-30 वायलिन जरूर होंगे, क्योंकि मैं तो जब गाना रिकॉर्ड हुआ तब उपस्थित नहीं था, तो उसका अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितना सारे वायलिन उसमें बजे हैं और किस दक्षता के साथ वो ऑर्केस्ट्राइजेशन हुआ है।
0: जी हाँ जी,
1: फिल्म में अच्छे अच्छे काम हुए हैं इस बाजे के साथ। और ये वहाँ से अगर शुरू करें आप, रोशन साहब के ज़माने से, मदन मोहन जी के ज़माने से, या नौशाद साहब के ज़माने से, तो एक से एक गीतों में इस वाद्य की उपस्थिति आपको प्रभावित करेगी। और बहुत अच्छे अच्छे पीसेज हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बनाए हैं
0: जी
1: इस वाद्य को लेकर। एक गीत मुझे याद आता है, वैसे तो कई सारे गीत हैं जिनका जिक्र करना संभव नहीं यहाँ पे, लेकिन नौशाद साहब का एक गीत आप बजा सकते हैं जिसमें बहुत संजीदा किस्म के पीस उन्होंने इस्तेमाल किए हैं
0: जी।
1: कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई,
0: वाह,
1: लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई।
0: बहुत ही खूबसूरत गाना है
1: जी,
0: आइए सुनते हैं।

0: पंडित जी, ये तो हुई ग्रुप वायलिन की बात। जब समूह में वायलिन बजता है, सोलो वायलिन का भी बड़े खूबसूरत ढंग से इस्तेमाल हुआ है फिल्म संगीत में, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: देखिए, सोलो वायलिन को लेके भी इसमें अच्छे अच्छे पीसेस लगाए हैं लोगों ने, और प्यारे लाल जी, लक्ष्मीकांत जी,
0: जी
1: जो पुराने संगीत निर्देशकों में रहे, प्यारे लाल जी का तो एक स्कूल ही था, फिल्म म्यूजिक सिखाते थे वो, मतलब फिल्म वाले लोग सब उनके शागिर्द थे वायलिन को लेके। और प्यारे लाल जी के पिताजी, शायद उनका नाम राम

0: प्रसाद जी था, वो बहुत प्रचलित थे पूरे बंबई में गुरु के रूप में सिखाने में, और प्यारेलाल जी खुद अच्छा वायलिन बजाते थे, तो उनके हिसाब से कुछ उनमें उन्होंने कुछ पीसेस दिए हैं। जैसे एक शायद मुझे याद आ रहा शोर फिल्म, अगर आपको याद आ रहा हो,
1: मनोज कुमार निर्देशित,
0: जी जी जी,
1: और इसमें जो गीत है एक प्यार का नगमा है,
0: एग्जैक्टली,
1: इसमें बहुत ही सुंदर वायलिन का पीस बजाया है प्यारेलाल साहब ने,
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाए,
0: बिल्कुल श्रोताओं को सुनवाइए।

0: शोर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पंडित जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का उल्लेख हो रहा है आने वाली अगली कड़ी में। प्यारेलाल साहब ने जहां जहां अपना वायलिन वादन जिन गीतों में इस्तेमाल किया है उसका हम विस्तार से जिक्र करेंगे, उसकी बात को आगे बढ़ाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: आज की ये कड़ी यही समाप्त हो रही है। श्रोताओं, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: बिल्कुल, नमस्कार।
2: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

आइए सुने भूले बिसरे गीत। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। लता मंगेशकर के एक बेमिसाल गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं। जिद्दी फिल्म का ये गाना, एक बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म जिसके जरिए कई कलाकारों की शुरुआती यात्रा थी, और प्रेम धवन के बोलते खेमचंद प्रकाश की तर्ज इस गाने में। साल 1948 ये फिल्म बनाई थी शाहिद लतीफ ने।

सितारों के करियर की शुरुआती फिल्म थी। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, ये किशोर कुमार का गाना था जो उनका शुरुआती प्लेबैक था। अब इत्तेफाक की बात यह है कि अगला गाना है मुकेश का और वो उनका शुरुआती प्लेबैक है।

0: डॉक्टर सफदर आह का लिखा हुआ ये गीत था, अनिल विश्वास की तर्ज थी, 1945 की फिल्म मुकेश की आवाज। जैसे कि मैंने कहा कि ये पार्श्व गायक मुकेश का पहला प्लेबैक था। दरअसल मुकेश का जो पहला गाना है वो ये नहीं है, फिल्म निर्दोष में 1941 में उन्होंने गाना गाया था, दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या, लेकिन ये प्लेबैक नहीं था क्योंकि ये गाना उन पर ही फिल्माया गया था, इस फिल्म के हीरो भी वही थे। दरअसल मुकेश और तलत महमूद ऐसे दो प्लेबैक सिंगर रहे हैं जिन्हें एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक रहा है और उन्होंने कुछ फिल्में भी की। यहां किशोर कुमार का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो तो बाकायदा एक्टर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट क्या नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए साल 1950 पर, चितलकर और साथी, गीत पी एल संतोषी का, संगीत सी रामचंद्र का।
1: ए, मैं हूँ एक खलासी, मैं हूँ एक खलासी, मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी।

दीवाना और हुसन का मैं परवाना, मैं अपने से अनजाना और दुनिया से बेगाना। हर इश्क का मैं दीवाना और हुसन का मैं परवाना, मैं अपने से अनजाना।

0: 1950 में आई फिल्म सरगम का ये गाना था। चितलकर और साथियों की आवाजें थी। पीएल संतोषी के बोल थे। पीएल संतोषी यानी प्यारे लाल संतोषी आज के जमाने के जाने माने लेखक निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता, और संगीत खुद सी रामचंद्र का था।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई
3: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर बोल रहे हैं। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें। अब से बस कुछ देर बाद यानी कि 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। अमृत कलश 7:30 से, प्रातः 8:00 का समय होगा समाचार प्रभात का। 8:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संगम। 8:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, जिसमें आज की बात के अंतर्गत

आप सुनेंगे विश्व शरणार्थी दिवस विषय पर। इसी कार्यक्रम में एक झलकी भी सुनेंगे तमाशा। लेखक होंगे दिनेश भारती और प्रस्तुति दुर्गा मेहरोत्रा की। प्रातः 9 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 पर आप सुनेंगे बातें आसपास की, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे गोंडर ग्राम जिला गोंडा और महर्षि पतंजलि जन्म स्थली विषय पर। 11:55 पर आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल। 12:30 पर आप सुनेंगे अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग सजी फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। आप सुनेंगे दोपहर 1 बजे फेसबुक श्रोताओं के साथ 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम होगा गीतांजलि। 2:15 पर दोपहर समाचार 2:30 का समय होगा कार्यक्रम नारी जगत का, जिसमें आज होगा सजी फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली, जिसमें विषय होगा कितना समय अपने दैनिक जीवन में देती हैं योग को। 3:55 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली में पीएम किसान के 23वें किश्त के हस्तांतरण का आंखों देखा हाल। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी शाम 5 बजे, जिसमें चर्चा का विषय होगा विश्व शरणार्थी दिवस। कार्यक्रम में हमारी धरोहर के अंतर्गत आप सुनेंगे खजुराहो के स्मारक समूह। इसी कार्यक्रम में वार्ता सुनेंगे डिजिटल तकनीक और योग जानकारी देंगे अविरल श्रीवास्तव। आर्थिक जगत के अंतर्गत आप सुनेंगे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। शाम 5:30 का कार्यक्रम होगा लोक संगीत का। शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में और 6:20 पर होगा संस्कृत में समाचार। 6:10 का समय होगा शाम सुहानी का। लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुंजे स्वर गांव के का समय होगा 6:30। 6:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान बाड़ी, जिसके अंतर्गत चर्चा का विषय होगा खरीफ लतादार सब्जियों की खेती। इसी कार्यक्रम में आप भेंट वार्ता सुनेंगे खरीफ में औषधीय पौधों की नर्सरी की उन्नत विधि। जानकारी देंगे डॉक्टर राम सुमन मिश्रा सह प्राध्यापक औषधीय सब्जी विभाग कृषि एवं प्रौद्योगिकी विभाग कुमारगंज अयोध्या। इनसे बातचीत की है प्रभाकर शुक्ल ने। इसी कार्यक्रम में एक अन्य भेंट वार्ता भी सुनेंगे खेती और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। जानकारी देंगे रविन्द्रनाथ पांडे, इनसे बातचीत के है राम प्रकाश पांडे ने। 7:20 पर प्रादेशिक समाचार। 7:30 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से बातचीत। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। 8:07 समाचार संध्या का समय होगा 8:45 न्यूज एट 9। रात्रि 9 बजे 9:15 पर आप सुनेंगे महफिल गजल। 9:30 पर सजीव फोनिंग कार्यक्रम सजीव फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

0: निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण।

0: युवाओं और उद्योगों के बीच सेतु का निर्माण कर रही है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एसआईटी की जांच में सामने आ जाएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल की 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और आगामी 3 दिनों तक और गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश भर से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती है।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल हुए। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रूपये तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन को साकार करने की दिशा में डबल इंजन सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में ब्रेक थ्रू साबित हुआ है।
2: जो उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है, अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बन करके ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंच प्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है।
0: मुख्यमंत्री ने श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच बैठाई है। एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।

0: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
1: मुख्यमंत्री ने नगर निगम अयोध्या में 290 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में देवी पाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग की बैठक की और प्रमुख 13 मार्गों के विकास को मंजूरी दी। उन्होंने कुल 4,901.65 करोड़ रुपए की 1,000 से अधिक विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोहरीघाट ओडिया ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मऊ के रास्ते संचालित होने वाली छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी जो दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी होते हुए पटना और सिलीगुड़ी तक जाएगी।
2: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
1: इस दौरान मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में इंडिया फर्स्ट की भावना राष्ट्रीय चरित्र बन गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसी भावना ने वैश्विक मंच पर भारत के मान सम्मान और सामर्थ्य को नई ऊंचाई दी। इसी क्रम में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा कल वाराणसी में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और पत्र सूचना ब्यूरो के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
3: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ जिलों में आज गरज चमक के साथ हल्की वर्षा को तो कहीं पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और पूरे प्रदेश में मौसम इसी तरह शुष्क बना रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच सेतु का निर्माण कर रही है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एसआईटी की जांच में सामने आ जाएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री

0: अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल की 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन और आगामी 3 दिनों तक और गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: XX.9 FM पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत कलश।
2: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
5: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
7: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
6: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
7: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
6: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
8: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा, आपका सच्चा हम सफर।
9: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
8: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
9: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
8: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
9: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
8: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
9: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
8: ayodhyaakashwani@gmail.com।
10: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
1: कार्यक्रम अमृत कलश में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला भजन सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

0: वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कॉल करें 94532211909।
1: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलॉर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद कॉल करें 91-16-76-47-46।
2: कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानी हम सुन

0: ऐसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास।
4: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
4: और व्हाट्सएप नंबर 8303211 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
6: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
7: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
6: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
7: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
6: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
7: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
6: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
7: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
8: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भजन, जसविंदर नरूला और अभिजीत की आवाज में।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत कलशी, आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM पर। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: 6866. 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए, एक दिन नहीं हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो नीरो। करो योग, रहो नीरो।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्र

0: अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव

0: की है.
1: We have been able to achieve that in the first.
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं. 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं. 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं. और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स हैं. इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं, और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं.
1: They are all designed in India now.
0: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है. अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं. इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है. इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है. भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है, और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है. आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं.
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है. आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं.
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है. अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा. परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है. कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी. और अब खेल खबरें. भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MH चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है. और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज.
5: धन्यवाद विशाल. टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है. दैनिक जागरण की सुर्खी है, टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही. फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है. इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों की सेहत से भी जुड़ा है. पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाह का. संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है.
4: धन्यवाद फरहत. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे. वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त. भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल. और SEBI ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई. इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.

0: 61.9 FM पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संगम।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए अयोध्या आकाशवाणी @gmail.com, AYODHY

0: by A A K A S H V A N I @gmail.com.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम सुर संगम का पहला गजल आइए सुनते हैं भूपिंदर की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर संगम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 FM और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर बोल रहे हैं।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9268।

0: 7798901
1: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
2: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
3: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
2: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
3: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
2: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
3: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। आपके संदेश
4: संदेश से आते हैं,
3: आपके गीत
4: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
3: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911।
1: निवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
5: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
5: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
6: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम अयोध्या में हम सबसे पहले बात करते हैं आज की बात के अंतर्गत, विश्व शरणार्थी दिवस पर। दोस्तों जरा सोचिए, आप सुबह उठे अपनी चाय की चुस्की ले और अचानक आपको पता चले कि आपको अपना वो घर, वो गली, वो शहर जहां आपका बचपन बीता, जहां आपकी यादें हैं, सब कुछ बस एक बैग में भर के समेट के हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। वो भी इसलिए नहीं कि आपको घूमना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि अब आपको वहां जान का खतरा है। कैसा महसूस होगा, दिल कांप जाता है ना सोच के। आज 20 जून है, विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। आज का दिन उन करोड़ों लोगों के साहस, उनकी हिम्मत और उनके संघर्ष को सलाम करने का दिन है जिन्हें मजबूरन अपना वतन छोड़ना पड़ा। शरणार्थी यानी रिफ्यूजी, यह शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि यह चलती फिरती कहानी है। यह कहानी है युद्ध की, हिंसा की और बेबसी की। आज दुनिया भर के करोड़ों लोग अपने ही घरों में बेघर हो चुके हैं, इनमें से आधे से ज्यादा तो मासूम बच्चे हैं। ये वो लोग हैं जो कल तक हमारी और आपकी तरह डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, किसान या दुकानदार थे। उनका भी एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन रातों रात परिस्थितियां बदली और वे अपने ही देश में अजनबी हो गए या फिर किसी दूसरे देश की सीमा पर मदद की गुहार लगाने को मजबूर हो गए। पर जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है, इतनी मुश्किलों के बाद भी, सब कुछ खो देने के बाद भी जो चीज़ इन लोगों में नहीं मरती वो है उम्मीद। जी हाँ, जीने की उम्मीद, फिर से मुस्कुराने की उम्मीद। जब भी दुनिया में शरणार्थियों को पनाह देने की बात आती है, हमारा देश भारत सबसे पहले सबसे आगे रहता है। हमारी संस्कृति भी यही कहती है, अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। इतिहास गवाह है, चाहे वो तिब्बत से आए हो भाई बहन हो, श्रीलंका से आए भाई बहन हो या फिर अफगानिस्तान या म्यांमार के पीड़ित, भारत ने हमेशा मानवता को सबसे ऊपर रखा है और सिर्फ दोस्तों, शरारती सिर्फ मदद लेने

वाले ही नहीं होते, वे हमारे साथ जहाँ जाते हैं वहाँ की संस्कृति अर्थव्यवस्था को समृद्ध भी करते हैं। क्या आप जानते हैं मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी एक शरारती थे, उन्होंने भी अपना देश छोड़ना पड़ा। और आज के दौर में मशहूर फुटबॉलर लुका मोड्रिक या फिर टेक जगत के बड़े नाम कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिफ्यूजी कैंप से निकल कर पूरी दुनिया को बदला है। ये साबित करता है कि अगर इन लोगों को सिर्फ एक मौका और थोड़ी सी सहानुभूति मिले तो ये आसमान छू सकते हैं। रिफ्यूजी कोई बोझ या खतरा नहीं है, वे हमारी और आपकी तरह इंसान हैं जो सुरक्षित जीवन जीने का हक मांग रहे हैं। अगली बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो अपने घर को अपना सब कुछ खोकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा है तो उसे तिरस्कार की नज़र से नहीं बल्कि सम्मान और सहानुभूति की नज़र से देखें। उनके प्रति दया नहीं बल्कि अपनेपन का हाथ बढ़ाएं। किसी शायर की ये दो चार लाइनें, परिंदा जब्त करता है तो उड़ने की दुआ दे दें, जो बेघर हो चुका है उसको रहने की जगह दे दें। तो आइए इस विश्व शरणार्थी दिवस पर हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने का संकल्प लें जहां कोई भी इंसान बेघर ना हो, और अगर कोई मजबूर हो तो उसके स्वागत के लिए हमारे दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहें। तो श्रोताओं, अभी हमने बात की विश्व शरणार्थी दिवस पर, आइए सुनते हैं झलकी जिसका नाम है तमाशा, लेखक दिनेश भारती और प्रस्तुति दुर्गा मेहरोत्रा की।

0: पापा, ओ पापा, ओहो, आपको तो अखबार पढ़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं।
1: क्या बात है रमोला बेटी, तुम आज अपनी अम्मा के सुर में क्यों बोल रही?
0: आज संडे है कि नहीं?
1: अरे संडे ही तो अखबार पढ़ने का दिन होता है बेटी।
2: हाँ हाँ, बाकी दिन तो रामायण महाभारत पढ़ते हो ना।
1: समझ में नहीं आता रमोला की अम्मा कि तुमको मेरे अखबार पढ़ने से जलन क्यों होती है। देश विदेश की खबरें पढ़ता हूँ।
0: ओफो, आप लोग फिर लड़ने लगे पापा। देखिए, आपने पिछले हफ्ते सिनेमा चलने का वायदा किया था या नहीं?
1: सिनेमा? हाँ।
0: तो क्या नहीं चलिएगा?
1: चलूंगा क्यों नहीं बेटी, भला तेरी बात मैंने कभी काटी है? ये तो तुम्हारी अम्मा है जो हर बात तरकारी की तरह काटती रहती है। देखा देखा मेरी बात पे कैसे भैंस की तरह हुकारी मार रही है तुम्हारी अम्मा। और पूर्वजन्म के संस्कार कभी जाते हैं
0: क्या? पापा पापा जल्दी करिए, नहीं तो चक्रवर्ती जी आ जाएंगे अपने साले को फोन करने। पापा बड़ी अच्छी फिल्म लगी है, चलिए ना।
1: पहले अपनी अम्मा को तो मना ले।
0: अम्मा? अम्मा को आप ही मनाइए ना पापा, मैं तब तक आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ।
1: जी सुनो जी।
3: क्या है?
1: पिक्चर चलोगी जी?
3: मुझे नहीं देखनी अंग्रेजी फिल्म।
1: अरे वैसी फिल्म नहीं है भाई।
3: फिर?
1: अरे अच्छी फिल्म है, तुम चलो तो सही।
3: अच्छा, लेकिन कान खोलकर तुम अच्छी तरीके से सुन लो। यदि चलना हो तो भाई कोई भगवान भगवान जी वाली फिल्म चलो तब।
1: अरे
3: चलो।
1: वो तो तुम पड़ोस वाली बर्माइन जी के टेलीविजन पर हर इतवार को देखती ही हो।
3: देखो हम कह देते हैं कुछ भी हो, हम तो वही फिल्म देखेंगे।
1: ठीक है, न रमोला की पसंद न तुम्हारी, मैं आज तुम दोनों को अपनी पसंद की एक महान एक्शन सोशल फिल्म दिखाऊंगा।
3: अरे तो जाओ जहन्नुम में, मैं नहीं देखूंगी। हाँ
1: तुम्हारी अम्मा की वजह से मुझे अपना हर फैसला बदलना पड़ता है। इनकी जिद है कि ये तुम्हारी नहीं अपनी पसंद की फिल्म देखेंगी, तो मेरी भी जिद है कि मैं इनकी नहीं अपनी पसंद की देखूंगा। बस
0: देखिए पापा, आप लोगों के झगड़े में कभी भी मेरी कोई बात पूरी नहीं होती।
1: ठीक है, हम तीनों का टेस्ट अलग अलग है ना, लेकिन समय हम तीनों के पास एक ही है। ऐसी हालत में मैं तीन अलग अलग पर्चियों में तीनों के टेस्ट की फिल्मों के नाम अलग अलग लिख देता हूँ। जिस फिल्म की पर्ची पहले निकल आएगी वही चला जाएगा। क्यों, ठीक है ना?
3: ठीक है, लेकिन पर्ची मैं ही निकालूंगी।
0: नहीं मैं निकालूंगी।
3: नहीं,
1: मैं बाप हूँ, पर्ची मैं निकालूंगा।
0: हे भगवान, आप पर्ची निकालने पर भी झगड़ा। अच्छा पापा, पहले मैं तीन अलग अलग पर्चियों पर तीनों के नाम अलग अलग लिख देती हूँ। उसमें जिसका नाम पहले निकलेगा सिनेमा वाली पर्ची पहले वही उठाएगा। क्यों पापा?

0: गया अम्मा।
1: ठीक है
2: लीजिए, अब मैंने तीनों पर्चियां मोड़कर मिला दी, अब इसमें से एक पर्ची, हाँ एक पर्ची उठाइए तो पापा।
1: उठाता हूँ। अरे ये तो तेरे नाम की पर्ची है रबुला।
2: वेरी गुड, यानी सिनेमा वाली पर्ची मैं उठाऊंगी। अब मैं तीन पर्चियों पर तीनों फिल्मों के नाम लिख देती हूँ। इधर मत देखिए पापा। ये तीनों को मिला दिया, ये मेज पर रख दिया, अब मैं निकालूं पर्ची।
1: देखो भाई, अब तो कायदे कानून वाली बात है, जब पर्ची बेटी के पसंद की फिल्म की निकली है तो मन मार कर वहीं चलो, कभी बेटी का भी मन रख लिया करो भाई। अब जाकर तैयार हो जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी, उसमें बड़ी भीड़ होती है।
3: अरे जाती हूँ बाबा, लेकिन आज तो मैं इस निगोड़ी पर्ची पर्चे के चलते अंग्रेजी संग्रेजी फिल्म आंख बंद करके देख लूंगी। लेकिन अभी से मैं तुम्हें कह देती हूँ, अगले इतवार को मैं बिना पर्ची निकलवाए अपनी पसंद की ही फिल्म देखूंगी।
1: अरे देख लेना भाई, अब साड़ी बदल ले तो जाओ। गई?
2: मैं भी जाती हूँ कपड़े बदलने पापा।
1: अरे तू जरा रुक तो, पापा की बच्ची।
2: अब क्या है पापा?
1: ये क्या चमत्कार है, दोनों पर्चियां तेरे ही मतलब की निकली।
2: चमत्कार? चमत्कार कैसा पापा? अरे ये तो न्याय की बात है, मेरे नाम की पहली पर्ची तो आप ही ने निकाली थी पापा।
1: सच बोल, वरना वीटो पावर लगाकर तीनों सिनेमा कैंसिल कर दूंगा।
2: वो पापा, मैंने आपका फार्मूला लगाया था।
1: आए, यानी तूने?
2: पहली तीनों पर्चियों पर मैंने अपना ही नाम लिखा था, दूसरी तीनों पर्चियों पर भी अंग्रेजी फिल्म का ही नाम लिखा था मैंने।
1: यानी मेरा फार्मूला मुझी पर?
2: आप भी तो अम्मा से अपनी बात मनवाने के लिए यही फार्मूला अपनाते हैं पापा। लेकिन पापा अम्मा से मत बताइएगा, वरना मैं भी अम्मा से आपका फार्मूला बता दूंगी। हाँ नहीं तो
1: शैतान कहीं खेले। अच्छा जा तैयार हो जा जल्दी से, कहीं तेरी अम्मा ने सुन लिया तो तेरा मेरा दोनों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। अरे रमोला की अम्मा, तुमने साड़ी पहनी कि नहीं भाई? देर हो जाएगी तो फिर फिल्म तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी।
3: अरे आ रही हूँ भाई, अभी तो 12 ही बजे हैं।
1: पता नहीं तुम्हारा 12 कितने बजे बजता है, मेरा तो बज गया।
2: मैं आ गई।
1: ठीक है, तुम रमोला को लेकर बाहर आओ, मैं तब तक बाहर रिक्शा विक्शा देखता हूँ।
2: ठीक है।
1: अरे ए, ए, ए, ए, चारे।
4: अरे क्या है बाबू जी?
1: खाली हो?
4: अरे लौकेला ना है बाबू। अरे खाली रिक्शा देख के पूछा धब्बा कि खाली है कि नहीं। अरे खाली ना है तब फरल है का?
1: मेरा मतलब है नए सिनेमा हॉल चलोगे?
4: अरे चलब का है ना बाबू जी, अरे रिक्शा गाड़ी तक चलवे खातिर न चलावल जाला। अब ये बतावा पूरा रिक्शा चलवा की आधा?
1: अरे पूरा नहीं चलूंगा तो क्या, अपना आधा धड़ यहाँ छोड़कर जाऊंगा?
4: अरे बुजिया भाद मचिन बतकत काहे हुआ। अरे हमार मतलब रहे कि पूरा रिक्शा हो कि आधा।
1: पूरा, पूरा मुझे तुम्हारा समूचा रिक्शा लेकर सिनेमा चलना है, सिर्फ रिक्शे की हैंडल पैडल लेकर नहीं।
4: देखा बाबू 4 रुपया हुई। अरे हन्न दे बैठा दंड दे पहुंचाई तो के।
1: अरे अरे जल्दी जल्दी आ भाई।
4: अरे का हो सब चलिए का?
1: तो क्या मैं पूरे रिक्शे पर अकेले 4 रुपए में बैठूं?
4: अरे एक रिक्शा पर 3 फुल सवारी और वो 4 रुपया में? अरे हमार रिक्शा हो कि सगड़? अरे दूसर देखा दूसर? अरे हमरा के रिक्शा जमा करेंगे हवा।
1: रुको भाई रुको, तुम रिक्शे वालों में यही बुरी आदत होती है, जनानी सवारी देखी नहीं कि लगे हाथ पैर फैलाने, सिर्फ अकेली सवारी बैठा कर पूरे रिक्शे का पैसा लेना चाहते हो? 3 सवारी है तो 1 रुपया और ले लेना, अब यहाँ और कोई रिक्शा तो है नहीं, देर अलग हो रही है, पहुँचा दो भैया।
4: ठीक है, अच्छा भैया अगर कहा तो हुआ था, हम देखा 10 रुपया में पहुँचावे खातिर राजी हैं, तू राजी हुआ कि नहीं? हाली बोला हमके बहुत जल्दी है वहाँ।
1: 10 रुपया?
4: और का?
1: यहाँ से नए सिनेमा हॉल तक का 10 रुपया लोगे? जनानी सवारी देख कर मौके का फायदा उठाते हो, शर्म नहीं आती?
4: अरे हमारा के रिक्शा ही चमे शर्म नहीं लगे ले, तो किराया ही चमे का है शर्म लगी बाबू जी। अच्छा एक काम करे तो बेशरम बन के दूसरा रिक्शा देख ला। अरे हम जा रहे हैं।
2: कर लीजिए ना पापा, देर हो रही है।
1: क्या मुसीबत है, सिनेमा देखने से पहले दुनिया भर का खर्चा। चलो बैठो। अरे तुम बीच में बैठो ना रमोला की अम्मा, हम और रमोला किनारे बैठते।
4: अरे थाम के बैठिए बाबूजी। अरे नहीं तो रास्ते में रह गई ला तो हमारा के

0: दोस्त मत दिया। अरे हम रिक्शा रेल का माफिक चलावे ली समझ लिया।
1: अरे तुम रेल की तरह नहीं रॉकेट की तरह चलाना भाई, हमको तो जल्दी है ही।
0: ठीक है
1: चलो। अरे लड़ा मत देना भाई, लड़ा मत देना।
0: अरे तू रिक्शा में कब्बो कब्बो बच्चा छो बा। अरे बीड़े से हम नहीं दे रहा। अरे मालिक तनी बगल हटा। अरे रजा बचा। अरे हटा अल्लाह अल्लाह।
1: अरे अब रिक्शा क्यों रोक दिया भाई?
0: अरे लौके नहीं हो पूरा सड़क भाई। अरे जुखाम के नाग मतिन जाम हो गई लो।
2: अब क्या होगा पापा, ये तो बहुत दूर तक भीड़ रुकी हुई है।
1: ये सब तुम्हारी अम्मा की वजह से हुआ है। जल्दी तैयार हो जाती तो हम पैदल ही सिनेमा हॉल तक पहुँच जाते।
3: अब सड़क पर अटर पटर मत बको जी, रास्ता जाम हो गया तो उसमें मेरी क्या गलती है?
0: खैनी खा ले बाबू जी।
2: पापा रिक्शा छोड़ दीजिए, हम भीड़ में पैदल जल्दी पहुंच जाएंगे।
1: ठीक है, ये लो भाई रिक्शा वाले 2 रुपए, हम पैदल चले जाते हैं।
0: 2 रुपया? अरे आधा दूर आए नहीं, 5 रुपया तो 5
2: दे दीजिए पापा, अभी सिनेमा हॉल तक भी तो पहुंचना है।
1: लो भाई 5 रुपया लो, आप खुश हो?
0: अरे मर्दवा मेहनताना दे था हुआ की बछिया दान कर था हुआ। ये मन खुश हो के कौन बात कहिल है? अरे देखा सुना यार आवा, अब कोने अतरे से निकल जाइया, हम तो जाते रिक्शा पर सुते।
1: अरे रमोला तुम्हारी अम्मा कहाँ गई भाई? जरा सी चूक हुई कि भीड़ में मटर के दाने की तरह खो गई। अरे रमोला की अम्मा, अरे कहाँ हो भाई?
3: अरे पीछे तो खड़ी हूँ भाई, चिल्लाते क्यों हैं?
1: पीछे तो भीड़ में पीछे खड़ी क्या कर रही हो भाई, आगे रहो, दिखाई तो पड़ोगी, देखती नहीं कितनी भीड़ है?
3: अरे पीछे रमोला भी तो है, उसको छोड़ दूं क्या भाई?
1: रमोला तुम अपनी अम्मा का हाथ पकड़ो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, छोड़ो मत अपनी अम्मा का हाथ, नहीं तो इस भीड़ में खो गई तो ढूंढने के लिए टेलीविजन पर देने के लिए इसकी कोई तस्वीर भी नहीं है मेरे पास।
3: देखो मेरी चिंता मत करो, मुझे पूरे बनारस का रास्ता अच्छी तरह से मालूम है।
1: अरे रास्ता दिखाई पड़ेगा तब न मालूम पड़ेगा।
3: सुनो भीड़ में मैं कहती हूँ लड़ो मत। अरे भाई तुम लोग भीड़ में लड़ते बढ़ते क्यों हो? हटो जरा भाई, उधर हटो ना, जरा निकलने तो दो।
1: जल्दी जल्दी पड़ जाओ ना बोला, तुम्हारी अम्मा है ना?
2: है पापा है, आप जल्दी आगे तो निकलिए।
3: अरे मैं निकल रही हूँ भाई।
1: अरे हटिए भाई, रास्ते में खड़े हैं। आओ ना बोला आओ, ये भीड़ है कि तमाशा है, आगे खिसकी नहीं रही है।
3: धीरे से
1: जरा आगे बढ़िए भाई, कि जिंदगी भर यही पेड़ की तरह अड़े रहिएगा। और रमोला अम्मा को पकड़े रहना है।
3: अरे अरे अरे अरे मेरा पैर पिस गया भाई। अरे अपना पैर अपने पैर पर रखिए, औरतों का जरा भी ख्याल करते ही नहीं। अरे अम्मा भीड़ में हाथ पैर मत देखो, जल्दी चली आओ जल्दी जल्दी। अरे ये क्या, ये तो हाउसफुल है पापा।
1: हाउसफुल? पता नहीं बनारस में कितने लोग हैं कि सिनेमा में भी हाउसफुल कर देते हैं, ऊपर से सरकार को दोष देते हैं कि महंगाई।
2: पापा ये फिल्म बहुत अच्छी है पापा, ब्लैक ले लीजिए ना।
1: ब्लैक? इस महंगाई में सिनेमा ब्लैक का टिकट खरीद कर देखोगी
2: तो क्या? इतनी मुसीबत के बाद अब वापस बिना फिल्म देखे घर चलिएगा? मैं अब बिना फिल्म देखे घर वापस नहीं जाऊंगी। पापा वो देखिए ब्लैक वाला इधर ही आ रहा है।
0: भाई ले टिकट ले, टिकट ले बका आवा। कई टिकट चाहिए तो के बोला, कई टिकट चाहिए है?
1: भैया ये सुनो, अच्छा सुनो ना, 25 में दे दो भाई, हम फैमिली वाले हैं।
2: दे दीजिए ना भाई साहब, हम लोग बहुत दूर से आए हैं।
1: भैया सुनो ना, अब मेरी नहीं तो लड़की की ही बात मान लीजिए आप हैं।
2: अब जो भी मांग रहा है दे दीजिए ना पापा।
1: अच्छा बाबा लो। अरे
2: अब क्या हुआ पापा?
1: अरे बेटे भीड़ में मेरी जेब किसी ने काट ली।
3: जेब काट ली?
1: हाँ।
3: ओह 1000 दफे कहा है कि होश में रहा करो, भीड़ है भीड़ है।
1: अरे देरी करके बेहोश तो तुम कर देती हो, अब कहती होश में रहो। अब चलो वापस घर पैर घसीटते हुए।

0: की, लेखक दिनेश भारती और प्रस्तुति थी दुर्गा मेहरोत्रा की।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
2: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532-21909।
0: श्रोता आइए कार्यक्रम में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, आइए चलते चलते एक नजर डालते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। अयोध्या को मिला वैक्स म्यूजियम का तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या नगरवासियों को 291 करोड़ रुपए लागत वाली 245 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान 25.31 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुई 47 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि 264 करोड़ रुपए की लागत वाली 198 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। लोकार्पित परियोजनाओं में रामायण वैक्स म्यूजियम, अयोध्या जोनल कार्यालय का प्रशासनिक भवन, 10 ओपन जिम, मल्टी लेवल कार पार्किंग, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट स्कूल परियोजनाएं सहित कई विकास कार्य शामिल रहे। वहीं नई परियोजनाओं में मांझा जमथरा पंपिंग स्टेशन, जल निकासी के लिए नाला निर्माण, पार्किंग विस्तार, 64 बेड का वर्किंग वुमेन हॉस्टल, 17.83 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा विभिन्न क्षेत्रों में तालाब, पार्क, सड़क और यात्री निवास निर्माण जैसी योजनाएं शामिल हैं।
1: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतिया बिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।
2: टॉल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: प्रणाम अयोध्या।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र 101.9 FM और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर बोल रहे हैं। प्रस्तुत है व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।

0: 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से सुनिए सुनैन आई हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आई केयर फॉर यू कल रविवार को शाम 5:30 से

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में। मैं हूं आपकी दोस्त लक्ष्मी। दोस्तों एक ऐसा खूबसूरत सफर जहां आपकी भावनाएं शब्दों का रूप ले लेती हैं और आपकी फरमाइशें सुरों में ढल जाती हैं। तो आज हम पेश करते हैं आपका पहला संदेश और पहली फरमाइश हमने ली है फिल्म बॉर्डर से, जिसके लिए हमें फरमाइश भेजी है ग्राम फतेहपुर संगत पोस्ट गुसाईगंज जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें मिली है रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से। विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु बाबा और पेंटर बाबू, इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म बेताब का ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है ग्राम व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा जविंदर सिंह अरोड़ा जतिंदर कौर गुरमीत सिंह लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर इन्होंने सुनना चाहा है फिर नटवर लाल का ये प्यारा सा गीत

0: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो।

दोस्तों तो चलिए बिना देर किए खोलते हैं उम्मीदों का यह पिटारा और जोड़ते हैं दिलों के तार को आपकी पसंदीदा धुन के साथ। अगली फरमाइश हमें मिली है गुप्तार घाट से फिल्म त्रिशूल के लिए। हमारे पसंदीदा श्रोता हैं अरुण निषाद, भगवान दीन निषाद, गोरख गोताखोर, सोनू निषाद, पवन निषाद, प्रदीप निषाद, जल्दू निषाद, रामजी निषाद, रामजीत निषाद, संजय निषाद। इन सभी ने सुनना चाहा फिल्म त्रिशूल का ये प्यारा सा गीत। तो ये सुनते आप सभी की पसंद पर फिल्म का ये गीत।

और कार्यक्रम में बढ़ते हुए अगली फरमाइश हमने ली है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतला, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, इन सभी ने सुनना चाहे फिल्म दोस्ती का ये गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
3: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
2: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
3: जी हाँ, और वो है योग।
2: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
3: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
2: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
3: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
2: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
3: योग करिए, निरोग रहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM पर प्रस्तुत है कार्यक्रम बातें आसपास की, जिसके अंतर्गत हम सुनेंगे कॉर्नर ग्राम जिला गोंडा और महर्षि पतंजलि जन्म स्थली पर।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
3: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
4: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
3: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
4: और साथ में अपना नाम, पता
3: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
4: फेसबुक

0: पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
1: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले आइए आपको एक सूचना दे दें। दिनांक 22 जून 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में चर्चा का विषय है गर्भावस्था एवं प्रसवोत्तर से जुड़ी सामान्य समस्याएं और समाधान। विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजूषा पांडे। इनसे बातचीत करने के लिए आपको डायल करना होगा आकाशवाणी अयोध्या का फोन नंबर 7376804090। नंबर एक बार पुनः सुने 7376804090। समय एक बार फिर पुनः सुन ले 22 जून 2026 दिन सोमवार शाम 5:30 पर सूचना समाप्त हुई। दोस्तों, बातें आसपास की कार्यक्रम में आज हम जिस विषय पर बात करेंगे कोंडर ग्राम जिला गोंडा। सरयू और घाघरा जैसी पवित्र नदियों की गोद में बसा गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का एक ऐसा पावन अंचल है जहां इतिहास और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में यह क्षेत्र भगवान श्री राम की अयोध्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहाँ राजा दशरथ की गायें चरा करती थी, जिसके कारण इसका नाम गोनर्द या गोंडा पड़ा। यह भूमि केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं, बल्कि यह स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी राजा देवीबक्ष सिंह की वीरता और महर्षि पतंजलि जैसी महान मनीषियों की तपोस्थली भी रही है। यहाँ की मिट्टी में त्याग, राष्ट्रभक्ति और सनातन संस्कृति की महक आज भी रची बसी है।

आज का गोंडा अपने ग्रामीण परिवेश की सादगी और आधुनिक विकास के तालमेल से एक नई पहचान बना रहा है। यहाँ के हरे भरे लहलहाते खेत, शांत ग्रामीण अंचल और निश्चल लोग जीवन हर किसी का मन मोह लेते हैं। प्रसिद्ध पार्वती अर्घा पक्षी विहार जैसी प्राकृतिक धरोहरें इस क्षेत्र की जैव विविधता और सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। अपनी समृद्धि कृषि एक जनपद एक उत्पाद ODOP के तहत दाल उत्पादन ने अपनी विशेष पहचान और मिलनसार लोगों के साथ गोंडा जिला अपनी ऐतिहासिक विरासत को संजोए निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यहाँ सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि अद्भुत शांति और आत्मीयता का एहसास है।

0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा। 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: समय पर बुवाई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: श्रोताओं, अब हम बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि जन्म स्थली पर। जी हाँ, उस पावन और ऐतिहासिक भूमि की जिसके योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि की जन्म स्थली को माना जाता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के कोंडर गुनार्ध गांव वह पवित्र स्थान है जहाँ पर इस महान विभूति ने जन्म लिया था। महर्षि पतंजलि को न केवल योग विज्ञान बल्कि संस्कृत, व्याकरण, महाभाष्य और आयुर्वेद का भी जनक माना जाता है। यहाँ स्थित प्राचीन सूर्यकुंड और ऐतिहासिक मंदिर जो आज भी उनके दिव्य अस्तित्व और उनकी कठोर तपस्या की गवाही देते हैं। मान्यता है कि इस धरती पर रहकर उन्होंने बिखरे हुए योग ज्ञान को योग सूत्र के रूप में पिरोया, जिसने पूरी दुनिया को जीने की नई राह दिखाई।

श्रोताओं, जहां आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर निरोगी काया पा रहा है, उसकी जड़ें इसी ऐतिहासिक गांव से जुड़ी हैं। सरकार और स्थानीय संस्थाओं द्वारा अब इस क्षेत्र को एक प्रमुख आध्यात्मिक और वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ की आबोहवा में आज भी एक अजीब सा सुकून और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, जो मन को अध्यात्म से जोड़ देती है।

आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से सुनिए सुनैन आई हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आई केयर फॉर यू कल रविवार को शाम 5:30 से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें आसपास की। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रातः के 10 बजे हैं। आप सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
2: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी।

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुंच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसते खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज्ज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था।

0: अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध सी बिखर गई। क्या करूं बिट्टो, मैं क्या करूं, लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मन स्थिति में उनका हाथ थामे बैठी बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सा खारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहां जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई है।
1: जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंस

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीजों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभव ने उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फफक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहां एक पल भी नहीं रहना चाहती हूं, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहां, सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूं।

स्नेह और संस्कारों से इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के साथ ही दूसरों का भी सहारा बन सके। वह कुछ सोचती सी मानो एक पल में ही किसी निश्चय पर पहुंच गई। सबसे पहले आप खुद को बेचारी और बेसहारा समझना और मानना बिल्कुल बंद कीजिए, और कमजोर तो आप पढ़ ही नहीं सकती हैं। आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप यहां बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्या हुआ अगर नाना जी और नानी मां नहीं रहे? आपकी बेटी, आपकी प्रतिछाया, मैं तो हूं ना आपके साथ, आपके पास हरदम। अनुभा ने अपनी हथेलियों में मां की आंखों से बहने वाले आंसुओं को चुन लिया। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और आपको आपके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी और वादा मेरा है, पर मां मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने ही है। वो अपने किए से मुक्त नहीं हो सकते। बस आज की शाम का समय मुझे दे दीजिए। विभा की पलकें एक बार फिर बह चली। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या फायदा उनसे बातें करने का, और क्या बात करनी है? मेरे पूछने पर उन्होंने कह ही दिया है कि जो भी करना हो वह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। अब वो अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे। मुझको दिक्कत हो तो जहां जाना हो चली जाऊं, नहीं तो उनकी सेवा करती हुई यहीं पड़ी रहूं।

को चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली दिवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगे, विभा विभा कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा जो पास के कमरे से सब देख रही थी वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?

अनुभा उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर परिवार समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए, ऐसा कौन मिल गया तुमको। अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर हर सुख दुख में उसका साथ देने पर उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए। अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है, शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला। क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

अनायास ही अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़प कर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ में कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मिले धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई न कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर ना करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई ना कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा को फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

अरुण चौंक गया। क्या कहना चाहती हो, तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तलखी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूँ, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो। इसलिए ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो, तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो, वो भी अपने ही पापा को। कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था, और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसकी प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभा चीखी तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी

हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत? मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुंचता ही होगा। अनुभा की आवाज को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मर्म को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो, उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेट कर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और तोड़वा

दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने की अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

छूकर मेरे मन को, याराना फिल्म से। अभी ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इस गीत को लिखा था और राजेश रोशन की तर्ज थी।

0: द ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। आप सुन रहे इस वक्त विविध भारती से चित्रपट संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

मन दौड़ने लगता है। और ये गीत अभी आप सुन रहे थे रजनीगंधा फिल्म से मुकेश की आवाज में, योगेश ने इसे लिखा था, सलील चौधरी का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रपट संगीत

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आप सुन रहे हैं मैटिनी शो। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पालघर पीठाधीश्वर योगीराज भारत भूषण भारतेंदु। विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से विश्व योग दिवस के दिन पर। हमारे वेद भारती के तमाम भारत के सभी श्रोताओं को योगीराज भारत भूषण की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
0: क्या बात है। मुझे ये बताइए भारत भूषण जी कि इस बार की जो थीम है वो है बढ़ती उम्र के साथ योग। तो बढ़ती उम्र के साथ योग का क्या महत्व है, यहाँ से हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं।
1: बढ़ती उम्र के लिए ही योग के सानिध्य में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: जैसा कि हम सभी लोग पहले शतायु हुआ करते थे, सभी लोग कम से कम 100 साल तक उम्र होती थी, लेकिन जो हम लोगों की सोसाइटी, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, जो एक तरह से मिलावट होता गया लाइफ में, सोसाइटी में, हमारे खान पीन में, सब में, जिसके कारण लोगों की उम्र जो है दर पदर थोड़ा कम होता गया। तो ये जो अभी का जो मिशन चल रहा है हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है पूरे भारत में
0: जी।
1: तो जैसे 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि लोग शतायु हों, 100 साल जिए इस योग को सीख करके, तो उम्र को बढ़ाया जाए
0: और स्वास्थ्य को भी बढ़ाया जाए, है ना। अच्छा मुझे बताइए कि 40 पार के बाद के जो लोग हैं, जो 40 बरस पार करके अब थोड़ा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके जीवन में योग कितना जरूरी है और वो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कितना समय निकालें कि वो रोज योग कर पाएं।
1: देखिए रही बात जो 40 के ऊपर वाले उम्र के जो भी लोग हैं, हम तो सदा से ही पूरे भारत में ही योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पूछने पता चलता कि आप अपने लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते। तो जो अपने उम्र बताई कि 40 वर्ष के ऊपर वालों के लिए, तो उन लोगों के लिए समय नहीं रहता, बोलते हमारे लिए समय ही नहीं मिलता खुद के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 40 के ऊपर वालों को 24 घंटे में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना योग के लिए बहुत ही आवश्यक है।
0: ये जो थोड़ा सा है इसमें कितनी मात्रा है ये समय?
1: थोड़ा सा मात्रा में कम से कम 20 मिनट
0: जी, कम से कम 20 मिनट,
1: कम से कम 20 मिनट।
0: और अगर बहुत दिल से निकालें तो कितना हो जाएगा?
1: दिल से निकालें तो 45 मिनट, 1 घंटे कर लें तो सोने पे सुहागा है।
0: क्या बात है
1: जी।
0: जी तो क्या क्या करना चाहिए, जैसे 20 मिनट का समय है जिस व्यक्ति के पास वो क्या क्या करे, और जो व्यक्ति थोड़े बड़े दिल वाला है 45 मिनट निकाल रहा है वो क्या क्या करे?
1: देखिए सबसे फर्स्ट जो पहला है
0: जी,
1: 40 ही नहीं, बूढ़े बच्चे जवान सभी

0: को करना चाहिए। पहला तो है श्वास
1: जी
0: से रिलेटेड।
1: हाँ,
0: श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है
1: जी।
0: और 40 को देखा जाए तो उनको युवा में माना जाता है, यंग, हमारी जो पावर है, यूथ भी कह सकते हैं हमारे देश के, तो उनके लिए आप प्राणायाम के साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 राउंड 15 राउंड सूर्य नमस्कार आवश्यक है। उसके अलावा आप स्टैंडिंग में है, सिटिंग में है, लाइन डाउन में है, इसमें बहुत से आसन हैं जो कि करके 40-45 मिनट में अपने को एकदम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान भी करना जरूरी है, मेडिटेशन
1: जी। तो मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम में कौन कौन से प्राणायाम जो है वो बहुत जरूरी है? भ्रामरी, शीतली,
0: जी जी जी,
1: है ना।
0: हाँ, प्राणायाम में शुरू में तो जैसे रोदन क्रिया कर लीजिए, भस्त्रिका करके अपने फेफड़े
1: को सबसे पहले भस्त्रिका करना है,
0: कपालभाति,
1: सबसे पहले कपालभाति जी,
0: देन उसके बाद में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, उज्जयी,
1: इतने सारे कर रहे हैं।
0: हाँ, अंत में ओम चैंटिंग कर लीजिए।
1: अच्छा,
0: ये पूरा पैकेज हो गया
1: जी।
0: ये
1: जी, जी।
0: महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए कॉम्बो है।
1: ये जो आपने प्राणायाम बताए इतने सारे
0: जी,
1: इनका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और इनसे क्या चीजें बैलेंस होती हैं?
0: इनसे सबसे पहले तो जो शुरुआत है
1: जी,
0: कपालभाति से अपने फेफड़े की शुद्धि होती है।
1: अच्छा,
0: जो दिन भर चलते हैं, पोल्यूशन है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्लीन होता है, ये शुद्ध हो जाता है फेफड़ा। और भस्त्रिका है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाती है, उसको मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, कैपेसिटी, उसकी क्षमता बढ़ाती है लंग्स को। और अनुलोम विलोम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया इसको।
1: अच्छा,
0: हम लोग शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं
1: जी जी,
0: जिसमें 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन तीनों को बैलेंस रखने के लिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम कहा गया है
1: जी,
0: जिससे नाड़ियां सब बैलेंस रहती हैं
1: जी।
0: और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे आप सुनते भी होंगे कि लोग बोलते हैं आज मूड अच्छा नहीं है, कभी होता है कि बहुत अच्छा मूड है, कभी ऑफिस का काम पेंडिंग है, किसी से तकझक भी हुआ है, लेकिन मूड अच्छा रहता, चलो जो होगा देखा जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि सारे काम सब हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन उदास रहता है, पता नहीं क्या हो गया। तो मूड ऑफ और ऑन है। तो ये जो मूड अच्छा रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: अच्छा,
0: जो हमारे सिर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, भ्रामरी करने से उसमें एक सिक्रीशन टाइप का होता है, इससे मूड अच्छा रहता है, मस्तिष्क में लुब्रिकेशन बनाते, जैसे इंजन में मोबिल ऑयल होता है ना, इंजन में ऑयल बराबर है तो अच्छे से चलती है
1: जी।
0: इसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी वो जो सिक्रीशन होता है उससे मूड अच्छा रहता है।
1: अब देखिए ना, हम रेडियो पर हैं तो सब कुछ हमको बोलकर ही बताना है।
0: हाँ,
1: करके दिखा नहीं सकते,
0: दिखा नहीं सकते।
1: पर भ्रामरी प्राणायाम वही है ना, जिसमें उंगलियों से आंखों को
0: बंद
1: जाता
0: करते
1: है।
0: हैं, और अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है
1: जी,
0: मुंह बंद रखना है।
1: हाँ,
0: पूरा सांस नाक से अंदर लेना है
1: जी,
0: और मुंह बंद करके ही नाक से सांस को छोड़ना है, और हमिंग करना, बटरफ्लाई की तरह।

0: और उससे जो कंपन होते हैं,
1: कंपन होगा अपने सिर में, तो जब वहाँ कंपन होता है तो वहाँ से फिर वो सीक्रेशन होता है
0: जी,
1: माइंड कूल रहता है।
0: क्या बात है, तो प्राणायाम की बात हुई, ध्यान की भी बात करेंगे, लेकिन आपने ना सूर्य नमस्कार की बात की है
1: जी।
0: मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो शुरुआत करते हैं वो 12 25 है ना 50 ऐसा करते हैं, लेकिन जो धाकड़ लोग होते हैं वो तो बहुत सारे सूर्य नमस्कार करते हैं। जो बंदा अभी अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल रहा है वो शुरू करे तो कितने से करे कि वो अगले दिन के लिए खड़ा हो पाए?
1: देखिये, जो कभी नहीं किया है
0: जी
1: तो उसको आप शुरू में एक राउंड से शुरू करिए।
0: अच्छा,
1: योग का मतलब ही है जोड़ना
0: जी,
1: योग प्लस है जोड़ना। तो अपने शरीर में, अपने लाइफ में अगर स्वास्थ्य को लाना है, जोड़ना है, तो उसको धीरे धीरे धीरे धीरे स्वतः स्वतः पहले एक राउंड मतलब दो स्टेप लेफ्ट एंड राइट, जैसे 12 काउंटिंग का एक सूर्य नमस्कार होता है, 12 लेफ्ट लेग से 12 राइट लेग से, तो एक राउंड आप पहला दिन करिए।
0: अच्छा,
1: फिर दूसरे दिन दो राउंड करिए, एक हफ्ते तक आप दो राउंड तीन राउंड ऐसे करिए, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे धीरे धीरे धीरे धीरे उसको
0: बढ़ाते
1: जाइए।
0: कई लोग

0: होश में आते हैं तो फिर किसी की कमर किसी का कूछ
1: ये सही कर रहे हैं तो जोश में आकर होश नहीं खोना है।
0: बिल्कुल,
1: योग हम कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम योग कर रहे हैं
0: जी।
1: योग को धीरे धीरे जोड़ना है
0: जी। सामान्य रूप से कितने सूर्य नमस्कार सवेरे सवेरे कर लेना एक अच्छी जीवन शैली की निशानी है?
1: देखिये, जो ऑफिस वाले हैं, वर्किंग में हैं, तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है।
1: काफी होता है।
0: अब मैं आपको आपके पसंदीदा विषय की तरफ लेके जाता हूँ। ये जो सूर्य नमस्कार है, इसके फायदे बताइए कि क्या क्या है। इसको संपूर्ण योग कहा जाता है ना?
1: जी जी जी। सूर्य नमस्कार में कई आसन एक साथ हो जाता है
0: जी।
1: तो उससे क्या होता है कि आपको अलग अलग कई आसन करने की आवश्यकता नहीं। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड लेटने का भी हो जाता है। इसमें कई आसन हो जाते हैं, भुजंग आसन से लेके पर्वतासन, ऐसे कई आसन उसमें हो जाते हैं। तो जिससे आपको अलग अलग आसन करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से काम्बोज सूर्य नमस्कार किया जाता है, वो बेनिफिट आपको पूरा हेड टू टोज तक
0: मिल जाता है जी।
1: ये सबसे
0: इम्पोर्टेंट बात है।
1: सूर्य नमस्कार
0: और पूरे दिन आप बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं।
1: और जिनको ये भी ध्यान रखना है कि इसी योग इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में ही करें। कभी कभी क्या है, कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, जो दिक्कतें हैं
0: जी,
1: तो उसको उसके हिसाब से धीरे धीरे क्या करना है, कितना करना है, उसी हिसाब से।
0: और आपकी जो शारीरिक परिस्थितियां हैं
1: उसके अनुसार
0: बाकायदा ईमानदारी से बताना है।
1: जिनकी एज ज्यादा है उनको ध्यान में रखना है।
0: मैं वही पूछने आ रहा था बिल्कुल कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 50-60 की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र का है और वो करना चाहता है
1: जी,
0: तो वो क्या करे और क्या ना करे?
1: कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, पहली बात तो किसी योग गुरु के सानिध्य में रह करके धीरे धीरे करें। बुजुर्गों में बहुत से हमारे शिष्य ऐसे हैं जो कि एज उनकी काफी है, बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार करते हैं
0: जी।
1: क्यों कर लेते हैं? कि वो शुरू से ही
0: नियमित रूप से करते आए हैं,
1: रूप से योग और सूर्य नमस्कार आसनाज वगैरह को अच्छे से करते हैं तो बहुत अच्छे कर लेते हैं। लेकिन जो अभी नए हैं, जिन्होंने कभी किया नहीं, तो उनको बहुत ही ध्यान में रहकर उनको सभी जो आसन से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके उनको फिर अपने रूटीन में लाना है सूर्य नमस्कार को। और बहुत तनाव या प्रेशर दे करके जोश में नहीं करना है
0: जी। मैं समझ गया
1: जी।
0: मुझे ये बताइए कि मनाही नहीं है ना बुजुर्गों को सूर्य नमस्कार करने के लिए?
1: कोई भी चीज इसमें ऐसा मनाही नहीं, लेकिन हर योग को कोई अगर रोगी है, कोई व्याधि से व्याधित है, तो उसको उसके अनुसार योग को करना चाहिए और योग गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। बहुत सी चीजें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है पहले। कोई व्याधि से ग्रस्त है तो उनको उस व्याधि में कौन से आसन नहीं करने हैं वो ध्यान रखना है। तो वो ना करते हुए फिर उसके बाद में क्या करना है वो करना चाहिए।
0: बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इस बात की तरफ आ रहा हूँ कि आजकल क्या हो गया है कि सब जगह कंप्यूटर हैं, लोग जो हैं वो अपने दफ्तरों में अपने लैपटॉप पर या अपने सिस्टम पर बैठे हैं और दिन दिन भर बैठे हैं। बीच में थोड़ा ब्रेक लिया है, चाय वाय पी, उसके बाद फिर बैठे तो पता चला पूरे दिन का बैठना जो है वो 12 घंटे 15 घंटे हो गया। ऐसे लोगों के लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं और उनको, क्योंकि देखते ये हैं कि किसी की गर्दन दुख रही है, किसी की कमर दुख रही है, किसी की कूल्हे दुख रहे हैं, टेल बोन की समस्या हो गई है, बहुत तरह तरह की जो लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं वो बढ़ रही हैं। तो ये ऑफिस वर्किंग पीपल के लिए आप खास तौर पर क्या कहेंगे?
1: देखिए, ऑफिस वर्कर्स ही नहीं
0: जी,
1: आज का जो समय चल रहा है यूनुस जी, लोगों का हर चीज पर्सनलाइज की तरफ जा रहे हैं। सबका अपना होना चाहिए सब कुछ, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको अपनी चीज चाहिए, अपना मोबाइल, अपना गाड़ी, अपना घर, अपना कमरा, अपना लैपटॉप, सारे पर्सनल चीजें होती जा रही हैं। तो उसमें हमने योग को पर्सनलाइज किया है। जैसे ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए ऑफिस योगा, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट योगा, गृहिणियाँ जो अपने घर में रहती हैं, सुबह बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, सास ससुर उनकी सेवा करना है तो किचन में ज़्यादा समय रहती हैं तो उनके लिए किचन योगा है, किसानों के लिए किसान योगा है, पत्रकारों के लिए पत्रकार योगा है, पुलिस वालों के लिए पुलिस योगा है, यंग्स के लिए योगा 2020 है। तो ऐसे ऐसे पर्सनलाइज हमने योग का पैकेज रखा है। तो जो ऑफिस में जो काम करते हैं उनका, क्योंकि कारण क्या है कि वो ज्यादातर लैपटॉप पर रहते हैं,

0: किलोमीटर प्रति हैं, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे। वो उनको ख्याल नहीं रहता कि हमारा पोस्चर किधर है, क्या है, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो जिसके तनाव के कारण उनके शरीर में किसी भी पोस्चर में कोई भी कभी भी खिंचाव आ गया तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं
1: जी
0: ऑफिस वालों के लिए। तो ऑफिस वालों के लिए समय दूर से आते हैं तो उनको समय भी नहीं मिलता है, तो अपनी कुर्सी पर बैठ करके कुछ चीजें हैं जो वहाँ टाइम टाइम पे 1-2 घंटे बीच में रेस्ट गैप ले करके वो योग करके ऑफिस योग का करके वो स्वस्थ रह सकते हैं। उनको बैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा मेंटली। तो वो ऑफिस के लिए ऑफिस योगा बहुत
1: आपने इस तरह से वर्गीकरण कर लिया जी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के योग स्वस्थ रहे तय कर लिया
0: जी।
1: अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है और आप न केवल कई बड़ी हस्तियों को सिखाते हैं बल्कि जनता के बीच योग की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। विश्व योग दिवस तकरीबन 2015 से मनाया जा रहा है। बीते इन 11 सालों में आपने क्या देखा है, क्या योग की लोकप्रियता और इसके प्रति लोगों का रुझान अब बढ़ता जा रहा है?
0: अब कुछ बहुत ही बढ़ता जा रहा है, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में योग के प्रति। और जब से कोरोना का समय आया
1: जी,
0: उसके बाद से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। और जिसका कारण है कि आज हम देखते हैं कि हर पार्क में लोग इकट्ठा होते हैं, जो योग कर सकते हैं योग करते हैं, टहलने का काम करते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो करके लोग अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ उठाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो लोगों की जागरूकता बहुत बड़ी है अपने स्वास्थ्य के प्रति, लोग अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी लिविंग स्टाइल, और योग के प्रति, योग ध्यान प्राणायाम साधना इसके प्रति तो लोगों की रुचि बहुत ही बढ़ी है। और हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि घर घर योग, सभी रहे निरोग।
1: वाह, अच्छा, एक बड़ा जो लोगों का रुझान है वो है वजन घटाने की तरफ, क्योंकि अमूमन अब लोग ओवरवेट होते हैं
0: जी जी,
1: पर बहुत कोशिशें करते हैं और वजन घटता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे कि केवल योग करना ही काफी है या उसके लिए एक संपूर्ण पैकेज होता है कि किस तरह से आप क्या खाए पिए, कैसे जिए कि वजन भी नियमित रूप से कम हो और एक संतुलित जीवनचर्या बन सके?
0: जी, रही बात वजन कम करने की, तो आप देखते हैं कि अमूमन लोग चाहते हैं कि हम योग से बहुत कम समय में वजन को कम कर लें, तो ऐसा
1: चमत्कार
0: और संभव नहीं है
1: जी।
0: क्योंकि जितने समय में जो वजन बढ़ा है,
1: कई लोग तो बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं,
0: हाँ, 5 साल में 2 साल में हाँ, इतने टाइम में बढ़ा है, तो उसको कम करने में भी समय लगेगा
1: जी।
0: और योग से जो वजन आपका कम होगा वो ज्यादा दिनों तक मेंटेन रहेगा। तो योग ही नहीं, योग के साथ आपको अपने आहार विहार पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उसके साथ में वर्कआउट जो आप करेंगे योग का सबसे अच्छा रिजल्ट आता है आपका सूर्य नमस्कार से। उसके साथ साथ सब जितने भी अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन से आप केवल फिजिकली नहीं मेंटली भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे होते हैं ध्यान से।
1: अच्छा,
0: ये सब कुछ ब्रेन से ही संचालन होता है
1: जी।
0: हाँ, जैसे रोगों का शुरुआत होता है स्ट्रेस से होता है, लोगों को पता नहीं लेकिन स्ट्रेस हो गया तो कहाँ से होता है, ब्रेन से ही होता है। तो उसके बाद ही तरह तरह की बीमारियां मेनू की तरह जुड़ती जाती हैं। तो ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है, मेडिटेशन।
1: बिल्कुल, तो मेडिटेशन तो कहीं भी किया जा सकता है, चाहे वो आप अपने ऑफिस में हो,
0: कहीं भी,
1: स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर पे हो,
0: कभी भी कहीं भी कर सकते हैं मेडिटेशन
1: जी।
0: और हम लोग तो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने आहार विहार की बात की, आजकल जंक फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग कहीं भी खड़े हो जाते हैं और सड़क के किनारे के किसी भी चीजों को खा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि सेहत की समस्याएं होती हैं और वजन बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। क्या योग करने वाले व्यक्ति की जीवनचर्या के तहत आप ये इजाजत देते हैं कि वो इस तरह से मजे से बाहर खाता पीता रहे?
0: देखिए, सब कुछ हमारे ब्रेन से ही सब कुछ संचालन होता है
1: जी,
0: मस्तिष्क से ही
1: जी।
0: और अपने को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट है कि

0: आप क्या खा रहे हैं, किस भाव से खा रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है। अगर आप योग ध्यान से अपने जीवनचर्या को, आहार विहार को संतुलित किए हुए हैं, तो आप बाहर की चीजों को आप ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने सेहत के प्रति आप जागरूक हो रहे हैं। और रही बात बाहर की खाने की, तो आप अच्छे भाव से खाएंगे तो भगवान शिव ने विष को भी धारण कर लिया था, लेकिन वो उनको नुकसान नहीं किया। तो कहने मतलब कि जबरदस्ती जानबूझ के नहीं खाना पीना है, लेकिन कभी हो गया तो
1: जरूरत से ज्यादा नहीं।
0: जी, जरूरत से ज्यादा नहीं।
1: जी, आज के नौजवानों का क्या रुझान आप देख रहे हैं योग के प्रति, और क्या कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया था और उन्हें आप सही रास्ते पर लाए?
0: ऐसे बहुत से नवयुवक हमसे मिलते हैं, बहुत से मिले हैं, जो कि बॉडी बिल्डिंग भी करते थे और अनियमित दिनचर्या के कारण उनके फिजिकल सिस्टम भी चेंज हो गए थे, बेडोल हो चुके थे, लेकिन उनको सही मार्ग मिलने पर, जैसे हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं गुरु जी आप जैसे 20 साल पहले थे वैसे अभी भी हैं, तो उनको एक प्रेरणा भी मिलती है कि कोई भी जैसे योग फील्ड में है अब देखेंगे तो फिट ही रहते हैं
1: जी।
0: तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और युवा शक्ति भी, अब हमारी जेंजी, जो आजकल जेंजी बोलते हैं, बहुत ही समझदार और बहुत ही होनहार बच्चे हैं, और वो सब चीज़ों को समझते हैं और हमसे आपसे ज़्यादा वो जागरूक हैं, और उनको क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है लाइफ के लिए, वो कर रहे हैं, सही दिशा में वो जा रहे हैं, अपने भविष्य को भी लेकर हमारे देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों में और नवयुवकों में तो बहुत परिवर्तन आया, और मैंने देखा है कि जिम भी करते हैं और योगा भी करते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम भी करते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, आज की दुनिया ऐसी है जहां स्क्रीन की तरफ रुझान बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका जो ध्यान बहुत भटकता है पढ़ाई में, क्योंकि मोबाइल हाथ में है, अगर एक बार सोशल मोबाइल मीडिया में घुस गए तो कई घंटे चले जाते हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। ये जो फोकस है
0: जी,
1: इसके लिए किस तरह की योग करनी चाहिए, ये छात्रों की बात कीजिए।
0: सबसे पहले तो हम छात्रों की बात आती है, और मैं योगीराज हूँ, तो हमारे जो छात्र हैं, चाहे वो जूनियर कॉलेज को चाहे कॉलेज के, पहला तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे आशा भी करेंगे, तो पहला कि जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाएं, जीवन का जो मूल है वो शक्ति का, वीरवान बने और शौर्यवान बने। और उसके साथ साथ जो मोबाइल की जो स्क्रीनिंग है, मोबाइल है, लैपटॉप, स्क्रीन का जो जमाना चला है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा योग और मेडिटेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के इस स्क्रीनिंग से। तो उसके लिए भी मोबाइल चर कह लीजिए कि मोबाइल स्क्रीन को भी अपने लाइफ में जितनी आवश्यकता है सीमित करना है, और किस फील्ड में उससे में क्या लाभ है उसको जोड़ना है, और खुद से उनको समझ करके उनके लाइफ में क्या जरूरी है, स्टडी बच्चों को पढ़ना भी स्क्रीन के अलावा हो नहीं रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट है जितना समय सीमित है उतना ही उसको उपयोग करें, और फिजिकली वर्क में भी अपने को ध्यान दें, खेल कूद भी करें, योग करें, प्राणायाम करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है
1: जी। एक और बहुत जरूरी बात और एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ, वह है हमारी महिलाएं, उनमें से कुछ हैं जो गृहिणियां हैं
0: जी,
1: और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बाहर काम करने जाता है, उनके जिम्मे बहुत सारे काम हैं, तो वो घर भी संभालती हैं
0: जी,
1: बच्चों को भी ध्यान देना है, और ऊपर से फिर अपना जो काम है वो भी नियमित रूप से करते रहना है, ऐसे में वो अपने स्वास्थ्य को अमूमन नजरअंदाज करती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: पहले तो हम अपनी देश की नारी शक्ति को हम प्रणाम करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद ही कोई उठा सकता है, और रही बात उनको खुद की, अपने स्वास्थ्य की, तो हम तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारी गृहिणियाँ हैं, हमारी नारी शक्ति हैं, वो अपने पर ध्यान नहीं रखती हैं, ध्यान ही नहीं दे पाती, क्योंकि कितना उनका व्यस्त जीवन रहता है सुबह से शाम तक का। बहुत से हमारे नारी शक्ति हैं जो कि घर का भी काम करती हैं, ऑफिस का भी काम करती हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि 24 घंटे में 20 मिनट अपने लिए समय कैसे भी निकालें, क्योंकि इस शरीर से ही पूरा संसार है, इस शरीर से ही पूरा घर परिवार है, समाज है, सोसाइटी है, इस शरीर से ही है, तो अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकाल कर सुबह या शाम जब भी समय मिले, नहीं कुछ तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट ध्यान शुरू करें, तो उससे क्या है कि उनको महिलाओं को बहुत ज्यादा चैलेंजेज होते हैं तरह तरह।

0: मन भी कई बार अशांत रहता है,
1: अशांत रहता है मन, और सब मन से ही सारी चीजें होनी है। और बहुत से ऐसी जो व्याधियां हैं कि उनको बहुत जल्दी परेशान करती है, गायनोलॉजिकल हुआ या ऐसे बहुत सी चीजें हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है जो योग मेडिटेशन।
0: और क्या महिलाएं सूर्य नमस्कार कर सकती हैं?
1: क्यों नहीं कर सकती है, बहुत अच्छे से कर सकती है, करती हैं
0: जी,
1: लेकिन ज्यादा एज के हैं उनको सावधानी रखनी पड़ेगी। और जो भी करें सीख करके योगा इंस्ट्रक्टर या गुरु के सानिध्य में करके करें, करती हैं सब, यंग है नारी शक्ति, तो सूर्य नमस्कार भी कर सकती है, 20 मिनट 25 मिनट करके पूरे दिन स्फूर्ति से काम कर सकती है।
0: लेकिन किसी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में करना ज्यादा अच्छा है,
1: सीख लें तो वो बेहतर है, क्योंकि योग अगर सही किया गया तो गुणनफल में फायदा होता है
0: जी,
1: अगर गलत किए तो गुणनफल में उसका नुकसान भी हो सकता है
0: जी,
1: तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुरु के सानिध्य में रह करके सीख के करें।
0: चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से विश्व योग दिवस पर क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद क्योंकि आप बांसुरी भी बजाते हैं तो हम सबसे अंत में आपका संगीत भी सुनेंगे, पहले विश्व योग दिवस पर आप अपनी बात कहिए जो हमारे श्रोताओं से आप कहना चाहते हैं।
1: हम अपने सभी विविध भारती के सभी श्रोताओं को हम ये कहना चाहते हैं, ये जो योग महोत्सव का जो पर्व चल रहा है हमारे देश में 100 दिन का, और 21 जून को हम लोग अंतिम महोत्सव का मनाएंगे, और ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि लोग 21 जून को ही ज्यादातर लोग योग करते हैं, उसके बाद बहुत से लोग छोड़ देते हैं।
0: मतलब हर साल 21 जून को करते हैं?
1: 21 जून को साल में एक बार ही करते हैं, पूरे जोश से सब बढ़िया टी शर्ट खरीदेंगे, बढ़िया ट्रैक वगैरह खरीद के,
0: हाँ।
1: योगा मैट भी खरीद लेते हैं,
0: हाँ।
1: तो एक दिन करते हैं उसके बाद फिर रख देते हैं
0: जी।
1: तो हम अपने विविध भारती के तरफ से हम सभी श्रोताओं को, पूरे विश्व के सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, केवल 21 जून को ही न करें
0: जी,
1: पूरे वर्ष भर करें, हर दिन योग अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ और सुंदर बने रहें, यही हमारी श्रोताओं से हमारा निवेदन है।
0: और अब हम आपसे बांसुरी सुनना चाहेंगे
1: जी, हम बांसुरी सुनाएंगे श्रोताओं को, और इस बांसुरी धुन के साथ में हमारे श्रोता आराम से बैठ जाएंगे, अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, तो थोड़ा सा मेडिटेशन हमारी बांसुरी की धुन पर, आंखें बंद करके श्वास लें, श्वास अंदर श्वास बाहर, अपने श्वास को देखना है
0: जी।
1: और इस मधुर बांसुरी के साथ ध्यान करना है।
0: बिल्कुल।

ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है।
2: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ

0: राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे, और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा, तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल श्री, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
0: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया, और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न USSR के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट्स हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल एलाय है रशिया के, दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए, इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश है, तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया, हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां

0: भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता आ गई, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल है उसके बारे में जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैला साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए और उन ऑपरेशन में कई माओवादी को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफी तादाद में माओइस्ट अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओइस्ट का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया और इसके वजह से माओइस्ट तकरीबन खत्म ही हो गया है। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब ये चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशन भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट से सबने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफी मात्रा में वहां पर हथियार खत्म हो गए और इंसिडेंट भी खत्म हो गए, और उस वजह से काफी वहां पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफी जोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फायदा चल रहा है। पहले ये डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफी जोरों से वहां पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको खत्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहां पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफी सुविधा पहुंच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह, नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आप ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में

0: हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
1: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से, उसमें भी काफी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया।

0: गुड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से, उसमें भी काफी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे, वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं। 15 लाख जवानों को इससे काफी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण FTA है और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट EU ने साइन किया है। अब इस FTA के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड है EU के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और FDIs में इजाफा, तो इससे ओवरऑल GDP में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप UAE के साथ के अपने FTA को और हमारी व्यापारिक डील को देखें तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी FTA को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से GCC के देशों के साथ भी हमारा FTA लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट है, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स हैं। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहाँ के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोलर अलायंस और बायो फ्यूअल अलायंस

0: की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है, और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है। तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने FTAs को देखें, आप हाल ही में हुए EU के साथ के अपने FTA को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने FTAs हैं और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सकें, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती है, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जो प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने GDP ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्प्लिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं MP नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम

0: नाम सामने आए, तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और तीन बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये तीन जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
1: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे, सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था और जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढीलपना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए। मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूं, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहां तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही है। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता था। अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं, दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ी।
0: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
1: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
0: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
1: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
0: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब

अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सब के बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंपैक्ट रहे और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल, गैस और LPG पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल, गैस और LPG चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और LPG मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए, हमारी GDP के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे, उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में, उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047

0: 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानते हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल, तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है अवधि लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: श्रोताओं, आज दिन की सभा में हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त सविता। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, लोकगीत हमारी सांस्कृतिक धरोहर और समाज का जीवंत दर्पण होते हैं। ये आम जनजीवन, भावनाओं, त्योहारों और परंपराओं को बिना किसी बनावट के सहज रूप से व्यक्त करते हैं। लोकगीत पीढ़ियों को आपस में जोड़ते हैं और हमें अपनी जड़ों से बांध कर रखते हैं। ये जुड़े होते हैं हमारी भावनाओं से। तो इसी क्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं श्रीकांत मिश्रा और साथियों के स्वर में ये गीत।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हेलो
3: हेलो सुनो, टेलीफोन नंबर,
4: माय नंबर इज
5: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com

0: बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, दीप से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं जमुना प्रसाद वर्मा और साथियों के स्वर में।

0: कार्यक्रम लोक रंग अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आप सुनते हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: आकाशवाणी अयोध्या से सुनिए सुनैन आई हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आई केयर फॉर यू कल रविवार को शाम 5:30 से।
0: तो दोस्तों कार्यक्रम हेलो अयोध्या सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को सविता का नमस्कार और साथ ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और चलिए देखते हैं हमारे कौन से श्रोता हैं लाइन पर, करते हैं इनसे बातें। हेलो।
2: हाँ मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए।
2: अर्जुन कुमार सोनकर।
0: अर्जुन जी
2: जी
0: आपकी कॉल तो पहले भी लगती है यहाँ पर ना?
2: जी मैडम, हमारी कॉल लगती रहती है, आपसे बात होती रहती।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है, बातें करते रहा करिए। और किस फिल्म का गीत आज आप सुनेंगे?
2: फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान।
0: जी कौन सा गीत?
2: फिल्म है ओ गाने के बोल है पंडित जी मेरे मरने के बाद।
0: ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का गीत अपने रेडियो सेट पर।
2: अरे मैडम हमारे जी हमारे एक बहुत खास मित्र बैठे हुए हैं।
0: जी जी
2: वो रेडियो सुन रहे हैं।
0: जी
2: विनोद कुमार यादव जी।
0: जी
2: जी मैडम
0: चलिए ठीक है। हाँ बताइए। हाँ ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का गीत।
2: धन्यवाद धन्यवाद।

0: और देखते हैं हमारे कौन से श्रोता आ चुके हैं लाइन पर, करते हैं इनसे बातें। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए।
1: ठीक है, शिवानी मैम।
0: शिवानी जी, कहाँ से आपने कॉल किया है? हेलो। हेलो,
1: गोंडा गिरा।
0: गोंडा से, क्या करती हैं आप?
1: रिदेना गिरांते।
0: हेलो।
1: हेलो मैम।
0: हाँ, किस फिल्म का गीत आप सुनेंगी?
1: मैम बॉर्डर।
0: बॉर्डर फिल्म का, ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का गीत अपने रेडियो सेट पर। कॉल करने के लिए शुक्रिया।

0: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का

0: और हमारे अगले श्रोता भी लाइन पर हैं, देखते हैं कौन है। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी, कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: देवकाली से। मैं
0: देवकाली से, क्या करती हैं आप?
1: मैम हाउसवाइफ है मैम, घर का काम वगैरह ये सब करते हैं।
0: जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। घर के काम में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना?
1: Yes,
0: सब कुछ देखना पड़ता है, ऊपर से गर्मी इतनी है ना?
1: हाँ मैम, गर्मी तो है।
0: ठीक है, तो आज आप कौन सा गीत सुनेंगी?
1: इतिहास फिल्म का।
0: इतिहास फिल्म का कौन सा गीत?
1: चोरी चोरी।
0: चोरी चोरी, ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का गीत अपने रेडियो सेट पर।
1: नमस्ते।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और दोस्तों हेलो अयोध्या कार्यक्रम के अगले श्रोता आ चुके हैं लाइन पर, चलिए करते हैं इनसे बातें। हेलो।
3: हाँ मैडम।
2: हाँ जी नमस्कार।
3: नमस्ते। नमस्ते मैडम।
2: हाँ आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम बबलू है।
2: बबलू, कहाँ से आपने कॉल किया है?
3: अच्छा
2: अच्छा बबलू जी, क्या करते हैं आप?
3: मैडम जी मैं सिलाई का काम करता हूँ।
2: जी जी, और कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे?
3: क्या
2: कोई बात नहीं, तो यही बता दीजिए किस फिल्म का गीत सुनेंगे। यही बता दीजिए किस
3: फूल और कांटे गाना सुनने से मिलने को दिल करता है।
2: अच्छा ठीक है, सुनिए
3: अपनी अपने दोस्तों को कुछ नाम लेना चाहता।
2: जी जी बिल्कुल ले लीजिए फटाफट।
3: कुणाल नाम है, काजल नाम है
2: जी,
3: और गौतम नाम है
2: जी।
3: जी
2: ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का गीत अपने रेडियो सेट पर।

दोस्तों सुनते रहिए ये गीत और चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारे आज के इस कार्यक्रम को आप तक सुचारू रूप से पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया राजकुमार मौर्य ने। प्रस्तुति थी जयंत पटेल की और आपकी रेडियो दोस्त सविता की।

हेलो अयोध्या कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे 101.9 FM बैंड और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब हम आपको सुनवाते हैं अगला कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: तो शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, और सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और अब बारी है हमारे श्रोताओं के नामों की। तो पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, ओम प्रकाश राय कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से, पंजाजी नाकर नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, धर्मेंद्र छिपा भोपालगढ़ राजस्थान से, रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा हुकुम करमरकर बेरड़ी मध्य प्रदेश से, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, महेंद्र मोदी रामगढ़ कैंट से, रज्जाक मोहम्मद हनुमानगढ़ राजस्थान से, जाकिर मंसूरी बाजार रोड मुंगिसापुर से, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से, फैसल इमाम, रविंद्र सिंह छाबड़ा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, विक्रम मालवी गुलबालू तहसील आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, विजय सुरलकर मोताला महाराष्ट्र से, रघुवीर नगर से दिलावर खान।

और श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं आसपास फिल्म से ये गीत। मिली जुली आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, और इस गीत को पसंद किया है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू ने।

0: आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से सुनिए सुनैन आई हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आई केयर फॉर यू कल रविवार को शाम 5:30 से।
1: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
0: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
1: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
0: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
1: ध्यान रहे मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
0: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
1: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
2: और भाई साहब क्या हाल है?
0: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया, इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे, बगल में डस्टबिन है।
2: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
0: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और

श्रोताओं एक आवश्यक सूचना, दिनांक 22 जून 2026 दिन सोमवार को सायं 5:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में चर्चा का विषय है गर्भावस्था एवं प्रसवोत्तर से जुड़ी सामान्य समस्याएं और समाधान। विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजूषा पांडे। इनसे बातचीत करने के लिए आपको डायल करना होगा आकाशवाणी अयोध्या का फोन नंबर 7376804090। नंबर एक बार पुनः सुन लें 7376804090। समय एक बार पुनः सुन लें 22 जून 2026 दिन सोमवार। समय है सायं 5:30 से। सूचना समाप्त हुई। और अब शामिल कर रहे हैं हमारे अन्य श्रोताओं के नाम। तो कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, सुरेश गगनेजा जलालाबाद वेस्ट से, मोहम्मद यासीन अनजान दादा बाबू रोड गिरीडे झारखंड से, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, लाहौरा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव चौहान, लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा, श्रीगंगानगर राजस्थान से सिद्धार्थनगर, दरियापुर बाबली से गजानन एले, सांगली जत शहर से अल्ताफ हुजरी, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाकतरिया धाकर, उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश से साहू शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, हांडीगेड़ा सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, कवर कॉलोनी बड़वा खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली,

और अब लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में सुनिए आए दिन बहार के इस फिल्म से गीत। और इस गीत को पसंद किया है अल्ताफ हुजरे सांगली जस शहर से।

मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार

0: होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
2: शामिल कर रहे हैं अब हम हमारे और भी श्रोताओं के नाम। तो आदर्श नगर मालौट पंजाब से राजपाल यादव राजपाल राज, उमा सिंह उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, नाभा पटियाला पंजाब से सोमदत्त, रावर करनाल से विनोद लखनपाल, ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से राघव बघेल, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, कालका से शुभचंद्र बजाज, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, रामपुर रोड हल्द्वानी से गंगा सिंह रावत आलोट, रतलाम मध्य प्रदेश से कुंवर कृपाल सिंह, उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूड़त, सुदर्शन शाह पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, गोविंद वैष्णव लसूड़िया पाता नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से।

जीत फिल्म से ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में, और गीत को पसंद किया है गोविंद वैष्णव लसूड़िया पाता नरसिंगर राजगढ़ मध्य प्रदेश से।

खिल्लू परवेज हरदोई लखनऊ उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहदरा से, दिल्ली से तुलसी मस्किन, पंचकुला चंडीगढ़ से तुलसीदास चुग मस्किन, लोहे री महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, चनौरा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी, लाल कुशवाहा खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, देवेंद्र कुमार गुप्ता कस्बा उघैती बदायूं से, ग्राम शंकरपुर उसावा बदायूं से सोमेंद्र यादव, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, अनिल वर्मा सदर बाजार कुरावली से, हीरावली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और सलार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन।

आष्टी जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, कोल सिटी वर्काकाना से अफजाल ताज, सीताराम कांगड़ा एकता कॉलोनी रोहतक से दीपेश वर्मा, पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दातार सिंह, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से प्रकाश बोर गांवकर, छत्रपति संभाजीनगर से लदावली मुरादाबाद से अजीत कसाना और गन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान।

आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम गीतांजलि।

0: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ DM कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532 21909।

0: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
1: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकती फरमाइश हर बुधवार।

0: आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 8303021911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डंडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, ओडिशा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे।

गीतांजलि कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। कुछ ही पलों में होंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
1: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था उसका पुनर्निर्माण, केदार धाम बद्री धाम का पुनर्निर्माण, सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है, कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम शुरू हो गया।
0: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में CCTV निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।

0: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
1: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है उनको हम बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते और ये प्रूव हो चुका है।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मिति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाइब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
2: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया।

और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

खैर समाचार के बाद एक बार पुनः आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी जगत।

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: RBI कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: नारी जगत कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। और आज आपके साथ हैं आपकी रेडियो सखी हिना कमर। आप सभी को मेरा नमस्कार। सखियों, आज है शनिवार और आज के दिन हम लेकर आते हैं आज का स्पेशल सेगमेंट लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सहेली, जिसमें हम फोन कॉल के जरिए अपनी सहेलियों से बात करते हैं और जानते हैं उनका नजरिया। तो सखियों, हमसे बात करने के लिए डायल कीजिए हमारा फोन नंबर 7376804090। और हमारी आज की बातचीत का विषय है, कितना समय देती हैं अपने दैनिक जीवन में योग को। जी हाँ सखियों, हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि हमारी सखियाँ अपने दिन भर के काम में से क्या समय निकाल करके योगा करती हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को, हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करती हैं, हमारे शरीर का जो लचीलापन है ना वो बढ़ता है योग करने से, और शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है। तो सखियों, हम अपनी सखियों से को एक बार फिर अपना नंबर बता दें कि हमारा फ़ोन नंबर है 7376804090। सखियों, देर नहीं कीजिए, कॉल करिए, हमसे बातचीत करिए और अपना नज़रिया हमसे शेयर करिए। सखियों, कहते हैं कि अगर नियमित योग किया जाए, यानी कि दैनिक रोज़ रोज़ थोड़ा सा भी समय निकाल करके अगर योग किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। देखते हैं हमारे साथ फ़ोन कॉल पर कौन है। हेलो।
5: हेलो
4: जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
5: जी,
4: बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे कार्यक्रम में हमारी सखियाँ जो हैं वो हम फोन करें और हमसे बात करें, तो अगर आपके आसपास कोई महिला हो उनको दे दीजिए, या तो फिर हम चाहेंगे कि हमारी सखियाँ ही हमें कॉल करें आज।
5: मतलब गाना नहीं सुनाएंगी?
4: सर, ये आज नारी जगत कार्यक्रम चल रहा है और इस पे हम अपनी सखियों से सिर्फ बातचीत करेंगे। सखियों, हम चाहेंगे कि जो हमारी सखियां हैं आज हमारे पास फोन करें और हमसे बात करें और अपना नजरिया हमसे शेयर करें। सखियों, हमारा एक फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, हमारा फोन नंबर है 7376804090। सखियों, हम बात कर रहे थे योग की, कि अगर हम लोग अपने दिन के कामों में, दैनिक कामों में अगर थोड़ा सा समय निकाल करके योग करते हैं तो इसका क्या फायदा होता है हमको? जैसे तनाव जो पैदा करने वाले हार्मोन्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, वो बहुत नियंत्रित हो जाते हैं और हम महिलाओं को मानसिक शांति भी मिलती है। देखते हैं फोन कॉल पे कौन है हमारे साथ। हेलो। हेलो, सखियों, हम बता दें कि ये हमारा जो नारी जगत का कार्यक्रम है, इसमें हम जो हमारा आज की बातचीत का विषय है, हम उस पर अपनी सखियों से बातचीत करेंगे। और हमारी आज की जो बातचीत का विषय है कि कितना समय देती हैं अपने दैनिक जीवन में योग को।

0: देखते हैं फोन पे कौन है।
1: हेलो
0: हेलो, कौन और कहाँ से बात?
1: नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रही है?
1: सुनीला देवी, बड़ी देवकाली से बोल रही हूँ।
0: अच्छा जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बताइए कि हमारी जो है कार्यक्रम में आपने बातचीत का विषय तो हमारा सुनी लिया है कि आज जो है कितना समय देती हैं योग को।
1: ये योग से जी को बहुत ज्यादा फायदा है। योग से हमारा मोटापा कम होता है
0: जी जी,
1: हमारे शरीर में वो बॉडी में जो जो कहीं कहीं जोड़ों में दर्द रहता है, कहीं कहीं वो टाइम का हो जाता है, पेट में फिर दिक्कत होती है, उससे भी हमको बहुत फायदा मिलता है। हम योगी रामदेव का भी योग देखते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने तो ये हमें इसका फायदा गिनाया ना। ये बताइए कि आप अपने जो है रोजमर्रा के काम है, जो दिन भर के काम है, उसमें से क्या समय निकाल पाती हैं योग करने के लिए?
1: हाँ जी जी, निकालते हैं सुबह
0: सुबह करती हैं या शाम में करती हैं? हमारी सखियों को बताइए कि आप कैसे टाइम निकालती हैं और कितने समय देती हैं योग को।
1: समय आधा घंटा जैसे हमारे पास समय रहता है, अगर काम हम जल्दी अपना
0: जी जी, ये हमारा सबसे बड़ा विषय है आज बात का कि हमारी सखियां जो है अक्सर चाहती तो है करना, लेकिन वो काम में इतना बिजी हो जाती हैं कि समय नहीं निकाल पाती हैं। तो हमारी जो आज
1: निकालना चाहिए, बिल्कुल उठना चाहिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम यही आज अपनी सखियों से बातचीत
1: करना चाहिए। योग करने के बाद तब अपना काम करें, सुबह 5 बजे उठे,
0: मतलब
1: योग करने के बाद में तब अपना काम शुरू करें।
0: अच्छा, तो आप कितना मिनट देती हैं, कितने मिनट तक आप कर लेती हैं?
1: आधे घंटे एक घंटे ऐसे करते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर पाते जी।
0: इससे ज्यादा नहीं कर पाते, तो क्या रोज रोज आप कर लेती हैं कि मतलब जैसे एक दिन क्या आज किया, रोज मैनेज कर लेती हैं?
1: पड़ी रहती है तब वो दिक्कतें कम होती हैं, अगर रोज नहीं करेंगी तो दिक्कतें बढ़ती रहेंगी, तब उसमें रिलीफ नहीं मिलेगा आपको।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो सुबह का समय देती हैं आप या शाम का समय देती हैं?
1: जी जी नहीं, सुबह का समय देते हैं।
0: सुबह का समय ज्यादा बेहतर है योग के लिए।
1: जी, जी
0: बिल्कुल, और हम तो बस यही चाहेंगे, बहुत अच्छा किया आपने हमें कॉल किया, हमसे बात किया, कि हमारी सभी सखियां कोशिश करें। भाई हम लोग क्या करेंगे ना, काम के साथ हमें कोशिश करनी है कि हम योग को भी टाइम दें। अगर हम चाहते हैं स्वस्थ रहना तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा सा।
1: सुबह टहलना चाहिए और सुबह टहलने भी निकलते हैं हम।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा और बहुत अच्छी बात भी कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, हमसे बातचीत किया। सखियों बहुत अच्छा कहा इन्होंने कि देखिए इन्होंने तो टाइम निकाला 30 मिनट अपने रोजमर्रा के काम में। देखते हैं कौन है हमारे साथ फोन कॉल पर। हेलो
2: हेलो, नमस्ते राम।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
2: मैं आराध्या बोल रही हूँ।
0: अच्छा आराध्या जी, कहाँ से बोल रही हैं?
2: मैं अयोध्या से बोल रही हूँ।
0: आराध्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और देखिए आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने जो है रोजमर्रा के काम में या दैनिक काम में योग को टाइम कितना दे पाते हैं। यह जरूरी तो है हमारे लिए, बहुत जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। समय कैसे निकालती हैं हमारी सखियां और कैसे निकालना चाहिए, आज हमारी जो बातचीत का विषय है ये है। तो ये बताइए आप,
2: आपके लिए प्रतिदिन 20 से 35 मिनट का प्रयोग पर्याप्त है।
0: अच्छा, तो आप ये बताइए
2: 30 मिनट और अनुभवी लोग 10-60 मिनट से या अधिक तक कर सकते हैं।
0: कर सकते हैं, आप बताइए कि अपने जो डेली रूटीन है आपकी, उसमें से आप क्या समय निकाल पाती योग के लिए?
2: आधे घंटे योगा करती हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर पाती।
0: ज्यादा नहीं कर पाती, तो सुबह में समय निकालती हैं या शाम में?
2: हम दोपहर
0: में, यानी कि सुबह के
2: जो है काम, लंच टाइम में।
0: लंच टाइम में, तो लंच टाइम में जैसे फौरन खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में तो कोई भी एक्सरसाइज है या व्यायाम है या योगा है, तुरंत तो नहीं करना चाहिए?
2: नहीं करती हूँ मैं, दोपहर लंच 2 बजे करती हूँ, 3 बजे योगा करती हूँ।
0: अच्छा, मतलब 1 घंटे के बाद करती। बिल्कुल, हमारी सखियों को हम यही चाहते हैं कि हमारी सखियां आज ये जाने कि भाई हमको काम तो है, हमारे साथ हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, काम भी है, तो हमको कैसे मैनेज करना है, सुबह में टाइम कैसे निकालें, दोपहर में भी टाइम कैसे निकालें या शाम में, जैसे भी वो अपने काम के साथ मैनेज कर सकती
2: हैं। देखिए मैं होम टाइम से एमए कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं बिजी रहती हूँ पढ़ाई में।
0: बिल्कुल,
2: तो मुझे नहीं लगता कि हर समय योगा करना मेरे पढ़ाई के लिए सही है, तो इसलिए मैं दोपहर में 3 बजे आधे घंटे के लिए योगा करती हूँ।
0: अच्छा, हमारी सखियों से क्या कहना चाहेंगी कि जैसे उनका इतना बिजी शेड्यूल होता है तो वो कैसे मैनेज करें?
2: मैं तो यही कहना चाहूंगी साधारण स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है 20 से 30 मिनट।
0: 20 से 30 मिनट
2: कम करना मानसिक शांति के लिए बहुत प्रभावी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मानसिक

0: शांति के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और टाइम निकालना भी चाहिए।
1: मैं कहना चाहूंगी कि हमारी सखियां हम 20 से 30 मिनट जरूर निकाले और योगा करें, उन्हीं के फायदा होगा। इसमें कुछ थकान नहीं लगेगी, डिप्रेशन नहीं लगेगा।
0: सही, थोड़ा डिप्रेशन से बाहर आएंगी, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना ही है, कैसे भी करके अपने लिए 10-15-20 मिनट हमें अपने लिए निकालना ही निकालना है, एक्सरसाइज करने के लिए, योग करने के लिए। बहुत अच्छा आपने आराध्या जी, आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आराध्या जी ने अभी हमें कॉल किया, उन्होंने हमसे बताया कि भाई वो सुबह नहीं कर पाती हैं, बिजी रहती हैं, तो वो दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे बाद वो योग करती हैं। वो अपने दैनिक काम के बीच में उन्होंने वो जैसे समय निकाल पाती हैं वो करती हैं। तो भाई हमारी सखियां भी, हम यही चाहेंगे कि हमें वो फोन करें और ये बताएं कि वो कैसे मैनेज करती हैं और हमें कैसे मैनेज करना चाहिए कि हम योग कर सकें। और भाई फायदेमंद तो है, हर चीज हमारे शारीरिक मानसिक हर तरह के तनाव को दूर करता है, एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा है हमारे लिए। और सखियों, ये हमारा जो हम अगर योग करते हैं ना, तो ये है जो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है, जो हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है ना, वो हमारी बढ़ती है। तो भाई फायदेमंद तो है ही, लेकिन हमें टाइम निकालना ही है हम एक्सरसाइज करने के लिए, योग करने के लिए, खासकर योग करने के लिए 20 से 25 मिनट तो हमें देना ही देना है। तो हम अपनी सखियों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारा फ़ोन नंबर है 7376804090, इस पर कॉल करें और हमसे अपना नज़रिया शेयर करें और हमें ये बताएं कि वो कैसे मैनेज कर रही हैं और हमें कैसे करना चाहिए। सखियों, अगर हम योग करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ना एक स्थिरता आती है और ध्यान केंद्रित करने में हमें बहुत मदद मिलती है। जब हम योग करते हैं ना, तो हम अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित कर लेते हैं, जिससे हमारी कार्य क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में बहुत ज्यादा सुधार होता है। सखियों, हम अपनी सहेलियों के फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। हमारी सखियां जब तक हमें फोन करती हैं, तब तक आइए सुनते हैं ये प्यारा संगीत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
5: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
6: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
5: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
6: जी हाँ, और वो है योग।
5: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
6: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
5: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
6: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
5: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
6: योग करिए, निरोग रहिए।
7: सखियों, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज देखिए लाइव फोन इन प्रोग्राम है, हेलो सहेली चल रहा है, जिसमें हम बात करते हैं फोन कॉल के जरिए अपनी सखियों से, और उनसे हम बातचीत करते हैं, उनका वो हमसे अपना नजरिया शेयर करती हैं। और हमारा फ़ोन नंबर सखियों, एक बार फिर से नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 7376804090। सखियों, कॉल करिए और हमसे बात करिए, अपना नज़रिया हमसे शेयर करिए। साथ ही साथ सखियों, देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि दैनिक जीवन में हम योग को कितना समय देते हैं, कितना समय निकाल पाते हैं अपने लिए। तो सखियों, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि दिन की शुरुआत कम से कम 15 से 20 मिनट के हल्के योगासनों और प्राणायाम से करना चाहिए। साथ ही सखियों, योग में सांस लेने और छोड़ने का बहुत महत्व है, हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी आयु और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही योग करना चाहिए, जितना हम कर सकें। ये नहीं कि हमने आज ही सोचा और आज ही करने लगे। देखते हैं हमारे साथ फ़ोन पे कौन है। हेलो हेलो
8: हेलो
7: हेलो, लग रहा है फ़ोन कट गई। सखियों, कॉल करिए और हमसे अपना नज़रिया शेयर करिए। सखियों, हम बातचीत कर रहे थे कि योग में हमें अपनी आयु, अपनी कार्य, जो जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही हमें योग करना चाहिए। बहुत थक करके एक ही दिन में नहीं करना है कि हमको शुरुआत हमें 10 से 15 मिनट, 20 मिनट के साथ करिए।

0: चाहिए। देखते हैं फोन कॉल पे कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: हेलो
0: सखियो, हम लोग बात कर रहे थे कि योग दिन में, सखियो जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना हम लोगों के साथ कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं फंक्शन पे या पार्टीज में, तो हम लोग सोचते हैं जब हम तैयार होते हैं तो हमें अपने आप में महसूस होता है कि देखते हैं पहले फोन कॉल पे कौन है हमारे साथ, फिर बात करते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
2: निशा मैम बोल रहे हैं।
0: निशा जी कहाँ से बोल रही हैं?
2: मैम गोंडा से।
0: गोंडा से निशा जी, देखिए कार्यक्रम आप सुन रही हैं और जो हमारी कार्यक्रम में बातचीत का जो विषय है वो हमारा ये है कि कितना समय देती हैं अपने दैनिक जीवन में योग को। तो आप हमें बताएंगी कि आप अपने रूटीन में डेली के कामों के साथ योग को कितना टाइम देती हैं और कैसे मैनेज करती हैं?
2: मैम जैसे मुझे लगता है कि सुबह मॉर्निंग के टाइम में 4 से 5 के बीच में योगा का बहुत अच्छा टाइम रहता है।
0: सुबह 4 से 5 के बीच में
2: मैम योगा करने से जैसे 15 से 20 मिनट खुद को दीजिए ताकि मन सुबह फ्रेश रहता है, दिमाग भी फ्रेश रहता है, पूरे टाइम थोड़ा फ्रेशनेस महसूस होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए योग करने से फ्रेशनेस तो महसूस होती है। ये बताइए कि आप कैसे मैनेज करती हैं और अगर हमारी सखियां बहुत काम है जिनके साथ वो कैसे मैनेज करें?
2: मैम जहाँ तक है मैं सुबह ही योगा करती हूँ 15 से 20 मिनट ही, उसके बाद मैम सुबह से बहुत सारे काम रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, काम तो रहते ही हैं, तो यही तो हमारी बातचीत का विषय है कि हम लोग काम के साथ उसको कैसे मैनेज करें, कैसे टाइम निकालें। तो क्या डेली डेली मतलब रोज आप कर लेती हैं?
2: हाँ मैम करते हैं सुबह।
0: अच्छा, रोज कर लेती हैं?
2: हाँ मैम कर लेती हैं।
0: कर लेती है, ऐसा तो नहीं है कि जैसे 2-3 दिन किया फिर छूट गया, फिर दो एक आध दिन किया एक आध दिन?
2: नहीं मैम नहीं, जैसे मतलब 2-4 दिन भी करते हैं उसके बाद जैसे उसकी आदत बन जाती है योगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि अगर हम रोज करेंगे,
2: जैसे चाय के लिए सुबह एकदम परेशान रहते नहीं पीती, वैसे अगर योगा नहीं करते तो पूरा टाइम उसी में मन लगा रहे, आज किए नहीं आज किए नहीं
0: आज किए नहीं आज किए नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, और आप 15 से 20 मिनट टाइम निकालती हैं, तो हमारी सखियों से क्या कहना चाहेंगी कि वो अपने काम के साथ थोड़ा सा टाइम कैसे निकालें?
2: मैम मैं सभी से यही कहना चाहूंगी योगा करने से जहाँ तक है आप मेडिसिन से बहुत ज्यादा बच सकती हैं।
0: मेडिसिन से, बहुत अच्छी बात कही आपने, मेडिसिन से बच सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बहुत अच्छी बात। निशा जी आपने कॉल किया, हमसे बात किया, हमारी सखियों को इतनी अच्छी उनको थोड़ा सा बताया कि हम के क्या फायदे हैं और कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए सखियों। बहुत अच्छी, निशा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हम डेली रूटीन में इसको फॉलो करें या रोज रोज अगर हम करने की आदत डाल लें, जब आदत पड़ जाएगी ना तो अपने आप हम टाइम से उसको करेंगे। मेन चीज़ है आदत डालना, जब हम खुद से टाइम निकाल के रोज रोज थोड़ा सा योगा करेंगे, थोड़ा सा व्यायाम करेंगे, तभी आदत जब उसकी हमें पड़ जाएगी तो हमारा टाइम सेट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने कामों के साथ टाइम को कैसे मैनेज करें। तो कामों के साथ सखियों ये भी बहुत जरूरी है, 15 मिनट ही सही 20 मिनट ही सही, लेकिन हमें टाइम निकाल कर योगा करना ही है। योगा करने से सखियों भाई बीमारियों से तो हम बच ही रहे हैं, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, दवाइयों से भी हम कहीं ना कहीं बच रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश हमें करना है कि देखते हैं हमारे साथ फोन कॉल पे कौन है। सखियों हमसे कॉल करिए और हमसे बातचीत करिए। देखिए हमारा फोन नंबर है 7376804090। सखियो हमें कॉल करिए और हमसे बात करिए और अपना नजरिया हमसे शेयर करिए। सखियो बात कर रहे थे हम कि हम लोग सोचते तो हैं जब कभी किसी फंक्शन पार्टीज में जाना होता है, हम सखियां जब तैयार होते हैं तो हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं कल से हम तो हम योगा करेंगे ही करेंगे, लेकिन 1-2 दिन तो हम लोग बहुत एक्साइटमेंट में करते हैं, फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद वो धीरे धीरे हम लोग उसको करना ठीक है, यार 2 दिन कर लिया फिर 1 दिन छोड़ के कर लिया, तो ऐसा नहीं करना है, हमें कोशिश करना है कि हम रोज रोज करें। देते हैं फोन कॉल पे कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, लग रहा है कि हमारी सखियों की आवाज़ नहीं आ रही है। सखियों हमें कॉल करिए, हमारा फ़ोन नंबर है 7376804090 और हमसे बातचीत करिए, अपना नज़रिया हमारे साथ शेयर करिए। सखियो ये तो हम सखियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग सोचते हैं हम लोग कल से ज़रूर अपने लिए टाइम निकालेंगे, और देखिए योगा कोई एक दिन की एक्सरसाइज नहीं है, हमें इसको

0: अपने दैनिक जीवन में इसको फॉलो करना है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
1: हेलो
0: सखियां, हमको जो है हम अपनी सखियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारी सखियां फोन करें और हमसे बात करें और अपना नजरिया हमसे शेयर करें। देखते हैं फोन कॉल पे कौन है हमारे साथ। सखियों, हम लोग बात कर रहे थे योग की, देखते हैं कौन है फोन पे। हेलो हेलो हेलो, हमारी सखियों की आवाज़ नहीं आ रही है। सखियों, हम लोग बात कर रहे थे कि दैनिक जीवन में योग को शामिल करने की, देखते हैं कौन है फ़ोन पे। हेलो हेलो, फ़ोन कट गया। सखियों, हम लोग बात कर रहे थे कि दैनिक जीवन में हम लोग योग को जो कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट तक, कुछ दिन तक लगातार हमको करना पड़ेगा। एक ही टाइम पे जब हम लगातार कई दिनों तक, महीनों तक जब करेंगे ना, तभी जाकर हमारा टाइम सेट होगा। देखते हैं कौन है फोन पे। हेलो
2: हेलो हेलो
0: हेलो, सखियो हमें आवाज़ नहीं आ रही है। सखियो, हम जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी सखियों से कि हमारी सखियां हमें फ़ोन करें और हमसे बात करें। देखते हैं कौन है हमारे साथ फोन पर। हेलो हेलो, सखियों बात हम योगा की कर रहे थे हम लोग, कि हम लोग अपने कामों के साथ कैसे मैनेज करें। हमारी सखियां कहती हैं कि हम लोग भी हैं, कभी कभी हम लोगों को सुबह टाइम नहीं मिल पाता है, काम के साथ साथ हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना है कि अपने लिए भी 10 से 15 मिनट निकालें। देखते हैं फोन पे कौन है। हेलो हेलो हेलो, लग रहा है फोन कॉल कट गई है। देखते हैं कौन है। सखियों, बात कर रहे थे हम लोग कि जो है अपने दैनिक जीवन में योग को कितना महत्व हमें देना है, कैसे मैनेज करना है। भाई महत्वपूर्ण तो है ही योगा, और हमें अपने दैनिक जीवन में इसे अपनाना भी है। देखिए, आने वाला जो दौर है वो बहुत हम महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत वाला होने वाला है, क्योंकि हम जो महिलाएं हैं ना, हमारे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, और हमें इसके लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाएं, और लगातार नियमित रूप से जब हम करेंगे ना, तब हमारा टाइम सेट हो जाएगा और हम स्वस्थ रह सकते हैं। देखते हैं कौन है हमारे साथ फोन कॉल पर। हेलो हेलो, सखियों लग रहा है फोन कॉल कट गई है। और सखियों, देखिए कार्यक्रम का समय भी हो रहा है, और इसी के साथ हम अपनी सखियों से इजाज़त चाहेंगे कि समय समाप्त हो रहा है। इसी के साथ अपनी रेडियो सखी हिना कमर को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
3: अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

कार्यक्रम नारी जगत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है, 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के शेष कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। आंखें फिल्म से हमने से लिया है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा।

0: कभी कभी।
1: फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू सूर्यकांत राकेश साहू शुभम सावित्री साहू ने। साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी बिट्टू साजदा और हिना ने। और उल्लास माफ कीजिए अहिल्या नगर केड़गांव से भाऊ साहब नवथर अक्षय चंदन जय कुमार और रुचिता ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है.
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती.

0: सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से। संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने। उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने। जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभु दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से। अनजान ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियाद हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन और मोहम्मद।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने,

कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिंपल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन।

प्राण, हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है। इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं, और भैया झूठ मूठ। चली ही जाऊं अब।
1: जिनी।
0: हाँ?
1: जिनी।
0: कौन? बेंज।
1: खामोश। हाँ? आहिस्ता, इधर इस तरफ।
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंज, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी, हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंज, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
1: जिनी, तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
2: जुड़ू, बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
3: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी?
2: नहीं, फिलिप्स गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडो, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। This disgraceful on our part.
3: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
2: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
3: बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
4: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
2: लुक छिप कर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ
0: नहीं नहीं, मतलब यू ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
2: ठहरो। कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
0: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
2: सांझ से, बस जी थोड़ी देर से, और अब इस सांझ ठेले तक।
0: जी मैं घर जा रही हूँ।
3: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
0: मीटिंग नहीं तो नहीं देखी।
2: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात और क्या।
0: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूँ?
2: हाँ हाँ, जाओगी?
0: जी।
2: जाओगी क्यों नहीं। अच्छा क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
0: जी हाँ।
2: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइज की कविताएं पढ़ती हो?
0: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
2: उसे जानती भी हो?
0: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे,
3: वो ऐसा कोई खास रिपीटेड कवि नहीं है शायद।
0: अच्छा तो अब मैं चलूं।
2: हाँ जाओ जाओ।
3: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मॉलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
2: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।
3: ओह

0: मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ माँ,
1: क्यों रे बेंट, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना,
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच से प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, ये मृत्यु के अधरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या उठपटांग बके जा रहा है।
0: उठपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूँ माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ।
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास, कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास, इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है। हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: ओ राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ, तुम कवि बेंजामिन मोरेस की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे छोड़ भी, पागल कहीं
2: का। मासी, मासी।
0: जीनी
1: आ बेटी, अंदर आ जा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से है, वो परीक्षा नजदीक आ पहुंची है, तभी बेन से इकोनॉमिक्स के चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
1: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
2: जी अच्छा।
0: जीनी, कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है?
2: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
0: अच्छा होगी कोई।
2: हाँ?
0: पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। खैर इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश, क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में, यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला, रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश, मृत्यु देती

0: से नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
1: वाह वाह, क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट एंड इन टाइम यू विल बी अ ग्रेट पोएट बेंच।
0: वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
1: हाँ,
0: हकीकत यही है। खैर, अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
1: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
0: अरे, पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
1: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
0: नहीं,
1: कुछ भी नहीं समझते?
0: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
1: सारी बातें मुंह से कही नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ? क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं? क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
0: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है जिनी।
1: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
0: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
1: बेंच,
0: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना। मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जीनी।
1: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूँ।
0: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जीनी।
1: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
0: जिनी हाथ छोड़ो, शायद मां आ रही है।
1: अच्छा, तो मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
2: लिखाई पढ़ाई हो गई?
1: हाँ मौसी हो गई।
2: अरे, थोड़ी चाय तो पी कर जा।
1: नहीं, आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
2: बड़ी प्यारी लड़की है।

0: सर बहुत ही भला लड़का है। जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव
1: विल यू स्टॉप टू डू।
0: यस सर। यस मिस्टर थॉमसन। मैं तो
1: कुछ नहीं जानते तुम। उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और इन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी गलत है। बेंजामिन मोलाइस भला लड़का है उन ब्लैक स्वाइनों के लिए हमारे लिए नहीं। इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप सिलेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा इनकी इतनी हिम्मत। तब तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो। कॉले कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
0: ओके सर।
1: मेरा नाम थॉमसन है। स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता। हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों? सारा कुछ जलाकर राख कर डालूंगा। कमान चलो।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बापू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र के फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूँ बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
1: बेंज अंदर आ जाओ ना।
3: माँ हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
4: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंज?
3: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
5: अच्छा अच्छा, बैठे आप लोग बैठे।
1: बाबू बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
5: अरे इसे भला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
3: नहीं नहीं ऐसा ना कहिए, भला मुझ में इतनी ताकत कहाँ?
6: अरे भाई किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है इसे वो खुद भी नहीं जानता।
3: देखिए आप इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
5: अच्छा भाई तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
5: अच्छा

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, हाँ मौसी
2: जी। नहीं, आओ बेटी, आओ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
1: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
2: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
1: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली, पर
2: क्या
1: न जाने वो पूछो।
2: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की, बेंच कहाँ है, कैसा है?
1: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
2: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
1: अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंच वहीं गया होगा।
2: ये मीटिंग कहाँ है?
1: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
2: मीटिंग गुप्त समिति?
1: हाँ।
2: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
1: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?
2: तुम ठीक कहते हो बेटी, मेरा बेंच जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी ही रहेगा। हाँ।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब

0: मेरा ये निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
1: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापरकर का सुझाव एकदम सही है,
2: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
3: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
0: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
3: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उई सिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
2: कौन हो सकता है? कौन है? अरे, ये तो जोन्सबर्ग के नेता मिस्टर रोयंगा की आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
4: अरे, कैसे हुआ ऐसा?
2: क्या बात है?
4: क्या हुआ?
2: इतना खून? खून ये क्या? किसने ऐसा किया?
5: पुलिस ने?
2: ईश्वर,
5: यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया, चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दलबल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
4: ओ, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
5: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं कुछ ही दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
4: ठहरिए, पहले मैं ये बैंडेज बांधू।
2: देखो, जैसे भी हो रोयंगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना।
4: हाँ, कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
5: जरूर चल सकूंगा।
2: फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए, पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाई ओर नहर के रास्ते से चले जाइए। ईश्वर इनकी रक्षा करे। गेम्स, अब हमें क्या करना चाहिए?
4: बाबू, दरवाजा जरा देर से खोलना।
2: अच्छा, आता हूँ।

0: जोसेफ पिस्ते हैं?
1: जी हाँ सर।
0: ये कौन है? सर वो लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
1: जी जेम्स पिस्ते।
2: कमरे का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
1: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
0: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छोकरा आया था कहाँ गया?
1: यहाँ तो कोई भी नहीं आया सर।
0: शट अप, झूठा कहीं का। किधर है वो शैतान?
2: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
3: मैं सच कह रहा हूँ।
4: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर में हम आपको सुनवाएंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली में पीएम किसान की 23वीं किस्त के हस्तांतरण का आंखों देखा हाल, जिसका अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस। और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है, जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर, जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे। और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह, और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया, द रिजॉल्व टू मेक द कंट्री अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, टू मेक द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ आवर ग्रेट नेशन सेफ, सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Shri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan scheme, to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी, और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री

टकराव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव अगर तो देखते हैं इसमें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है ये। 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण

0: महासभा का एक महत्वपूर्ण तीन दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था और आज पूरे पश्चिम बंगाल में यह दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
1: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, we as part of India have to make India a Soni ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, brethren, we remember all those great years. During the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को यह दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहां का साहित्य, वहां की कला, वहां की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, दिस इज द प्रॉमिस विद व्हिच द गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्मड इन बंगाल आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ इनजस्टिस। नाउ वी सी दैट द गवर्नमेंट एंड दिस विल बी अ गवर्नमेंट व्हिच विल बी अ गवर्नमेंट ऑफ डबल इंजन एंड टुडेस फंक्शन सिद्धार्थ इज नॉट जस्ट समथिंग दैट वी आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज द 23rd इंस्टॉलमेंट, दिस इज अ डायरेक्ट ट्रांसफर। We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat, we see no middlemen, we see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine, we are doing so many steps. We are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's not just the money that is going to the farmers. It is also fertilizers, it is also the good quality of seeds, it is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain

0: gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
0: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। एंड आई वांट टू से दैट इट वोंट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे, बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिलमैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव, किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है, उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो, आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, द वर्ड दैट यू यूज्ड एंड यू हैड यूज्ड दिस वर्ड अर्लियर एज वेल, व्हिच इज सशक्त बनाना, that is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question, and that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere completely disconnected what is going on in the world, but he knows and he trusts the government, and then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए उनका स्वागत करते हुए लोग यहां पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे. Bengal Shri Arun Ravi and the Chief Minister of West Bengal Shri Suvendu Adhikari, people craning their necks now, the national anthem and the national song.

0: धन्यवाद।
1: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true, and the Honorable Prime Minister getting up from his seat along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय, और
0: प्रधानमंत्री जी के साथ अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी,
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु अधिकारी जी,
0: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति।
2: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए, और बंगाल में माँ दुर्गा का शैली में बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: के आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला,
2: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को।
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई।
1: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government, the sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
2: और वैभव, उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित, और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं।
3: वंदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम। भारत केसरी, लौह प्रणाम। स्वामी प्रणवानंद, लौह प्रणाम। सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री, गोटा पृथ्वीर सबचेये जनप्रिय नेता, जिनी 140 कोटी भारतवासीर हृदयेर अंतरेर आत्मीय, जिनी निजे के प्रधानमंत्री बोलें ना प्रधान सेवक बोलें, उनाके बाबा तारकनाथेर पुण्यभूमि तारकेश्वरे पश्चिमबंग दिवसे पश्चिमबंग सरकारेर पक्ष थेके आमी प्रणाम श्रद्धा एवं स्वागत जानाच्छि। आमादेर मध्ये उपविष्ट आछेन एई राज्येर अत्यंत लोकप्रिय एकजन राष्ट्रवादी राज्यपाल, आमादेर सरकारेर प्रधान परिचालक सम्मानीय आरएन रविजी एवं जनता जनार्दन। आजकेर एई ऐतिहासिक दिने एई तारकेश्वरेर पुण्यभूमिते माननीय प्रधानमंत्री तार व्यस्ततम शिड्यूलेर मध्ये उपविष्ट हयेछेन, तार कारण आमी अल्प कथाय निवेदन करब। माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसाय महामहिम राष्ट्रपति जीर संगे प्रोग्राम करे एखाने एसेछेन, ताके कलकाता फिरते हबे। তিনি আজকে লোকভবনে থাকবেন, আগামীকাল বিশ্ব যোগা দিবসে বন্দে যোগম কর্মসূচিতে তিনি লক্ষ লক্ষ যোগা অভ্যাসকারীদের সঙ্গে থাকবেন, তাই আমি বিস্তারিত বক্তব্য রাখব না। 1947 সালে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে এখানে হিন্দু মহাসম্মেলন হয়েছিল, 4 এপ্রিল থেকে 7 এপ্রিল। সেই দিন

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: द रिलीज ऑफ द पीएम किसान Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: Ji haan, Pradhan Mantri, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 करोड़ वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट व्हिच दिस

0: scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
1: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आर एन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है, ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे, तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर

उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी

बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को

यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, इससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था,

वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा, सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन, और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाली

नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष काज शुरू हो गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी। गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान

साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं, हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं, हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है, हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए, और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो,

0: मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards the future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे-धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूं। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली में पीएम किसान की 23वीं किस्त के हस्तांतरण की आंखों देखा हाल की ये रिपोर्ट। FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
5: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
4: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
6: कार्यक्रम लोक संगीत में आपका फिर से स्वागत है। अमरनाथ और साथियों की आवाज है इस गीत में।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
1: तौल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: कार्यक्रम लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आइए सुनते

0: राज क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9595242404 और 7800037222।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना एडीए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: आयुष्या स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: मालिनी अवस्थी और सखियों के स्वर में गाए इसी लोकगीत के साथ समाप्त हो रहा है कार्यक्रम लोक संगीत एफएम एंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप और akashvani.gov.in पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी सुन रहे हैं। शाम के 6 बजे आइए हमारे दिल्ली केंद्र से सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।

0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government in the presence of Mr. Modi, the President said, India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship. Addressing the public gathering, Prime Minister Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India.
1: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार

आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

0: भाई इस गर्मी में इतना पानी बहुत है। और अब इस प्रोग्राम का वक्त हो गया कि इसको ये वाइंड अप कर ले। आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे थे शाम सुहानी फिल्मी गीतों का ये प्रोग्राम। और अब वक्त है दिल्ली से संस्कृत में समाचारों का।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह ओडिशा राज्ये 6,47,000 करोड़ रुपयेकाणां परियोजनानां उद्घाटनम् अकरोत्। सर्वकारः सार्वजनिक हिताय 16 निश्चित मात्रा औषध संयोजनानां निर्माणं विक्रयणं वितरणं च निषेधितवान्। श्वः निर्धारितायाः नीट यूजी इति पुनः परीक्षायाः प्राक् एनटीए इत्यनेन राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल इत्याभ्यासः आयोज्यते। ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः पर्यन्तम् उपहिमालयीय पश्चिम बंगस्य सिक्किमस्य च पृथक् पृथक् स्थानेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। अपि च फीफा विश्व कप इति क्रीडायां ब्राजील देशः हैती देशं 3-0 पराजय्य प्रथमवारं विजयम् अलभत। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य ओडिशा राज्यस्य प्रगतेः प्रशंसा कृता, यत्र मुख्यमन्त्रिणः मोहन चरणमाझिनः नेतृत्वे राज्येन वर्षद्वयं पूरितम्। सः अवदत् यत् एतत् राज्यं द्रुतगत्या विकासस्य मार्गे अग्रे गच्छति तथा च पूर्वी भारतस्य विकासाय महत्वपूर्णं योगदानं प्रददाति। मयूरभंज जनपदस्य रायरंगपुरे जनसमूहं संबोधयता प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रपतेः जन्मदिनस्य शुभाशयाः प्रदत्ताः। तस्याः पैतृकग्रामे पहाड़पुरे आगमनं सौभाग्यम्।

0: चतुर्दश शत कोटि रूप्यकाणां श्री अम्बाबाई मंदिर विकास परियोजनायाः उद्घाटनानन्तरं जनसमूहं संबोधयन् श्री शाहः अवदत् यत् विकास परियोजनैषा ऐतिहासिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक परम्परायाः संरक्षणं कुर्वन्ति। मंदिर परिसरं आधुनिक तीर्थस्थान रूपेण प्रवर्तयिष्यति इति। 26,000 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस श्वः संपूर्णे विश्वे आचर्यते। अस्मिन् वर्षे 12 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आचर्यते। यस्य विषयः स्वस्थ्य जीवनाय योगः इत्यस्ति। यो हि समेषां आयुवर्गाणां कृते योगस्य महत्त्वं प्रतिपादयति। उत्सवस्यां स्वरूपेण संस्कृति मन्त्रालयः भारतस्य समृद्धां सांस्कृतिक योग परम्परां च संगृह्य देशस्य शत प्रतिष्ठित स्थानेषु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य विशेष कार्यक्रमाणां आयोजनं विधास्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू श्वः मध्य प्रदेशस्य जबलपुर नगरे राज्यस्तरीयस्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य कार्यक्रमे मुख्यातिथि रूपेण स्थास्यति। कार्यक्रमः प्रातः 7:30 सदर क्षेत्रस्य गैरिसन ग्राउंड इत्यत्र आरप्स्यति। अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिः तत्र प्राप्स्यति, यत्र राज्यपालः मंगुभाई पटेलः विमानस्थानके तस्याः स्वागतं करिष्यति। भारतं सोमवासरादारभ्य द्विदिवसीयं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदानां सम्मेलनम् आयोजयति। अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षः राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजीत डोभालः भविष्यति। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः पर्यन्तम् उपहिमालयीय पश्चिम बंगस्य सिक्किम राज्यस्य च पृथक् पृथक् स्थानेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रदत्ता अस्ति। ऋतु विभागेन दिने केरल माहे तमिलनाडु पुदुचेरी करैक्कल प्रदेशेषु पूर्वोत्तर भागेषु च प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् अस्ति। हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब दिल्ली उत्तराखंड पूर्वी मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेशेषु च विद्युद्योतनेन सह मेघगर्जनस्य संभावना ऋतु विभागेन प्रकटिता। बिहार आंध्र प्रदेश उत्तरांतरिक कर्नाटक तेलंगाना विदर्भ अंडमान निकोबार द्वीपेषु च आगामी दिनद्वयोः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। ब्राजील देशः अद्य फिलाडेल्फिया क्रीडांगणे हैति देशस्य उपरि 3-0 इत्यंकैः सहजतया विजयं प्राप्य फीफा विश्व कप क्रीडायां स्वस्य प्रथमं विजयं अभिलिखितम् इति वार्ताः।
1: श्रोताओं आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM पर। कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए akashvani.gov.in पर भी सुन रहे हैं। और वक्त हो गया है लोक संगीत के कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव की का। आइए सुनते हैं ये प्रोग्राम।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596-24-42-04 और 7800-37-22-22।
3: डोलिया के लाल रंग वो हरवा छोड़ा।
1: भाई इस प्यारे से प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं हैदर अली जुगनू और साथियों की आवाज में।

आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से सुनिए सुनैन आई हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आई केयर फॉर यू कल रविवार को शाम 5:30 से। आप सुनें अपने प्यारे एफएम आकाशवाणी अयोध्या को बब्बन निषाद और साथियों की आवाज़ है इस लोकगीत में।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना एरिया माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत FM आकाशवाणी अयोध्या से, और आपको याद दिला दें कि रात 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का खास प्रोग्राम एक ही कलाकार से, जो केंद्रित होगा अरिजीत सिंह पर। एक नए अंदाज में आप सुनेंगे इस प्रोग्राम को।

आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के एफएम बैंड पर ही आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र न्यूज ऑन एयर पर भी सुन रहे हैं आप और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए प्रोग्राम्स को आप सुन रहे हैं आकाशवाणी.gov.in पर। हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: उतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: पंचो जय हिंद।
5: समोखन भैया।
6: भैया पूरन।
5: भाई देखो, अपने सब पंचायती में आएगा वागे, और पंचन का आज काव काव सुनाओ जी, उका बताओ चला जाए।
6: देखो पंचन की बरे आज हम लेके आए है खरीफ लतादार सब्जियों की खेती के बारे में बात कही हुए हमारे पे, लेकिन ये के साथ ही साथ ही अपने सभी पंचन का सुनवाए खरीफ में औषधीय पौधों की नर्सरी की जो उन्नत विधि है उसके बारे में, और एक बताते हैं डॉक्टर राम सुमन मिश्रा भैया, इनके साथ ही बात कही की है अपने प्रभाकर भैया।

0: भैया, बिल्कुल भैया। और साथ ही साथ जौन है एक तो बाह्य ध्वनांकन पर आधारित जौन है, एक बात कही और सुनी है प्राकृतिक खेती और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में।
1: एक के बारे में जौन बात कही किए हैं रवीन्द्रनाथ जी हैं और इसे बात कही किए हैं राम प्रकाश भैया। साथ ही साथ जौन मौसम है, बाजार भाव है, वो तो रहे करे, लेकिन सबसे पहले बात कही खरीफ लतादार सब्जियों की खेती के।
0: बिल्कुल भाई, देखो जब खेती बाड़ी के बात आवत ना तो ऐसा ही तमाम अपने पंचे जौन है सब्जियन के खेती करे कोशिश करते है, करे है और आगे तैयारी भी करत है, जेमा लौकी, कोहड़ा, नेनुआ, करेला, खीरा, सरपुतिया यानी मियर मियर के जौन है सब्जी लगावे के जौन है गुंजाइश है।
1: भैया खरीफ के मौसम में ऐसे होते है अगर यहाँ हम सब यहाँ के खेती ढंग से करी और किंचा भी जल निकासी की जोन व्यवस्था है वह विशेष ध्यान दे, मचान की विधि अगर बना ली
0: बिल्कुल
1: तो क्वालिटी जो गुणवत्ता होते हमें मंडी में अच्छा दाम मिल सकता है।
0: बिल्कुल, कहे कि भैया ना जब पानी बरसे आगे जा अपन फसल तैयार रहे, कोनो फल लाग रहे और पानी भर जाए तो खराब हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और मचान विधि से बनाए पर वो अपन ऊपर रह जाते और नीचे निरावे गोड़े में आसान रहा था।
1: बिल्कुल, साथ ही साथ अगर हम जो खाद पानी दी थे बहु के जो उपयोगिता है वो ज्यादा हो जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हरमियर से बहुत व्यवस्थित रहा था,
1: निराई गुड़ाई में खर्चो कम लागत है, चूंकि जब अगर तरेन रखो तो बचाव पड़ते बाहर फल लागवा बाहर लागवा, तो जोन काम 2 घंटा में हुए है वो काम फिर 4 घंटा में होते है, और मचान विधि में अगर करो जोन घंटा जोन काम 4 घंटा में हुए है वो 2 घंटा में हो जाते हैं।
0: बिल्कुल भैया, लेकिन देखो बहुत ध्यान दिए वाली बात है ना कि पंचे जोन है समय के ध्यान दिए, समय पर बुआई करें,
1: बिल्कुल
0: उन्नतशील बिया का जोन है उसका बुआई करें और अपन खेत यह हिसाब से बनावे कि ताकि जोन है बढ़िया पैदावार हो,
1: उछास रहे तो ज्यादा अच्छा है, खलार में खेती से बचे चाहिए हमें सबका। लेकिन पंचो अब अभी जस बात की हो भैया पूरम भैया कि समय के ध्यान देख चाहिए, तो हम तो कही थे कि खरीफ के जो औषधि पौधा के उन्नत नर्सरी की बात है, पंचन को वक्त सुनवा दे चुकी, यो बिल्कुल समय के बात है।
0: बिल्कुल, देखो ये मन जो है खरीफ में औषधीय पौधों की नर्सरी की उन्नत खेती के विषय पर विशेषज्ञ अपने डॉक्टर राम सुमन मिश्रा भैया जो उनकी सहायक प्राध्यापक है औषधीय सब्जी विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से, और इनसे बतवान है अपने प्रभाकर शुक्ला भैया, चलो इसका सुना जाए।
1: बिल्कुल
2: पंचो, आज अपने आकाशवाणी के स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर राम सुमन मिश्रा भैया, आप सह प्राध्यापक औषधीय एवं सगंध पौध विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से हैं। डॉक्टर राम सुमन मिश्रा भैया, सबसे पहले तो आपके आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत करी थे।
3: धन्यवाद।
2: और स्वागत करे के साथ हम अपने पंच भैया का बतावा चाहते थे कि आज हमार और आपके जो बातचीत हुए खरीफ में औषधीय एवं सगंध पौध की नर्सरी की तैयारी की उन्नत विधि के बारे में, ये औषधीय पौधा का हुआ था या हमारे सबके जीवन में काम है, तो भाई सबसे पहले थोड़े के हमारे किसान पंचन का ये पे बता दिए।
3: औषधीय पौध वो पौध होते हैं जो कि प्रकृति में अपने आप जो है जंगलों में उगते रहे हैं
2: जी,
3: और हमारे वैद्य लोग थे, डॉक्टर लोग थे
2: जी,
3: उसको जंगलों से ला करके बीमारियों का जो है निदान करते थे।
2: अच्छा।
3: चूंकि अब जनसंख्या ज्यादा हो गई है
2: जी,
3: और हमारे जंगल धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं,
2: बिल्कुल,
3: और इससे जो है हमारे जो औषधीय पौधे हैं उसकी डायवर्सिटी है, जो विविधता है वो धीरे धीरे कम हो जा रही है
2: जी।
3: तो इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और ये जो सामान्य जनमानस है वो ये चाहता है कि इसकी खेती व्यावसायिक रूप से की जा सके, हमको और हमारे आने वाली जनरेशन को भी इसका लाभ मिलता रहे।
2: बिल्कुल।
3: और औषधीय पौध में जो है सारी बीमारियों का निदान है, चाहे वो अलग से जो है एक एक पौधे के लिए एक एक बीमारी है या कुछ पौधों के कॉम्बिनेशन को मिला बना करके भी जो है रोगों का निदान किया जाता है। आप सर्पगंधा को ले लीजिए, सर्पगंधा की जो जड़ होती है उसमें ऐसा गुण होता है कि जो मानसिक बीमारी के लोग होते हैं, जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी होती है या स्नेक बाइट की समस्या होती है, देने से उसका जो है रोग का निदान हो जाता है।
2: कहे मतलब है डॉक्टर भैया, जैसे कि आप बतावत हैं कि जोन भी ये औषधि पौधा है ये हमारे सबके शरीर के तमाम जोन रोग व्याधि हुआ थी इनके उपचार में काम आवत है। अब हम आपसे ही जानना चाहते थे कि चाहे जोन ये औषधि पौधा है, चाहे तुलसी है, चाहे कालमेघ है, सर्पगंधा है, सतावर है, एलोवेरा है, कोनो भी फसल है ये तरह के, इनका अगर हमारे किसान पंच अपने खेत में लगावा चाहते हैं, बोवा चाहते हैं, तो एक

0: लिखते हुए करें से पहले का सावधानी रखें, कौन जानकारी चाहिए, कैसे के शुरुआत करें?
1: देखिए, जो अभी समय चल रहा है ये खरीफ का सीजन, तो इस सीजन में किसान भाई तुलसी की खेती कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: बेसिल की कर सकते हैं, सर्पगंधा खेती कर सकते हैं, सतावर की, कालमेघ की एवं एलोवेरा की खेती कर सकते हैं
0: जी।
1: अब इसकी खेती करने से पहले किसान भाइयों को पौध तैयार करना पड़ता है।
0: अच्छा।
1: जिसका पौध जो है अब यही समय है, 15 जून से लेकर के 30 जून तक जो है इसकी नर्सरी डाली जाती है
0: जी। अच्छा, नर्सरी डावे का है मेरे किसान पंच का, तो ये के जो उन खेत है जो उन्हें खेते में नर्सरी डाली है, वह की तैयारी में का कुछ विशेष ध्यान रखे पड़त है?
1: अब जैसे तुलसी और बेसिल का है, तो तुलसी की नर्सरी बलुई दोमट मिट्टी में जिसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बन की मात्रा हो, उसके लिए सड़ी गोबर की खाद को डाल करके उसको भुरभुरा बना लेना चाहिए
0: जी।
1: और नर्सरी डालने के लिए जो है जो जमीन होती है उस 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई की आवश्यकता होती है।
0: अच्छा।
1: और ऊंचाई पर क्यारियां बना लेना चाहिए
0: जी,
1: जिससे बुआई के बाद क्यारियों में पानी का जमाव ना हो सके। और इसके लिए नर्सरी के लिए उच्च गुणवत्ता के 200 से 300 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है
0: जी।
1: बीज की बुआई से पहले बीज को 20 से 30 ग्राम ट्राइकोडर्मा जो आता है कवक रोधक जो है जीवाणु नाशक, उससे जो है शोधित कर लेना चाहिए।
0: अच्छा।
1: और शोधन करने के बाद जो है उसको छाया में सुखा लें
0: जी।
1: अब तुलसी और बेसिल का बीज बहुत छोटा होता है,
0: बिल्कुल
1: बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको बुआई के लिए जो है किसान भाइयों को चाहिए कि जो है इसको जो है बालू या राख में मिला लें, जिससे मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाए और जो है वो एकदम जो है घना बीज ना पड़े
0: जी जी जी।
1: तो इसलिए उसके साथ मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद जो है ये जो बीज होता है इसको 2 सेंटीमीटर की गहराई पर डालना चाहिए और लाइनों में डालना चाहिए।
0: अच्छा।
1: और लाइन में डालने के बाद उस लाइन के ऊपर जो है जो सड़ी गोबर की खाद भुरभुरी होती है उसको उस पर डाल देना चाहिए।
0: अच्छा, वो ढक दें।
1: हाँ, ढक दें। और ढकने के बाद फिर जो है हल्की सिंचाई कर देना चाहिए।
0: अच्छा, ये सिंचाई सीधे तो किन नहीं जा सकता?
1: नहीं, इसके ऊपर पुआल या जो है ये घास होती है इसको जो है उस पर बिछा देना चाहिए, और बिछा देने के बाद सुबह शाम उसी के ऊपर जो है सिंचाई करें, हजारे से या स्प्रिंकलर से
0: जी,
1: उससे सिंचाई करें।
0: यही हम जानना चाहते
1: तो हैं। वो सिंचाई करेंगे तो 2-3 दिन में बीज अंकुरण होने लगता है और 8-10 दिन में बीज अंकुरित हो जाता है।
0: अच्छा।
1: और जब 8-10 दिन का हो जाए तो ये जो पुआल और जो है घास डाले होते हैं इसको हटा दें।
0: अच्छा।
1: हटा देने के बाद फिर जो है उसकी सिंचाई कर दें, हल्की सिंचाई कर दें, और सिंचाई करने के बाद जो है ये जो है पौधा बढ़ने लगता है।
0: अच्छा।
1: पौधा जो है जब 4-5 पत्तियों का हो जाए, 10-15 सेंटीमीटर का, हाँ ये रुपाई के लिए प्रयोग करते हैं। इसके लिए जो हम उन्नत जो प्रजाति है उसको भी किसान भाइयों को जानना चाहिए।
0: हाँ।
1: तुलसी के लिए जो है सिम सौम्या है, सिम जागृति है, सिम शिशिर है, और GABT एक है, ये गुजरात आनंद ब्लैक तुलसी एक है।
0: अच्छा।
1: इसका जो है प्रयोग करेंगे तो किसान भाइयों को जो है अच्छा लाभ होगा।
0: बिल्कुल। तो डॉक्टर भैया, ये तो रही तुलसी के नर्सरी डावे की तैयारी। अब एक आगे जिसे आप बता रहे हैं कि कालमेघ है, सर्पगंधा है, सतावर है, एलोवेरा है, तो यहू नर्सरी का यही तरस पड़ता है कि क्या कुछ भी अलग है?
1: कालमेघ की नर्सरी की तैयारी तुलसी की तरह ही जो है करते हैं, लेकिन इसके लिए 500 ग्राम बीज पर हेक्टेयर की दर से आवश्यक होता है, और जो है इसकी जो नर्सरी बनाते हैं 10 मीटर × 2 मीटर की बनाते हैं।
0: अच्छा।
1: और ये भी जो है 10-15 सेंटीमीटर जो है जमीन से ऊपर होनी चाहिए,
0: मतलब जो सामान्य खेत है उससे
1: 10-15 सेंटीमीटर, जिससे कि बरसात अभी जो है जून के लास्ट तक बरसात हो जाएगी तो खेत में पानी भर जाएगा, तो पानी भर जाएगा तो जो है नर्सरी सड़ने की डर रहती है, इसलिए जो है इसको 10-15 सेंटीमीटर ऊपर बनाया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: 500 ग्राम जो है बीज को चाहिए, और शोधन के बाद भी जो है नर्सरी की बुआई कर देना चाहिए। बुआई से जो है 25-30 दिन बाद नर्सरी जो है तैयार हो जाती है रोपाई के लिए। और इसके लिए जो प्रमुख प्रजातियां हैं, उन्नत प्रजातियां हैं, उसमें गुजरात कालमेघ एक है, गुजरात कालमेघ दो है, और सिम मेघा है।

0: अब सर्पगंधा की जैसे आपने बात की
1: जी,
0: तो सर्पगंधा की रोपाई भी जो है इसकी दो तरह से कर सकते हैं, एक बीज स्वारा नर्सरी तैयार करते हैं और दूसरा जो है जड़ की कटिंग से भी तैयार करते हैं,
1: जड़ से भी लगा,
0: हाँ जड़ से भी इसको लगा लेते हैं। तो जैसे अब नर्सरी डालने का तरीका जो है ये बीज से जब करते हैं तो सर्पगंधा का बीज का जो जमाव होता है वो बहुत पुअर होता है, बहुत कम होता है, 10-15% ज्यादा बीज का जमाव नहीं होता है। इसीलिए जो है अगर हमको एक हेक्टेयर लगाना है तो हमको 5 किलोग्राम बीज को जो है लेना पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: और बीज को जो है हम नमक के घोल में 1 घंटा तक भिगो कर रखेंगे।
1: अच्छा।
0: जिससे वो शाफ्ट हो जाए
1: जी।
0: और उसके बाद उसको निकाल करके छाया में सुखा करके बुआई के लिए प्रयोग करेंगे। नहीं, सर्पगंधा में जो है राखी या बालू मिलाने की जरूरत नहीं है और नर्सरी डालने के 60 दिन बाद जो है पौध तैयार हो जाता है। 60 दिन के बाद इसको जो है इसकी रोपाई कर सकते हैं।
1: लंबा समय लिया था,
0: हाँ ये इसका जर्मिनेशन भी कम होता है और जो है देर में जमता है। जब जड़ से इसको तैयार करते हैं तो जड़ की जो छोटी छोटी कटिंग होती है उसको 4-4, 5-5 सेंटीमीटर काट लें और उसको फिर जो है 1 हेक्टेयर के लिए 80 से 100 किलोग्राम जड़ की आवश्यकता होती है। रोपाई जुलाई अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक किसान भाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो उन्नत प्रजाति है वो RR1 है और सिम सील है। अगली जो खेती होती है जो खरीफ में कर सकते हैं वो है सतावर की खेती। ये बहुत महत्वपूर्ण खेती है क्योंकि सतावर भी हर घर में प्रयोग किया जाता है। तो सतावर की नर्सरी बीज द्वारा की जाती है और इसके लिए 6 से 7 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यक होती है और नर्सरी की क्यारियां इसमें भी 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बनाना चाहिए। नर्सरी जहां पर डालेंगे वहां पर छाया होना चाहिए। इसकी खेती के लिए 50% छाया नर्सरी के लिए आवश्यक होती है और नर्सरी में कार्बन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे सड़ी गोबर की खाद उसमें मिला देंगे तो ये सब चीजें हो जाएंगी। और नर्सरी की जो बुआई करने के बाद उस पर सड़ी गोबर की खाद डाल करके ढक देंगे और उसको पुआल से या जो है घास फूस से ढक करके उसी पर हजारे से या स्प्रिंकलर से सिंचाई करेंगे। जब बीज का जमाव हो जाए 10-12 दिन में तब हल्की सिंचाई करेंगे और उसके बाद रोपाई जो है थोड़ा पौधा बड़ा हो जाए तब करते हैं, यानी 80 से 90 दिन बाद जो है लगभग करते हैं। यानी जैसे अब डालेंगे तो हम जो है अगस्त या सितंबर में इसकी रोपाई करेंगे।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर भैया। अब चलत हम यहीं पर एलोवेरा के बारे में भी कुछ जानकारी ले ली थी।
0: एलोवेरा के पौध जो है हमारे घरों में बहुत पहले से इसकी खेती होती रही है और सबके यहाँ हम देखते हैं कि एलोवेरा का चाहे एक ही पौधा हो उसका पौधा होता है। तो एलोवेरा का जो रोपाई होती है ये जो पुराने हमारे पौधे होते हैं उसी में से जो प्लांटलेट जो कल्ले निकलते हैं जो उसमें जो
1: है
0: छोटी छोटी जड़ के पास निकलते हैं
1: उन्हीं की रोपाई
0: उसी को निकाल लेते हैं। जब 2-3 पत्तियों के हो जाते हैं तो उसी को निकाल करके
1: दूसरी जगह लगा देते
0: हैं। हाँ, उसको जो है उसकी जड़ को शोधित कर लेते हैं मनकोजेब से या ट्राइकोडर्मा से, उसको छाया में सुखा करके फिर उसी को जो है हम लगा देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: 1 हेक्टेयर में लगभग 5,000 जो है प्लांटलेट्स की आवश्यकता होती है। और इसकी जो उन्नत प्रजाति है वो है गुजरात आनंद ग्वार पाठा 1। ये बहुत अच्छी प्रजाति है, नई प्रजाति है जो हमारे यहाँ अच्छी तरह से चलती है।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर राम सुमन मिश्रा भैया, खरीफ में औषधीय एवं सगंध पौधा के नर्सरी के तैयार करे की उन्नत विधि, कैसे रोपाई करी, वही कुल कौन प्रजाति अच्छी है, काव कैसे है, सब कुछ आप विस्तार से बताए हैं। आशा करी थी कि मेरे किसान पंच भैया जौन भी यह पौधा के खेती करे की इच्छुक हुई है, आपकी बात से प्रभावित हुई है और वे खेती करी है उनका अच्छा लाभ मिले, यह जानकारी का दिए के लिए आपका तीत है, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पूर्ण भैया,
3: हाँ भैया,
2: देखो ये तो बात कही रही है श्री रामसोन मिश्रा भैया के, खरीफ में औषधीय पौधों की नर्सरी की उन्नत विधि बतियान रहे अपने प्रभाकर भैया। खरीफ का जब मौसम आवत है तो जो फसल मार खरीफ के हैं वही तो रहा करती, साथ ही साथ और हमारे सबके फसल रहा थी वो भी ध्यान देख रहा था। लेकिन आज की जो खास एक बात रही है, सरकार के बराबर ही ख्याल रहा था कि जैसे भी खरीफ अपन शुरू हुए वाला है, पंच भैया शुरू किए हैं, तो आर्थिक सहायता के रूप में इनका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो 2,000 के 3 किस्त में जाते किसान पंचन के, आज वही के शुरुआत हो गई है।

0: तीसरी किस्त को।
1: हाँ
0: बिल्कुल भैया, और देखो ये कितना अपने किसान पंचन के ताएं सहयोग राशि मिल जाता है कि समय समय पर नए खाद के ताएं बिया के ताएं सोचे कहना रहत कि कहां से खरीदब।
1: बिल्कुल, हालांकि केसीसी वगैरह उनके पास रात हो के मतलब जो सहयोग ले सकते हैं, लेकिन खास बात यह है यहाँ कि क्यों यहाँ बीच में राहत नहीं, सीधे उनके खाता में पैसा जात है, आधार से लिंक राहत है, कोनो दिक्कत नहीं रहा। तो हम हाँ जोन किसान भैया हैं जोन संस्था जैसे कोनो सोसाइटी बनाए वगैरह से कुछ ज्यादा उनके पास है या कोनो ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स दिए थे, तो उनका सबका छोड़ के बाकी जितना किसान पंच भैया हैं वे सभी यह के लाभ उठा सकते थे। वह हम ई नहीं है कि नहीं फलानी जात की है, वो फलानी जात की है, कोनो भेदभाव के होते नहीं है।
0: बिल्कुल भैया, और खास बात एक और है ना कि यमन जो है महिला किसान जो अपने हैं वो लाभार्थी उन्होंने बड़ा हिस्सा है ना, हर चार किसान में से एक महिला किसान है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: उन्होंने का सहभागिता यमन बनी है
1: भैया। देखो अगर हम बात करें अपनी किसानी के, तो बिना महिला लोगों के चाहे काकी हुए चाहे भौजी हुए चाहे माई हुए, इनके सबके पूरा सहयोग हर काम में रहा था। सिर्फ किसानी में नहीं है कि नौकरी पेशा है तो दुकान दौरी है तो या सामान लेके हुआ तो पहुंचावे के तो धान लागे के तो भाई जो खरमिटा हुआ था ना घरे से आवत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर एक हमें लाग रहा था। लेकिन एक खास बात यह है कि हमें जो उनके जो सीमांत लघु अपने किसान है उनके अंश ज्यादा है, यानी वही ज्यादा लाभान्वित होते हैं ऐसे।
0: बिल्कुल भैया, और साथ ही साथ ये रहा ना एक परिवार में जो है एक व्यक्ति हाँ, एक सदस्य जो है हाँ, वही का एक लाभ मिला था।
1: बिल्कुल, तो हम तो ये कहे कि बात कही बेजारी कीजिए, एक पंचन की जो लावा हम प्राकृतिक खेती और
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बिल्कुल, बाय ध्वनिंकन पर आधारित, और वार्ताकार है रविंद्रनाथ पांडे भैया जो उनकी संयुक्त कृषि निदेशक अयोध्या, इनसे बतवान है राम प्रकाश पांडे भैया। चलो एक सुन लीजिए।
1: बिल्कुल,
2: प्रचलिका अपने सब खेती तो करबे करी थी, लेकिन अगर खेती कहा का मतलब जहर युक्त ना हुए, केमिकल वाली खेती ना हुए, अगर प्राकृतिक खेती कीजिए तो अपन स्वास्थ्य अच्छा रहे।
3: आप जैसे जान रहे हैं कि देखिए जो प्राकृतिक खेती है, पहले हम लोग खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए जब हमारे देश में अन्न की कमी थी तो हम कहते थे कि भाई आप संतुलित उर्वरक डालिए, डाई यूरिया पाउडर डालिए या कीटनाशक दवाई उपयोग करिए, लेकिन धीरे धीरे हम इन चीजों को बढ़ते गए। अब हमारा क्या है कि हमारा किसान इतना ज्यादा इस उपयोग कर रहा है या इनके उपयोग से हमारे जो खाद्यान्न पदार्थ हैं उनके अवशेष उस रसायन में जा रहे हैं, जिससे हमारे पशुओं की हमारे मानव की सबका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, जिसपे बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कैंसर। कैंसर ऐसी बीमारी है जिसके देख लीजिए दवा इलाज कराना बहुत ही कठिनाई है।
2: बिल्कुल,
3: और आप बताएं कि कैंसर कि इतनी इन चीजों से जो भी दवाइयाँ रसायन हम डालते हैं तो उसका दुष्परिणाम ये हो गया हमारी हमको अपने स्वास्थ्य बचाने के लिए या हम फिर अपनी पुरानी पद्धतियों पर
2: वापस आए थे।
3: वापस आ रहे
2: हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, जैसे पहले खेती करते हैं बचपन में और मोटा अनाज खाते हैं सीरियल में कमन में दिक्कत रही तो अपने सबको बढ़िया से खाते रहे नहीं
3: खा रहे
2: सावा कोदो सब कितना बढ़िया से मिलता रहा, लेकिन आज पंच भैया सीरियल में कहां जानते हैं।
3: तो उसके लिए ही मैं बता रहा था कि प्राकृतिक खेती बहुत महत्वपूर्ण है और प्राकृतिक खेती जो है हमारी जो है बहुत ही सस्ती विधि है, इसमें किसानों को कुछ भी नहीं लगाना, केवल उसके पास गोधन हो और गाय का गोबर और गाय का गोमूत्र, इन्हीं से आपको जो उत्पादन हम रासायनिक खादों को डालकर प्राप्त करते हैं उतना ही उत्पादन गोमूत्र और गाय के गोबर से जीवामृत है, घन जीवामृत है, बीज शोधन के लिए हम जो है बीजामृत है, दशपर्णीय घोल है, इन सब चीजों का बना करके और हम खेत में डालेंगे तो हमारी खेती माता जो है जमीन माता जो है स्वस्थ होंगी और जो हमारा अन्न पैदा होगा उसमें कोई अशुद्धता होगी, जिससे हम इन जो आने वाले समय में जो हमारा मतलब एक तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है लागत बढ़ रहा है तो यदि हम जीवामृत डालते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि एक गाय के गोबर से करीब हम जो है 2.5 एकड़ खेती एक गाय के गोबर से कर सकते हैं, जैसे जीवामृत बनाने के लिए आपको 10 लीटर गोमूत्र और 10 किलो गोबर।
2: बिल्कुल,
3: और पौधे हैं जैसे पीपल पौधा है बरगद का है इनके अच्छा। नीचे की एक 5 रुपया एक मुट्ठी मिट्टी
2: माटी
3: माटी
2: हाँ।
3: उसके अलावा आप 0.5 किलो गुड़ या 1 किलो गुड़
2: हाँ।
3: और उसके साथ अच्छा गुड़ भी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं चाहे जैसा गुड़ हो
2: अच्छा।
3: उसकी कोई जरूरत नहीं गुड़ होना चाहिए, थोड़ा पुराना भी गुड़ होगा या कम वैल्यू वाला गुड़ है तो भी आपका उसके कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आपको बेसन जैसे चने का या मटर का जो भी बेसन हो वो 1 किलो बेसन डाल करके आप बना दीजिए और 2 लीटर पानी में मिला करके चार पांच दिन में, जैसे गर्मियों में तीन चार दिन में, ठंडक में पांच छह दिन में, और एक ड्रम में डाल दीजिए, उसके बाद उसको एक एकड़ खेत में डालिए, तो आपकी पैदावार इतनी बढ़िया, फसल इतनी बढ़िया होती है कि उसको आपको कोई जरूरत उसमें रासायनिक उर्वरक डालने की कोई जरूरत नहीं है।
2: जब मनी जान जाती जैविक है भैया हमारा रसायन ना पड़ा पाए तो कितना बढ़िया रहता, मनी किचन गार्डन का करता है।
3: किचन गार्डन में तो सबसे महत्वपूर्ण यही है, तो हम लोग जो हमारी आज की किसानों को सलाह देते हैं अपने धीरे धीरे पहले हाइब्रिड डालिए, हम उसको कम करें, तो जैसे जैसे

0: जी आपको खाद्यान्न में करना तो जहाँ आप 10 बीघा लगाते हो आप 1 बीघा पहले आप जैविक करिए, अपने किचन गार्डन में आप जैसे थोड़ा थोड़ा आप करिए, तो इन चीजों को देखते हुए और हम लोग भारत सरकार हमारे यहाँ जो हमारे जिले में या अपने प्रदेश में इस समय जैविक खेती के क्लस्टर बन रहे हैं, हमारे यहाँ भी क्लस्टर बने हुए हैं, तो कुछ किसानों को हमारे ब्लॉकों में क्लस्टर बने हुए हैं जिनमें हम इन चीजों के लिए किसानों को प्रेरित करते हैं, उस क्लस्टर के माध्यम से सारी जानकारी उनको देते हैं।
1: बिल्कुल, यानी पंच भैया का अपनी जैविक खेती की तरफ आवेदन है, ये विशेष ध्यान देकर। एक चीज और हमने आपसे जानना चाहिए कि फसल बीमा का है, पंच भैया का बहुत जरूरी है।
0: फसल बीमा का मतलब ये है कि देखिए अभी तक जो है हम लोगों को जैसे जो कोई आपदा आ जाती है तो उसके लिए किसानों को एक छोटा प्रीमियम देना पड़ता है, खरीफ और रबी में दो, खरीफ के लिए जो उसका सीजन है ये इसी समय चल रहा है और रबी के लिए जब आपका ये खरीफ सीजन समाप्त हो जाएगा तो उसके 31 दिसंबर तक
1: यानी तैयार जो कोनो आपत्ति कोनो मुसीबत है फसल खराब होगी तो आपका निश्चित अगर बीमा कराए हैं तो लाभ
0: मिलेगा उसको आपको। और उसमें लिखने की चीज है कि वो बीमा जो होता है वो गांव की जो इकाई होती है उसके अनुसार वो
1: बिल्कुल
0: क्लेम मिल जाता है जिससे किसानों को राहत मिल जाती है, उनकी जो दुर्घटना हानि होती है उनसे उनको बचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, एक चीज और दिखेगी तब अगर पैदावार घटी पंच भैया का बीमा का लाभ मिले, यानी आपदा तो आई ठीक है लेकिन आपदा ना आई पहले ना अगर घटी के कोनो चीज तो वो जो ना कहना कि पूरा क्षेत्र हुआ था और पूरा क्षेत्र का फायदा पावत है, ये लिए पंच भैया का विशेष ध्यान दीजिए और सरकार का मंशा ही है।
0: सरकार की जो भी मंशा होती है किसानों के हित की होती है।
1: बिल्कुल,
0: और हमारा किसान यदि खुशी रहेगा तो हमारा देश हमारा राष्ट्रीय प्रगति करेगा।
1: बिल्कुल, अपन भारत और गांव में तो बसा था, पर जो गांव खुशी रहे तो बिल्कुल अपन पूरा भारत खुशी रहे। ये चलत चलत आपका कहा चाहिए जो आपका रेडियो सुनाता है उनसे आप कहा चाहिए,
0: उनसे ही हम कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों देखिए हमको जो प्राकृतिक खेती या जिसके बारे में बताया गया है इसको आप अपनाएं और इसमें मैं निश्चित आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप जो उत्पादन रासायनिक खेती करके प्राप्त करते हैं वही उत्पादन आपको प्राकृतिक खेती से मिलेगा और आपको कोई भी सामान बाहर से नहीं लाना, हमारे कृषि कुछ नहीं लाना है, आपको घर का सामान घर से ही आप करना है, केवल आपको पशु गाय का रखना है, बाकी आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना है। आपको देखिए जो गोमूत्र घर पर मिलेगा, गाय का गोबर घर पर मिलेगा, रसना आपको घर पर मिलेगा, बेसन लड्डू ये सब घर पर ही मिलेंगे, उसमें आप पैसे की बिल्कुल लागत नहीं है, इसलिए इससे सस्ता और
1: जीरो बजट वाली
0: खेती प्राकृतिक खेती को जीरो बजट खेती भी कहते हैं।
1: जी यही पंच भैया का यह सब बात विशेष ध्यान देखा है, खूब बढ़िया से खेती की अच्छा लाभ कमाएगा। चलो चलो अपना
0: हमारा नाम रविंद्र नारायण पांडे, वरिष्ठ प्राकृतिक सहायक ग्रुप ए, कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक अयोध्या मंडल अयोध्या।
1: बिल्कुल, आपको हमारी पंचायत में इतनी बढ़िया जानकारी दी, जरूर हमारे पंच भैया प्राकृतिक खेती की खूब लाभ कमाइए और सबसे बड़ी बात स्वस्थ रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंचो भैया बात कही सुनो, प्राकृतिक खेती और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपने राम प्रकाश पांडे भैया बतियान रहे हैं से। मुला यही के साथ आपका हम बतावत चली थे अब और लेके चली थे साथ साथ बाजार भाव पे और मौसम की बारी।
3: बिल्कुल समोकन भैया, भाई देखो अपने पंचे जब खेती बारी में इतना गर्मी में हर सीजन में जो है मेहनत करे थे तो ओके जब फल मिला था तो निक लागत है ना।
2: बिल्कुल भैया,
3: तो देखो जो अयोध्या मंडी से जो बाजार भाव आवा है वो अपने पंचन का बताओ चला जाए
2: आज के है ना। ये
3: बिल्कुल
2: हमारे यहाँ थोक भाव है, तो आप बताओ भैया शुरू करो। तो फिर
3: देखो जो मिला है भाव, चावल कामन रहा 3090 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूं दड़ा रहा 2575 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का पीली 2370 रुपया और उड़द काली 9300 रुपया प्रति क्विंटल।
2: जो चना देशी रहा भैया 6450 रुपया क्विंटल पाछे रहा, 7200 रुपया क्विंटल पाछे भाव रहा मसूर के, अलहरी की दाल रही 10950 रुपया क्विंटल, उजर की आलू रही 890 रुपया क्विंटल, 1400 रुपया क्विंटल पाछे भाव रहा ललकई प्याज के।
3: साथ ही साथ टमाटर रहा भैया 2470 रुपया प्रति क्विंटल, लहसुन रहा 7150 रुपया, तरोई रहा 1450 रुपया प्रति क्विंटल और खीरा रहा 1820 रुपया प्रति क्विंटल।
2: जबकि भाटा के भाव रहा 2000 रुपया क्विंटल पासे, हरियर मिर्चा रहा 3000 रुपया क्विंटल, 900 रुपया क्विंटल पासे भाव रहा कोहड़ा के, अदरक रही 9100 रुपया क्विंटल, शिमला मिर्च के भाव रहा 3700 रुपया क्विंटल, जबकि 1695 रुपया क्विंटल पासे भाव रहा भिंडी के।
3: साथ ही साथ लौकी जोन रहा 1420 रुपया प्रति क्विंटल, करेला रहा 1695 रुपया प्रति क्विंटल, केला पक्का के भाव रहा 2900 रुपया प्रति क्विंटल और नेबुआ रहा 5800 रुपया प्रति क्विंटल।
2: भैया पपीता सेहत के लिए फायदेमंद होते है, वह के भाव रहा 2800 रुपया क्विंटल पाछे, 12250 रुपया क्विंटल पाछे भाव रहा सेब के, अनार के भाव रहा 7300 रुपया क्विंटल, आम के भाव रहा 3750 रुपया क्विंटल,
3: बड़बट्टी रहा 5200 रुपया और चीनी रहा 4130 रुपया। ये तो अयोध्या मंडी से जो बाजार भाव रहा वो रहा। अब अपने पंचन का मौसम का जो हाल जो है वह बताओ चला जाए।
2: भैया अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहा है, न्यूनतम तापमान रहा 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो सामान्य से 3.2

0: डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहा है।
1: साथ ही साथ सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम जोन रही 78% और न्यूनतम रही 52%।
0: बयार जोन चली है उत्तर हवा पछुआ में चली, जबकि बयार के जोन रफ्तार रही चले के गति रही 3.1 किलोमीटर प्रति घंटा।
1: आगामी 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के बादल छाए रहे के और वर्षा होने की संभावना नहीं है।
0: तो पंचो ये तो रही मौसम के बात, लेकिन यही के साथ ही आपसे हम जरूर कहा चाहे कि अगर आपका कुछ लागत है कि यह कार्यक्रम में कुछ संशोधन होए के चाहिए या कुछ आपके मनपसंद बात हो, कुछ जानकारी होए के चाहिए, तो आप चिट्ठी के जरिए लिख सकते हो हमारे आकाशवाणी केंद्र का। तो आप एक बार पता नोट कर लियो, किसान वाणी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अयोध्या, पिन कोड 224001। तो भैया पूर्ण ये तो बात रही।

0: 0001। तो भैया पूरन, ये तो बात रही अपने पंचन के, लेकिन घड़ी ही इशारा कर दिया है कि पंचन से लीन जाए विदा। तो अगली बार फिर मेल मुलाकात हुई आपसे अच्छी बात बत के ही साथ है। तबले हमें समोखन का
1: और पूरन का दयनमती।
0: जय हिंद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, दिनांक 22 जून 2026 सोमवार को शाम 5:30 से सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में हमारी चर्चा का विषय होगा गर्भावस्था एवं प्रसवोत्तर से जुड़ी सामान्य समस्याएं और समाधान। विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजूषा जी। इनसे बातचीत करने के लिए आपको डायल करना होगा आकाशवाणी अयोध्या का टेलीफोन नंबर 7376 8040। सूचना समाप्त हुई। शाम के 7:15 हो चुके हैं। वक्त है कार्यक्रमों के विवरण का। अब से थोड़ी देर बाद शाम 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। 7:30 पर पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। रात 8 बजे से हमारे लखनऊ केंद्र से सुनिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से बातचीत। रात 8:15 पर आप स्टूडियो से सुनेंगे खास प्रोग्राम साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही कलाकार से, जो आज केंद्रित होगा मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह पर। रात 9:15 पर महफिलों की गजलों की महफिल सजेगी महफिल गजल में। और 9:30 से होगा आपका पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। डायल करना होगा 7376 8040। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब आइए आपको कल के कार्यक्रमों से अवगत करा दें। कल सुबह 6:30 पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र स्तरीय आयोजन का सजीव आंखों देखा हाल आप सुनेंगे। 7:15 पर कार्यक्रम विवरण होगा। 7:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप सुनते हैं। 8:15 पर रोजाना सुर संगम और 8:30 से दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में आज की बात का विषय रहेगा विश्व योग दिवस। योगाचार्य ममता श्रीवास्तव से सुनिएगा एक वार्ता जिसका विषय रहेगा विश्व योग दिवस। और इसमें जो बातचीत का विषय होगा वो होगा भागती दौड़ती जिंदगी और योग। इसी कार्यक्रम में आपको बताएंगे समाचार पत्रों से कुछ स्थानीय खबरें। सुबह 9 बजे से व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गानों का प्रोग्राम, आपके संदेश आपके गीत, और 9:30 से फिल्मी गीतों का दैनिक कार्यक्रम। अभी ये केवल फ्राइडे और सैटरडे होता है। बातें आसपास की आप सुनेंगे। सुबह 10 बजे पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ सुनिएगा। दोपहर 12:30 पर अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग सुनवाया जाएगा। 1 बजे से आपका पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। और 1:30 पर हमारे स्टूडियो से ही फेसबुक आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा का प्रसारण होगा। दिन में 2 बजे से गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। गृह कार्य को करें रोचक ढंग से, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में योग की भूमिका को बताएंगी सीमा तिवारी। रोचक जानकारी में भारत का जैविक राज्य सिक्किम और प्रेरक व्यक्तित्व के अंतर्गत महारानी लक्ष्मीबाई की बात के अलावा बच्चे सुनेंगे बाल गीत। शाम 5 बजे से युवाणी में चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ज्ञान विज्ञान के अंतर्गत विश्व और अयनांत और संस्था सेगमेंट में

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की जानकारी होगी। फिल्मी गीतों का होगा प्रसारण इस कार्यक्रम में। 5:35 से लोक संगीत और 6:10 पर फिल्मी गीतों का प्रोग्राम शाम जीवानी। 6:30 से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैनचेस्टर में खेले जाने वाले ICC महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2026 का आंखों देखा हाल सुनवाया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के शेष और कल के प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। FM 101.9 MHz पर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी अयोध्या को। थोड़ी देर बाद 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया थोड़ी सी करें प्रतीक्षा।

0: थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किरायों में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनके खातों में 4,352 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।
1: आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी से इस कार्यक्रम में सहभागिता की। श्री योगी ने प्रदेश के किसानों की ओर से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि अन्नदाता के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। प्रदेश के किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जौनपुर के एक

0: भारती ने कहा,
1: किसानों को बहुत फायदा मिलता है, बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई देने के लिए काम आ जाता है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। जैसे छोटे मोटे किसान हैं, उनको फायदा हो जाता है, इससे किसानों को आसान हो जाता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ललितपुर में 1,766 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड विकास का एक मॉडल बन रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना बुंदेलखंड में साकार हो रही है, शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है।
2: अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। बुंदेलखंड के अंदर शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है, तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं, तो वहां भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं।
0: श्री योगी ने कहा कि ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है।
2: आज ललितपुर बदल चुका है, अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है, और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं।
0: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,69,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद के कारण रद्द कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकल विहीन ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। प्रदेश में 59 जिलों में नीट की पुनर्परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ मंडल विशेष अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में भी योग के दिवस के अवसर पर सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश में सभी जनपदों में योग दिवस के अवसर पर कल योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पे होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं लखनऊ स्थित राजन भवन में इस अवसर पर महिला योग सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाएं योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगी। इसी तरह विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। योग दिवस पर विद्यालयों में सामूहिक योगाभ्यास और योग से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां विद्यार्थियों को योग के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता को लेकर कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता के लिए गुलामी की मानसिकता को दूर कर अपनी विरासत के प्रति गौरवान्वित होना चाहिए। मेरठ की ग्राम पंचायत फफुंडा स्थित

0: प्राथमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉ सोमेन्द्र तोमर ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि आज प्रदेश विकास, निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है।
1: सरकार आपके द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हमेशा प्रयास यही है कि सरकार अपने जो सम्मानित नागरिक है उनसे संवाद करके उन सुझावों के साथ हम लोग प्रदेश और देश के विकास में उनकी सहभागिता हो। आज भी हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टॉल्स के माध्यम से जो जिले के अलग अलग विभाग है उनकी सबकी स्टॉल्स लगी और यहाँ पर जो उनके सुझाव है, यदि कोई पेंशन के लिए था तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन हमारी स्वयं सहायता समूह 32 स्वयं सहायता समूह इस गांव के अंदर है, उसकी जो मातृशक्ति का योगदान हमारे इस गांव के लिए, इस मेरठ के लिए हो रहा है, उसका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों की जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया, इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान जनगणना का काम 100% पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में निर्धारित 22 मई से 20 जून 2026 तक घरों की गणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राज्य के जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों और 1,00,000 से अधिक गांवों में मकान सूचीकरण के लिए 5,00,000 से अधिक प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 27 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी। इसी चरण में जाति गणना की भी की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश भर में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
4: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है, FM 101.9 MHz पर। आइए सुनते हैं पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
6: श्रोताओं नमस्कार। असम ने इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं। आपको हम बता दें कि असम के नागांव जिले की जुमरमुर ग्राम पंचायत ने स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया और एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। आपको ये भी बता दें कि ये प्रतिष्ठित सम्मान दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया, जो सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत स्वच्छता, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण और हरित कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित हुगरी जान ग्राम पंचायत

0: पंचायत ने आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त करके एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। और इसी तरह से असम के सोनितपुर जिले की न्यू नापाम ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की, जिसे नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं, आपको बता दें, जुमरमुर ग्राम पंचायत से जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और ग्राम पंचायत सचिव सनकदान नरजारी, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: गीतांजलि जी, सबसे पहले तो आपकी ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिलने पर बहुत बहुत बधाई, और मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये पुरस्कार मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ, और जब पहली बार आपने इसके बारे में जाना तो कैसी भावनाएं थी आपकी?
1: पहले मैं आकाशवाणी को धन्यवाद देती हूँ, आज हमें यहाँ बुलाकर ऐसे मौके दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में यह न केवल जुमुर पंचायत के बल्कि पूरे नौगांव जिले की और आसाम के लिए एक गर्व का बात है। जब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जिले के नाम घोषणा की गई तो मेरी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसी सफलता का पूरा श्रेय जुमुर की आम जनता, पंचायत प्रतिनिधियों और हमारे विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से पाई गई है।
0: सनकदान जी, आपको जब इस पुरस्कार के से सम्मानित किया गया, आपको जो ये उपलब्धि आपकी पंचायत को दी गई, तो आपके क्या विचार थे इस पर?
2: सबसे पहले तो थैंक यू आप सबको, हमें इस मंच पे बुलाने के लिए सब आप लोगों को धन्यवाद। जब हमें पता चला कि यह पुरस्कार हमें मिलने वाली है तो हम अत्यंत गर्वान्वित हुए, और हमने जो इतना कष्ट किया था इस पुरस्कार के लिए, एक्चुअली में हम लोग पुरस्कार पाने के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम लोग अपने गांव को बेहतर करने के लिए, हमारे जो गांव में जो परिस्थिति है, लोग जो कचरा यहाँ वहाँ फेंकते हैं उनके बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हमने बहुत सारे काम किए थे, तो वो जाके सफल हुआ तभी हमें ये पुरस्कार मिली है, इसलिए हम बहुत ही खुश और गर्वान्वित है।
0: गीतांजलि जी, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसी जो बातें हैं काफी महत्व रखती हैं, और काफी काम भी आपके यहाँ पर किया गया है, तो इनके बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या बताएंगे?
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने, हमने सबसे पहले गांव-गांव के महिला को जाकर सहायता किया, SHG जैसे ग्रुप महिलाओं के लिए खोले गए थे उनको शामिल किया, घर घर जाकर जैविक खाद बनाए और यो कचरे प्लास्टिक को अलग अलग करके हम लोग परीक्षण दिए, और पंचायत की ओर जैसे कचरा संग्रह नियमित व्यवस्था की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने अपने आंगन के साथ सामाजिक स्थलों, सामाजिक रास्तों से कर्तव्य का समझकर आगे बढ़ा।
0: सनकदान जी, लोगों को जोड़ने के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई आपने, किस तरह से उनको मोटिवेट किया?

0: जागरूकता फैलाई है इसके लिए, और ऐसे ही करके हम लोगों ने लोगों के बीच में पहले तो ये संदेश भेजा कि जो हमारे गांव में वो लोग के घर के आसपास जो कूड़ा फेंकते हैं उसको एक निर्धारित जगह पे फेंकना चाहिए। वैसे हमने बहुत सारे जगहों पे डस्टबिन्स भी बनाए हैं, तो वहाँ पे सब लोगों ने कचरा फेंका और उस कचरे को हमने उधर से उठा के उसका वैज्ञानिक तौर में उसका डिस्पोजल किया हमने, और जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट उनको सबको सेग्रीगेट किया गया था। फिर वैसे प्लास्टिक वेस्ट को हमने रिसाइकल करने के लिए भेजा और बायोडिग्रेडेबल को डंप साइट्स में भेजा, उनका अच्छी तरह से डिस्पोजल हुआ। सेकेंडली हमने ग्रीन जो थीम पे हम लोग हमारा नाम आया है उसके लिए हमने निश्चित किया कि हर घर पे गैस सिलेंडर गैस जो होता है वो यूज हो, लकड़ी ये सब जलाने से उनको जो पॉल्यूशन होता है उससे उसको रोकने का कोशिश किया। तो अभी तो 100% सब लोग सिलेंडर गैस एलपीजी यूज करते हैं और बहुत सारे घरों में आजकल सोलर पावर भी लग चुका है, हमारे जितने भी स्ट्रीट लाइट्स है सब सोलर पावर्ड ही है।
1: गीतांजलि, ये प्लास्टिक को कम करने उसका जो एकल इस्तेमाल प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसे हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कम करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियों को संचालित किया, लोगों को किस तरह से बताया कि इसका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए?
0: हम लोग गांव में जो पंचायत वार्ड है एसएचजी ग्रुप है, एसएचजी ग्रुप को हम लोग को गाँव गाँव जाकर हम लोग को प्लास्टिक एक जगह कर रखे, पंचायत को भी हम लोग को सरकार ने जो पंचायत से निकाल कर एक जगह में रखने के लिए बोले तो

0: जलाकर भी एक्स्ट्रा करके हम लोग ऐसे किए हैं गांव में
1: जी। और सनकदान जी, इसमें युवाओं की क्या भूमिका रही, किस तरह से उन्होंने इस चीज को लिया?
0: हमने जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उन सब में भी हमने ये अवेयरनेस कैंप्स किए हैं। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने पहले उन लोगों को समझाया गया कि कैसे हम लोग कचरे को सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग करना है हमें। तो हर स्कूल में डेडिकेटेड डस्टबिन दिए गए थे जहाँ पे हम लोग बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्स्ट्रा करते हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स जब स्कूल पे सीख के गए वो अपने घर पे भी यही सारे हैबिट्स अपनाने लगे, उनको देख के उनके माता पिता भी यही हैबिट्स अपनाने लगे। और हमारे जो युवा मंच है उनमें भी हमने अवेयरनेस स्प्रेड किया है, तो वो लोग ने भी बहुत सारा हमें सहयोगिता किया है, सहयोगिता दिया है इसमें।
1: विकास कार्यों की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई तरह के फैसले लिए जाते हैं, ग्रामीणों की भागीदारी कैसी रही थी इसमें?
0: हमारे जितने भी गांव के, पहले तो उनको समझाने में थोड़ा सा वक्त लगा हमें, वो लोग अपने कचरे को घर के पीछे या फिर कोई नदी के किनारे फेंक देते थे। तो हम लोगों ने जाके वार्ड सदस्यों को पहले जागरूक किया, वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड में जाके अपने अपने गाँव के लोगों को, अपने वार्ड के लोगों को बताने लगे कि ये जो आप कर रहे हैं ये हमारे पृथ्वी के लिए कैसे हानिकारक है और आगे जाके ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है। तो वो लोग धीरे धीरे समझने लगे। अभी भी 100% हम लोग इसको अकॉम्प्लिश नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी बहुत सारे लोग अभी इसमें ये समझ चुके हैं कि कैसे हमें अपने गांव को साफ रखना है, कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। ऐसे करके हमारे गांव के लोगों ने बहुत सारा हमें सहयोग किया है।
1: गीतांजलि जी, जो भी कार्य आपने किया, जो भी जिससे आपको सफलता मिली है, काफी बड़ी सफलता, उपलब्धि एक बड़ी है ये, तो किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई, कैसी समस्याओं का सामना आपने किया?
0: सरकार ने जैसे हम लोग को स्वच्छ भारत मिशन में जैसे हम लोग को समझाया था कि घर घर जाकर जल का पर्यावरण संरक्षण करें और जिस जल से हम लोग को उपयोग करें कैसे करें, इसीलिए हम लोग घर घर गए, सबको समझाया। जैसे पारदर्शी होती है, हम लोग जैसे खोलते हैं उनको कैसे देंगे, घर घर जाकर हम लोग बोले जैसे साफ सफाई करना
1: जी।
0: और अच्छे से रखना, पानी को सेव करना। तो पहले तो लोग सीखा नहीं, फिर जब हम पंचायत में सबको बुलाया सिखाया तो धीरे धीरे सीखने लगा और अभी ऐसा अच्छा से चल रहा है।
1: वित्तीय समस्या का सामना भी करना पड़ा, फाइनेंस का?
0: हाँ, फाइनेंस का समस्या था, पर 15 फाइनेंस के योग अमेरिका योजना के फंड का सही ढंग से उपयोग किया है हम लोगों ने। और सरकार की तरफ से जैसे एमजीएनरेगा का जितना भी हम लोग को सुविधा मिली है उसके साथ भी हम लोग उपयोग किए हैं
1: जी। सनकदान जी, जिस तरह की चुनौतियां सामने रहती हैं उनसे निपटने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं भी बनाई जाती हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय भी किए जाते हैं, आपकी तरफ से ऐसे कौन से प्रयास होते रहे जिनसे लगता रहा लोगों को कि हमें इससे जुड़ना चाहिए, इन कार्यों से?
0: सबसे पहले हमने हर वार्ड में एक एक करके वार्ड सभा किए हैं और नियमित तरीके में हमने वार्ड सभा किए हैं। हम लोग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद बाद जाके उनके बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं। हम लोग कई स्कूल के जो हेडमास्टर है, एक्चुअल में गांव के लोग शिक्षकों को बहुत ही सम्मान करते हैं, तो हम लोग उनको भी हमारे साथ हमारे वार्ड सभा में बुला के लेके जाते हैं। जब शिक्षक ये सब बताते हैं लोगों को तो वो लोग अच्छे से सुनते हैं, ध्यान देते हैं इस बातों में। तो ऐसे करके हमने लोगों को समझाने का कोशिश किया। दूसरा है कि हमने गांव में प्रोसेशन भी किया है, कभी कभी हम लोग करते हैं। और हमारे जो सरपंच जी है उन्होंने अपने तरीके से कुछ लोगों को लगा के गांव में जो कचरा है वो सब झाड़ू से साफ कराया है और इवन वाटर भी छोड़ा है, पानी छोड़ा है और वो सब रास्ता को साफ कराया है। और कुछ लोग अभी भी शौचालय इस्तेमाल नहीं कर रहे थे उस समय पे, वो लोग शौचालय में स्टोर हाउस के तरह कभी बकरी बांध देते थे, कभी मुर्गी बांध देते थे। तो हम लोग घर घर जाके ये सब चेक करते थे कि सही में वो लोग शौचालय का जो उचित उपयोग है वो कर रहे हैं कि नहीं। तो वैसे करके हम लोग उनको जागरूकता फैलाने लगे, फिर धीरे धीरे वो लोग इन सारे हैबिट्स को अपनाने लगे और ऐसे करके हम लोग इस पुरस्कार को पाने में सक्षम हुए हैं।
1: खुले में शौच मुक्ति की लगातार बात की जा रही है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, क्षेत्र जिन्हें खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो आपके यहाँ पर इसमें किस तरह की गतिविधियां संचालित हुई?
0: हमारे यहाँ 100% ये खत्म हो चुका है खुले में शौच करना, पहले भी नहीं था इतना, लेकिन कुछ लोग थे जिनका जो शौचालय था उसका जो हालत था इतना अच्छा नहीं था, तो उनको सरकार के तरफ से एक फंड आता है उससे हमने शौचालय दिलाए और बाद में जाके वो लोग शौचालय सही में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, ये सब भी हमने चेक किया, तब जाके खुले में शौच एकदम 100% खत्म हो चुका है अभी हमारे गाँव।

0: सनातन जी, वैसे जो सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उन्हें आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जमीन पर उतारने की कोशिश रहती है, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल चीजों को किया जाए ताकि उसमें आसानी भी हो सके और पारदर्शिता भी बनी रहे। तो इस दिशा में आपकी पंचायत ने क्या कार्य किए?
1: हमने ई ग्राम स्वराज में जो हमारा जितना भी अचीवमेंट्स है वो सब आप देख ही सकते हैं। और आजकल जो PAI है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, उसमें हम लोगों को सारा अपना जो जो काम है उन सबको अपलोड करते रहना पड़ता है। उस हिसाब से हमारा जो एक मार्कशीट के जैसा निकलता है उसमें हमें पता चलता है कहाँ कहाँ हमने कितना काम अच्छा किया है, कहाँ कहाँ और बेहतर कर सकते हैं, और जहाँ बेहतर करना होता है हम उस पर जोर देते हैं।
0: गीतांजलि जी, आपकी जो पंचायत रही है जिले में काफी अच्छा उसका नाम हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी पंचायत ने जो भी काम किया है उससे दूसरी जो और पंचायतें हैं उनमें कुछ असर पड़ेगा, वो मोटिवेट होंगे, तो किस तरह का संदेश आपका है उनके लिए?
2: मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि सरकार की जो हम लोग को प्रेरणा मिली, फिर दूसरी पंचायत के लोगों को भी ये भी प्रेरणा मिली, जो अच्छा काम करने से कुछ पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन उनकी सफलता की जितना हाथ हो, आपका घर अपना गांव सब हम लोग को आए मिले, देश के सभी रास्ते से हम लोग को पंचायत जो अच्छा काम करे, इसीलिए शुक्रिया हमने पंचायत प्रतिनिधियों को।
0: संगदान जी, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किस तरह का मॉडल आपने अपनाया? क्या सोच रखी थी कि जो भी योजनाएं हैं हम उसको लोगों तक पहुंचाएं, हमारी जो गतिविधियां हैं उन्हें अच्छे से संचालित करें?
1: यूजुअली जब हमें कोई स्कीम आती है हमारे यहाँ तो हम उसका माइकिंग करते हैं, हम गांव-गांव में अनाउंसमेंट करते हैं, जो भी

0: बनाने का कोशिश करते हैं. ऐसे ही हम लोग हर वार्ड में वार्ड सदस्यों को हम लोग बोलते हैं कि आप लोग जाके गांव में लोगों से बात कीजिए, क्या असुविधाएं आई है उनके बारे में हमें बताइए, हम इसका हल करेंगे. हम वार्ड सभा भी करते हैं, ग्राम सभा भी करते हैं, और उसी में लोगों से उनका जो मत है वो हम लोग लेते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं.
1: अब चूंकि आपकी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सम्मानित होना एक गर्व की बात है, तो अब आगे के लिए आपने क्या सोच रखा है कि आने वाला जो समय है उसमें आपकी ग्राम पंचायत और क्या बेहतर करेगी, या फिर उनके माध्यम से और लोग भी और कितना अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन के लिए?
0: जी सर, सर्वप्रथम तो बात यह है कि हमें द्वितीय स्थान मिली है. हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम अगले बार पहले स्थान प्राप्त करें. हमने अभी तक जितना भी अचीवमेंट किया है उसमें थोड़ा और काम करना बाकी है, तो हम अभी जाके बस पहला तो यही है हमारा कि हम उसमें काम करना शुरू करेंगे. दूसरी बात यह है कि हमारे ब्लॉक

0: पुरस्कार को जो हमें मिला है, इस खबर को पाके पूरे नौगांव जिले में जितने भी पंचायत है सब गर्वान्वित हुए हैं और वो लोग सब प्रेरित हुए हैं। वो लोग का भी अभी उनके अंदर भी यह आ चुका है कि हम भी इसमें काम करेंगे, कुछ तो अच्छा करेंगे कि हम भी अपने देश के प्रगति में योगदान दे सके। यही बात।
1: तो आपको ये लगता है कि अब देश की जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है उसमें जब आपका नाम आ चुका, आप शामिल हो चुके हैं, तो लोगों की अपेक्षाएं भी आपसे बढ़ जाएंगी और आपकी अपनी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी?
0: जी जी, लोग हमें, मुझे ऐसा लगता है कि लोग हमें एक अभी आइडियल की तरह हमें देखेंगे, हमसे सीखने के लिए वो लोग भी आएंगे कि कैसे आप लोगों ने ये पद हासिल किया है, तो हम भी उनको सिखाने के लिए रेडी है। लेकिन बात यह है कि हम भी अभी सीख ही रहे, हम दूसरों से भी अभी सीख रहे। आज हमने जो सभा अटेंड किया है उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, जाके हम इन सबको अप्लाई करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, अपने काम में, और उनको, उनके साथ मिलके हम लोग और अच्छा करने का कोशिश करेंगे।
1: आपकी पंचायत में जो सफलता हासिल हुई है इसमें पारदर्शिता की क्या भूमिका रही और सुशासन की क्या भूमिका रही है, खासतौर पे ऐसे समय में जब आपको कोई भी नया काम शुरू करना है तो उसमें तमाम तरह की चुनौतियां सामने आती हैं?
0: चुनौतियां तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन हम लोग ने जो जो काम अपनाए हैं वो सब फील्ड पे दिखते हैं, कागज में भी है।

0: उन्नयनखंड के अधिकारी सर है वो भी आते हैं, देखते हैं कि हमने सही में काम किया है कि नहीं। जिला परिषद के भी लोग आते हैं। पारदर्शिता का बात यह है कि हम लोग हमारा जो पीए आए है वही एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमने काम कितना किया है, क्योंकि हम लोग ऐसे उसमें जो एक्चुअल डेटा है वही अपलोड होता है उसमें, तो इट्स क्वाइट ट्रांसपेरेंट।
1: जी गीतांजलि जी, आपके इस बदलाव से जो आपने परिवर्तन इतना बड़ा वहां पर किया है आपकी पंचायत के माध्यम से, जो भी बदलाव वहां पर देखा जा रहा है, इससे वहां के जो लोग हैं सभी लोग उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आ रहा है?
0: उनके जीवन में बहुत सारे चेंज आ रहे हैं। जैसे हम लोग पंचायत में जो सहायता के लिए वो हम लोग निकल आ रहे हैं, पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, आजकल हर घर से एक एक महिला निकल कर आती है, हम लोग को सहयोग करती है। जैसे आजकल समाज में ड्रग्स का बहुत चल रहा है, तो महिला संगठन आकर उसको सेफ देती है, पंचायत की प्रतिनिधि हो हम लोग को पास आती है कि ऐसे ऐसे करे, ऐसे सहायता करके हम लोग को पंचायत के उन्नति करते हैं, और ऐसे ही हम लोग आगे चल रहे हैं।
1: मतलब इस तरह की गतिविधियां जारी रख करके आप समाज सेवा भी कर रहे हैं।
0: हाँ।
1: तो सनकदान जी, और आगे की किस तरह की योजनाओं को क्रियान्वित करने का आपने सोच रखा है?
0: हमारा जो अभी पूरा गांव में कई जगह ऐसे हैं जहां पे अभी स्ट्रीट लाइट्स लगे नहीं है, थोड़ा अंदर अंदर के जगह रिमोट एरियाज है, वहां पे हम लोग स्ट्रीट लाइट्स लगाने के सोच रहे हैं, वो भी सब सोलर पावर्ड होंगी। कुछ ऐसे जगह पे हम लोग तालाब भी बनाने चाह रहे हैं जहाँ पे हम लोग मीन पालन कर सके, लोगों को और जीविका हम लोग निकाल सके उनके लिए। साथ ही हम लोग आगे जाके अपने जो गांव के आसपास जितने भी घर हैं उन सब में अभी भी जैसे हम लोग ये जो हम लोग काम करके ये पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ है, आगे जाके वो लोग रुक ना जाए, इस प्रयास को छोड़ ना दे, इस हैबिट को छोड़ ना दे, वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये हम लोग मेक श्योर करेंगे।

0: से ही काम करते जाए तो सबके साथ मिलके हम लोग जरूर आगे बढ़ सकेंगे।
1: जी सनकदान जी और गीतांजलि जी, आप दोनों ने इस चर्चा में भाग लिया, तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, ये पॉडकास्ट श्रृंखला। आइए आपको ले चलते हैं अपने मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।
4: खुद से मिलने का एक मौका देता है। हर साल 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में फ्रांस में हुई थी, जहां इसे फेट दे ला म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। फ्रांस के संस्कृति मंत्री जैक लैंग ने उस समय में इस दिन की कल्पना की थी, ताकि लोग बिना किसी रोक टोक के सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर संगीत बजा सकें और उसका आनंद ले सकें। धीरे धीरे ये परंपरा फ्रांस से निकलकर दुनिया के 120 से ज्यादा देशों में फैल गई और आज ये एक वैश्विक उत्सव बन चुका है, जिसमें पेशेवर और शौकिया दोनों तरह के संगीतकार हिस्सा लेते हैं। यहाँ भी वही बात सामने आती है, संगीत दिवस के लिए 21 जून इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन समर सोल्स्टिस होता है। ये दिन रोशनी, ऊर्जा और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। संगीत केवल एक मनोरंजन नहीं है, संगीत कई स्तरों पर हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ये वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि संगीत तनाव, चिंता और उदासी को कम करने में मदद करता है और हमारी इमोशनल सेहत को बेहतर बनाता है। शोध बताते हैं कि संगीत सुनने से शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो मन को शांत और खुश रखते हैं। सामाजिक रूप से संगीत भाषा, संस्कृति और भौगोलिक सीमाओं के पार लोगों को जोड़ता है। आज कोई भी बड़ा

संस्कार जिसका ताल्लुक संगीत से है वो किसी एक देश का नहीं है, वो पूरी दुनिया का है, उसका ताल्लुक पूरी दुनिया से है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए संगीत सीखना याददाश्त, एकाग्रता और रचनात्मकता को बेहतर बनाता है, इसलिए इसे बच्चों की शिक्षा में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब भारत के शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और भक्ति संगीत की बात किए बिना हम विश्व संगीत दिवस की बात को पूरा कैसे कर सकते हैं? भारत संगीत के मामले में हमेशा से बड़ा समृद्ध देश रहा है। हमारा शास्त्रीय संगीत अपनी संरचना में पूरी तरह से वैज्ञानिक है और पूरी दुनिया के म्यूजिशियन इस संगीत को बहुत आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। अगर हम मेडिसिन की दुनिया की बात करें तो म्यूजिक थेरेपी का उपयोग आज डिप्रेशन, अल्जाइमर और कुछ दूसरी बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस बहुत अलग अलग तरह से मनाया जा सकता है। एक तो ये है कि संगीत के कार्यक्रम पूरी दुनिया में आयोजित किए जा रहे हैं। फ्रांस में तो सड़कों, चौराहों और गलियों में संगीत के कार्यक्रम होते हैं। पेशेवर कलाकारों के साथ आम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर निकलते हैं और म्यूजिक बजाते हैं। पेरिस की सड़कों पर इस दिन संगीत की स्वर लहरियां गूंजती रहती हैं। इटली, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों में सार्वजनिक पार्कों, कैफेज और संग्रहालयों में लाइव परफॉर्मेंसेस होती हैं। कई जगह स्थानीय संगीत स्कूल और कॉलेज खुले मंच पर आयोजित करते हैं। अमेरिका और कनाडा में भी यही हाल है। भारत में भी अब कुछ कार्यक्रम संगीत दिवस के मौके पर

एक और महत्वपूर्ण दिन है 21 जून को और ये है फादर्स डे। हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। पहला फादर्स डे 19 जून 1910 को अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में मनाया गया था। सनोरा स्मार्ट डॉड ने 1909 में मदर्स डे से प्रेरणा लेकर इसका प्रस्ताव रखा था। 1972 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इस मौके पर नेशनल हॉलीडे घोषित कर दिया था। आज फादर्स डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है और 21 जून को जून के महीने का तीसरा रविवार फादर्स डे के रूप में मनाया जाएगा। सोनोरा स्मार्ट डॉट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना आपको बताते हैं। वॉशिंगटन में 1910 में अमेरिका के स्पोकेन ने इसकी शुरुआत की थी। अपने पिता विलियम जैक्सन स्मार्ट के सम्मान में, जो एक सिविल वॉर वेटरन थे, उन्होंने अकेले अपने 6 बच्चों को पाला था। इससे भी 2 साल पहले 1908 में वेस्ट वर्जीनिया के फेयरमोंट में ग्रेस गोल्डन क्लेटन ने मोनोंगा खदान दुर्घटना में मारे गए पिता को याद करते हुए एक चर्च में समारोह आयोजित किया था। तो इस तरह से ये 2 घटनाएं मिलती हैं जो इतिहास में फादर्स डे को मनाने की घटनाएं हैं। दुनिया में अब चारों तरफ फादर्स डे मनाया जाता है और ये दिन है दरअसल अपने पिता को सलाम करने का दिन। आप सभी जानते हैं कि 23वां फीफा वर्ल्ड कप इस समय चल रहा है। 11 जून से लेकर 19 जुलाई तक 39 दिन का ये जश्न है, फुटबॉल का ये जश्न, मेला, उत्सव। इसकी मेजबानी कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका, 3 देश मिलकर कर रहे हैं। 16 शहरों में मैचेस का आयोजन हो रहा है, जिनमें 11 अमेरिका में, 3 मेक्सिको में और 2 कनाडा में है। ये पहला मौका है जब किसी पुरुष विश्व कप की मेजबानी 3 देश एक साथ मिलकर कर रहे हैं और पहली बार 48 टीमें खेल रही हैं। इससे पहले पुरुष वर्ल्ड कप में 32 टीमें हुआ करती थीं। मेक्सिको के लिए यह खास तौर पर ऐतिहासिक है। 1970 और 1986 में मेजबानी के बाद मेक्सिको पहला देश बन गया है जिसने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की है। और खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तो हम पिछले कुछ हफ्तों से आपको बता ही रहे हैं। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गिलर्मो उचोआ सबसे ज्यादा 6-6 विश्व कप खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और 2026 में ये शामिल हैं। मेसी 26 मैच खेलकर सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड बना चुके हैं। और जहां तक मैचों की बात है, इस बरस सबसे बड़ा उलटफेर

0: जर्मनी के साथ हुआ, क्यूरासाओ विश्व कप में क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश है। उसने जर्मनी के खिलाफ ऐतिहासिक गोल दागा, जर्मनी तो हिल गया। हालांकि जर्मनी ने ये मैच 7-1 से जीता। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को हराकर एक बड़ा झटका दिया है। इस मैच का स्कोर रहा 2-1। कतर ने भी सुर्खियां बटोरी। 2022 के मेजबान रह चुके कतर ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ आखिरी मिनट में गोल दागकर 1-1 से ड्रॉ कर लिया। ये टूर्नामेंट का पहला बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। ब्राजील और मोरक्को के बीच एक बड़े मुकाबले की काफी चर्चा रही। बहुत लोग इस मुकाबले का इंतजार कर रहे थे और 1-1 से ये मैच ड्रॉ हो गया, जो बहुत ही अलग तरह का नतीजा है। अमूमन इसकी उम्मीद नहीं थी। और अब एल नीनो की बातें। प्रशांत महासागर में तेजी से बन रही ताकतवर एल नीनो की परिस्थितियां आने वाले कुछ हफ्तों में पूरी दुनिया की जलवायु और पूरी दुनिया के मौसम चक्र को प्रभावित कर सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये इतिहास के अब तक के सबसे खतरनाक और सबसे बड़े एल नीनो में से एक हो सकता है। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एल्बानी में मौसम और पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर पॉल राउंडी का कहना है कि इस बात की पूरी आशंका है कि ये पिछले 140 सालों का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा ताकतवर एल नीनो हो सकता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये मानता है कि बहुत जल्दी ही एल नीनो के हालात बनने वाले हैं और ये कम से कम सर्दियों तक चलेंगे, और इसकी ताकत और समय को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि दुनिया के कई हिस्सों में सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, भीषण गर्मियां झेलनी पड़ेंगी और कई देशों में खाने पीने के सामान और पानी की किल्लत हो सकती है। दुनिया को इसे जलवायु से जुड़ी एक जरूरी चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए। एल नीनो के ये हालात पहले से ही भट्टी की तरह तप रही दुनिया की आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। एल नीनो आखिर है क्या? कुदरती तौर पर होने वाला जलवायु का एक ऐसा चक्र जो हर 2 से 7 सालों में।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को। हमारे मुंबई केंद्र से आइए आपको लिए चलते हैं हमारे लखनऊ केंद्र। आप सुन रहे हैं FM 101.9 पर आकाशवाणी अयोध्या को। आइए सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से की गई बातचीत।
2: माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत सुनिए।
3: हमारी भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा में हम यह पाते हैं कि जब कोई बड़ा हमें आशीर्वाद देता है तो यही कहता आयुष्मान भव। यह आयुष्मान भव की परंपरा हमारी पुरातन परंपरा में से एक है जो आज तक चली आ रही है। गुरुओं द्वारा देवी देवताओं की जब हम स्तुति करते हैं तब भी यही अपेक्षा करते हैं आयुष्मान भव का हमें आशीर्वाद मिले। और इसी आयुष शब्द से जो हमारे ऋषि महर्षि प्रतिपादित किए हैं एक स्वस्थ रहने की कला और स्वस्थ रहने की उपायों को जड़ी बूटियों के माध्यम से या उनके निकले हुए अर्क से हमें प्राप्त होते रहे हैं, और हम दीर्घायु होने के लिए जो कुछ प्रयत्न हो सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन आयुष मंत्रालय भी अब भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। सौभाग्य की बात यह है कि आज हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं। और दयालु जी के बारे में आप लोग जितना जानते होंगे मंत्री के रूप में, उससे पीछे की थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे कि आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से PhD डिग्री धारक हैं बॉटनी में। इस PhD बॉटनी करते समय भी आपने आयुष के क्षेत्र में, यानी आयुर्वेद के रूप में कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, उसमें काफी कुछ कार्य किया है, काफी उपलब्धियां रही हैं। प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य के साथ साथ आप शिक्षा को प्रगति का मूल मानते हैं। शिक्षाविद के रूप में आपकी जो पहचान है उसे भी हम लोग बखूबी जानते समझते हैं। इसी बीच स्वागत करते हैं मंत्री साहब आपका, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे श्रोताओं के लिए कि आज हमारे बीच हैं। आपके शब्दों आपकी वाणी से हम दो चार होने की कोशिश के क्रम में आपसे जानना समझना चाहेंगे कि क्या स्थिति है आयुष की अपने प्रदेश में।
4: सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनका नारा है विरासत भी विकास भी।
3: जी,
4: आयुर्वेद हमारी विरासत है। आयुर्वेद ही नहीं बल्कि आयुष की जितनी भी विधाएं हैं ये सब बिखरे हुए थे। बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर उन्होंने आयुष के रूप में एक माला पिरोने का काम किया। 9 नवंबर 2014 को जब इस देश में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आयुष के सारी विधाओं को, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग और प्राकृतिक चिकित्सा,

0: बिल्कुल,
1: इन सारी विधाओं को उन्होंने आयुष से जोड़ते हुए एक मंत्रालय का गठन किया। तो आपको पता है कि इस देश में पहली बार, चूंकि हृदय स्थल प्रदेश माना जाता है, इस देश की कहीं ना कहीं से आत्मा उत्तर प्रदेश में बसती है। भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव की नगरी उत्तर प्रदेश में ही है, जन्मस्थली है भगवान लोगों की। सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो 2017 से उसकी पारी आयुष उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, और तब से लेके ये पिछले 9 वर्षों की यात्रा है आयुष की उत्तर प्रदेश में, और 12 वर्षों की यात्रा है केंद्र में मंत्रालय बनने के बाद से। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ही 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र के 177 देशों ने इस विश्व योग दिवस को मान्यता प्रदान किया, और आज

0: भारत की एक उस विधा को योगियों की, ऋषियों की, महर्षियों की, मुनियों की, साधकों की, तपस्वियों की, इस विधा को जिसको कहते थे योग, योगियों की चीज है, उसको सारी दुनिया ने स्वीकार किया। हम इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, और उत्तर प्रदेश का तो गौरव है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी योगी है। तो इन 12 और 9 वर्षों की यात्रा प्रदेश के लिए हम बड़े गौरव से कह सकते हैं कि एक सब कुछ बिखरा था। हम स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत जो है लोग काम करते थे, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनने के बाद से हमारे भी सपनों को पंख लगे, और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3959 से ज्यादा हॉस्पिटल हमारे पास है। 2111 अस्पताल हमारे आयुर्वेद के हैं, जिसमें 4 बेड के, 15 बेड के, 25 बेड के, 30 बेड के। और मंत्रालय बनने के बाद प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश के अब तक 16 जिला मुख्यालयों पर 50 बेड के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बन चुके हैं, नए जो बन रहे। पुराना मैंने कहा कि 2111 अस्पताल पुराने आयुर्वेद के हैं, 1585 हॉस्पिटल पुराने होम्योपैथ के हैं, 258 हॉस्पिटल हमारे पास यूनानी के, जो पुराने अस्पताल हैं। जब से मंत्रालय बना तो फिर हमने उसको नए को, क्योंकि हमको अपनी जमीन पे ले जाना था, अपने कैंपस में उसको शिफ्ट करना था, चाहे वो पीएससी में हो, सीएससी में हो, ग्राम समाज की जमीनों पर हो, किराए के भवन में हो, दान की जमीनों पर हो। तो वह जो परिवर्तन, देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम वेलनेस की बात करें, हम रोग और इलाज की तरफ न जाके हम व्यक्ति को निरोग और स्वस्थ रखने के लिए उसके वेलनेस की बात करते हैं। तो फिर सारी विधाएं मिल के काम कर रही हैं। अब इंटीग्रेशन पे काम हो रहा है। हमारे जितने मेडिकल कॉलेज थे, उत्तर प्रदेश में 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 8 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद के हैं, 9 मेडिकल कॉलेज होम्योपैथ के हैं, 2 मेडिकल कॉलेज यूनानी के हैं, और 2 नए मेडिकल कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश में नए मिले हमको, बल्कि आप कहिए 3 मिले। एक आयुर्वेद का नया मेडिकल कॉलेज अयोध्या में बन के तैयार है, और एक बरेली में यूनानी का मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शिलान्यास की हम लोग समय मांग रहे हैं, जिस दिन मिलेगा वो ओपन हो जाएंगे। काशी में चूंकि पहले से आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज था, तो वहाँ एक होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज बन रहा। तो 21 मेडिकल कॉलेज मैंने आपसे बताया कि वो इंटीग्रेटेड अस्पताल 16 जिले के मुख्यालयों पर बन चुके हैं। 8 हमारे अस्पताल, जिसमें 4 इनॉग्रेट होने जा रहे हैं, शिलान्यास जिनका होने जा रहा है, 4 भी बहुत जल्दी वो भी मिल जाएंगे। तो हर वर्ष अब तक करीब 1000 से ज्यादा हम अपने पुराने अस्पतालों में, जैसे 4 बेड के जो हमारे अस्पताल हुआ करते थे, उनको आयुष वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं। 225 योग वेलनेस सेंटर अब तक हम नए भवन, नए परिसर में बना चुके हैं। और जगह की अपने मैंने कहा कि वो समस्या थी, तो अब बहुत सारी जमीनें जैसे जैसे मिलती जा रही हैं, वैसे हम अपने नए सेंटर्स बनाते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा का कोई अस्पताल नहीं था, तो काशी में प्राकृतिक चिकित्सा का एक सेंटर, वो भी मात्र 2 महीने बाद, मुझको लगता है कि वो भी शिलान्यास के लिए तैयार है। आयुष का विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय न होने से हमारे पढ़ाई प्रभावित होती थी।
1: इस विश्वविद्यालय से क्या, जितने कॉलेजेस का आपने नाम लिया आयुष से जुड़े हुए हैं, इनकी संबद्धता भी उसी से हो गई है या फिर अलग अलग?
0: 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज और 86 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 105 मेडिकल कॉलेजों का एफिलिएशन वो हमारे विश्वविद्यालय से हो गया। अब उनकी परीक्षाएं, उनकी कापियों का जांचना, उनका रिजल्ट का बनना, सब कुछ विश्वविद्यालय के तहत हो गया, आयुष विश्वविद्यालय के साथ हो गया,
1: इंटीग्रेटेड हो गया एक जगह से,
0: सब एक जगह हो गया। और बहुत सारे डिग्री और डिप्लोमा के कोर्सेज भी विश्वविद्यालय ने शुरू कर दिया, पीजी शुरू कर दिया, यूजी की मान्यता मिल गई, अब यूजी भी शुरू हो जाएगा। तो एक फुल फ्लेज्ड काम करने वाला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आयुष का मिल चुका।
1: जब आपने विश्वविद्यालय की बात कर ही दी और उस पर हम आना चाह रहे थे, लेकिन आपने पहले बता दिया, और अच्छी बात है कि एक विश्वविद्यालय अब हो चुका है, तो फिर रिसर्च की भी संभावनाएं ज्यादा जगेंगी। और इस दिशा में कार्य करने के लिए अपना उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से सटा होने के कारण काफी कुछ संसाधन ऐसे हैं, औषधीय पौधों के आधार पर वहाँ रिसर्च भी हो सकता है, नई नई जो दवाएं हो सकती हैं विकसित करने के, कहने को तो सीमाएं भी है, सीडीआरआई भी है, लेकिन राज्य स्तर पर कुछ इसका प्रयास?
0: देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष भी बजट में अपने 3 नए अय्या बोल दिए। इसके पहले अय्या दिल्ली में और अय्या जयपुर में, उन्होंने इसके पहले 2 अय्या और उद्घाटन कर दिया है, गोवा में बन चुका है। तो आयुर्वेद के नए इंस्टीट्यूशन की स्थापना लगातार हो रही है, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ कलकत्ता में है, उसकी सब ब्रांच दिल्ली में खुल गई, उसकी एक सब ब्रांच लखनऊ में खुल गई, और एक केंद्रीय संस्थान आयुर्वेद का वो पहले से झांसी में काम कर रहा है आयुर्वेद का। हम सबका प्रयास ये है, अखिल भारतीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी वो गाजियाबाद में बन के काम करना शुरू कर दिया। तो हर विधा के शोध पर लगातार काम हो रहा है और शोध के बगैर दुनिया आजकल प्रमाण चाहती है। लेकिन जिस विधा का जन्म वेदों से हुआ हो, अथर्व

0: वेद की उपशाखा मानते हैं आयुर्वेद को। हम महर्षि सुश्रुत से दुनिया ने कभी नहीं पूछा कि आपने जो पहली सर्जरी किया उसके पीछे आधार क्या था, उसके पीछे किस इंस्टीट्यूट का। तो उनको भी आज भी मॉडर्न मेडिसिन भी उनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहती है, महर्षि सुश्रुत को। वो भी उत्तर प्रदेश में काशी में जन्मे थे। चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, और जितने भी, चाहे वो महर्षि नागार्जुन का काम हो, चाहे वो जितने भी लोगों ने इस विधा में काम किया है, उनके लिए उनकी शरीर ही प्रयोगशाला थी। समाज पे काम किया, वर्षों वर्षों की साधना के बाद, तपस्या के बाद। सिद्ध हमारा एक विषय है जिसके महर्षि अगस्त, उनकी भी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश और काशी है। तो उस महर्षि अगस्त की एक विधा है सिद्ध
1: जी।
0: उस सिद्ध के बारे में यह है कि सिद्ध किसने इंट्रोड्यूस किया, तो सिद्ध सिद्धों ने, जो सिद्ध पुरुष थे, साधकों ने, वर्षों की तपस्या का ये परिणाम है। ये हमारे ऋषि मुनियों के जीवन की, वर्षों की साधना। योग क्या है? योग हमारे योगियों के अपने को स्वस्थ और निरोग रखने के, जो योग और आसन, ध्यान, इन सब का वो सहारा लेते थे, प्राणायाम, उसी योग को प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मान्यता मिली,
1: मान्यता मिली है। और जन जन तक ये उसको पहुंचाने में आप लोगों का जो योगदान रहा है उसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। अभी अब 21 जून की तारीख बिल्कुल सामने है हमारे, इसमें अगर योग की बात हम आगे बढ़ाना चाहें तो ये पूछना चाहेंगे आपसे कि इस बार ये कहा जा रहा है कि जो सरोवर हैं गांव-गांव में बने हुए, उस पर भी योग शिविर लगाए जाएंगे। जैसे वेलनेस सेंटर की बात आपने कही कि गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं, तो ये अमृत सरोवरों पर ये है कि 21 तारीख को सब लोग योग करेंगे, इसकी क्या तैयारी शासन प्रशासन की तरफ से भी अलग से है?
0: तो पूरा देश इसमें जुड़ जाता है, संसार जुड़ जाता है, दुनिया के 177 देश योग करते हैं। विश्व योग दिवस के दिन की भी विशेषता है कि वो 365 दिनों का सबसे लंबा दिन होता है, योग दिवस का 21 जून। और 21 जून को सारा संसार आपको योग करता दिखाई देता है। तो क्या नदी, क्या तालाब, क्या पोखर, क्या सरोवर, क्या नदियों का किनारा, क्या पौराणिक स्थल, क्या धार्मिक स्थल, जितने भी ऐतिहासिक, काशी में अगर वो होता है तो भगवान गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली, भगवान गौतम बुद्ध को स्वरूपा का जन्म माना जाता है, जो देश के पर्वतीय अंचलों में कश्मीर से लेकर लाहौल स्पीति घाटी से होते हुए हिमाचल होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों तक एक विधा प्रचलित है, इसको स्वरूपा कहते हैं। उत्तर प्रदेश को एक और सम्मान अभी हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने काशी में तिब्बती विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में स्वरूपा का बहुत ही एडवांस हॉस्पिटल उन्होंने अभी देश को, उत्तर प्रदेश को दिया है। तो हर विधाएं अब मिल के समाज को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने के लिए, मन को, शरीर को, आत्मा को खुश बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत योगा है। और योग कहीं भी किया जा सकता है। और ये जो नदियों का आह्वान है, पौराणिक स्थलों का आह्वान है, ऐतिहासिक स्थलों का आह्वान है, शहर के पार्कों में है, गांव के मंदिरों पर है, तो जहां व्यक्ति एकत्र हो सके, जहां उसको बैठना, जहां नेचर हो, जहां प्रकृति हो, शुद्ध सुबह की हवा मिले उसको, तब उसकी प्राणवायु जब उसको मिलेगी तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी और वह स्वस्थ मन से, अच्छे मन से योग करेगा। और एक दिन का योग नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। अब जैसे सप्ताहव्यापी, इसके पहले हम लोग एक महीने का शेड्यूल बनाते थे, 15 दिन का शेड्यूल बनाते थे। तो योग को अपने जीवन शैली में शामिल करना है, योग को अपनाना है। योग सिर्फ एक दिन करने से कोई व्यक्ति स्वस्थ निरोग नहीं होगा, लेकिन जब आपने उसको अपने जीवन में अपना लिया तो निश्चित ही आपका मन, आपका शरीर, आपका तन, और कहते हैं ना कि आत्मा तक आपकी खुश होगी, पवित्र होगी, शुद्ध होगी, और एक अच्छे मन से, एक अच्छे स्वस्थ नागरिक के रूप में आप इस देश के हित में काम कर सकेंगे।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया है, इन शब्दों को सुनते हुए या प्रस्तुत करने की जो कला आपके पास है, इसी से मंत्रमुग्ध होकर के आदमी योग तो करेगा ही करेगा, आयुष्य भी जुड़ेगा। क्योंकि बॉटनी से पढ़ा हुआ छात्र अगर साहित्य और संस्कृति की भी बात बेहतर ढंग से रख सके, बेहतर ही नहीं, बहुत अच्छे ढंग से, उसके लिए तो फिर सुनने को जी चाहता ही है। और सुनते रहने की बाध्यता हमारी यहीं समाप्त हो जाती है क्योंकि समय की सीमा में हम लोग बंधे रहते हैं। अब आकाशवाणी से तो आप जानते ही हैं, छोटेपन से ही सुनते रहे होंगे। फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपसे अपेक्षा होगी कि आप हमारे स्टूडियो इसी तरह से पधारेंगे और आयुष के तमाम जो इसके बिंदु हैं,
0: ये हजारों साल की विरासत है,
1: इसीलिए तो
0: प्रधानमंत्री जी ने उसको विकास में उपयोग किया।
1: अब काशी का जन हमारे बीच है तो बार बार तो अपेक्षा होगी ना कि हाँ हमारे साथ साथ जुड़ते रहें। बहुत अच्छा लगा वास्तव में। और आपकी वाणी के जो भी ये शब्द हमें प्रेरित कर सकते हैं वो बहुत प्रेरित कर रहे हैं। और लोगों से भी अपेक्षा, अपने श्रोताओं से, कि आप

0: जुड़ते रहें। बहुत अच्छा लगा वास्तव में, और आपकी वाणी के जो भी ये शब्द हमें प्रेरित कर सकते हैं वो बहुत प्रेरित कर रहे हैं, और लोगों से भी अपेक्षा अपने श्रोताओं से कि आप आयुष को अपनाएं, अपनी जीवन शैली को बेहतर से बेहतर
1: करें, योग रहे निरोग का नारा देते हैं।
0: बिल्कुल, आपका ये नारा पहले से भी चल रहा है, आप द्वारा दिया जा रहा है तो और प्रभावी होगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आपसे पुनः मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत। ये विशेष कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ।
3: श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे हमारा ये विशेष कार्यक्रम जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से बातचीत कर रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से आप तक पहुंचाया गया, और आप जुड़ चुके हैं अब हमारे स्टूडियो से, यानी कि अपने प्यारे FM आकाशवाणी अयोध्या के स्टूडियो से जुड़ चुके हैं आप, और स्टूडियो की घड़ी में ठीक बजने वाले हैं 8:15, और वादे के मुताबिक शुरू होने जा रहा है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जो हफ्ते में एक दिन ही आता है इस वक्त, यानी 8:15 पर एक ही कलाकार से। और आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त सदक, और आज की इस सुहानी शाम में हमारे साथ भारतीय फिल्म संगीत की वो आवाज है जो कभी मोहब्बत बनकर दिल में उतरती है।

जी हाँ, तो आज इस प्रोग्राम में जिक्र होगा अरिजीत सिंह का, आपके इस प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है एक ही कलाकार से, और मैं हूँ आपका दोस्त सदक आपके साथ। अरिजीत सिंह की पर्सनल लाइफ नहीं, अवार्ड्स की लंबी लिस्ट नहीं, बल्कि बात होगी उनकी गायकी की, विविधता की और उन गीतों की, उन सॉन्ग्स की जिन्होंने उन्हें हमारे दौर का सबसे पसंदीदा सिंगर बना दिया।

और दोस्तों यहीं से शुरू हुआ एक नया दौर। हालांकि अरिजीत इससे पहले भी फिल्मों में गा चुके थे, लेकिन तुम ही हो ने उन्हें हर घर तक पहुंचा दिया। उनकी आवाज में सादगी थी, एहसास था, और सबसे बड़ी बात हर शब्द सीधे दिल तक पहुंचता था।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: आप

0: सृजन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: दोस्तों, अरिजीत सिंह की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो गाने को गाते नहीं हैं, जीते हैं। रोमांटिक गीत हो तो दिल धड़कने लगता है, दर्द हो तो आंखें भीग जाती हैं। अच्छा।

अरिजीत के दर्द भरे गीतों की बात हो और अरिजीत सिंह का नाम ना आए, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी आवाज ने जुदाई के एहसास को एक नई पहचान दी, लेकिन यही आवाज जब प्रेम के रंग में ढलती है तो सुनने वाले बस खो जाते हैं।

0: आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से सुनिए सुनैन आई हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आई केयर फॉर यू कल रविवार को शाम 5:30 से।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात
0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com। एक बार फिर से आप आ गए हैं अपने साप्ताहिक प्रोग्राम एक ही कलाकार से में। दोस्तों, वक्त बदला, कितनी फिल्में आईं, नए संगीतकार जुड़े, लेकिन एक चीज नहीं बदली, हर बड़े बैनर की पहली पसंद बनी रहे, जो बनी रही वो आवाज थी अरिजीत सिंह की आवाज।

रोमांस के बाद अब थोड़ा सुफियाना रंग। अरिजीत सिंह ने ऐसे कई गाने गाए जिनमें आध्यात्मिकता, इश्क और संगीत का अनोखा मेल सुनाई देता है। उनकी गायकी का एक और खूबसूरत पहलू है सॉफ्ट मेलोडी, कम संगीत, कम शब्द और गहरा असर।

और अब जरा माहौल बदलते हैं धीमी धुनों के बाद अब थोड़ा जोश, क्योंकि अरिजीत सिर्फ रोमांस के गायक नहीं हैं, उन्होंने सफर, उम्मीद, जिंदगी, इन भावनाओं को भी अपनी आवाज से यादगार बना दिया है।

तो दोस्तों, संगीत की इस खूबसूरत यात्रा में हमने सुनी अरिजीत सिंह की आवाज के कई रंग को सुना, रोमांस, दर्द, सूफियाना एहसास, सफर, उम्मीद, जोश और जश्न, सब कुछ। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि हर एहसास को वो अपनी आवाज से नया जीवन दे देते हैं। शायद यही वजह है कि आज भी उनका हर नया गीत श्रोताओं के दिलों में तुरंत जगह बना लेता है। इसी के साथ कार्यक्रम एक ही कलाकार से अब आपका रेडियो दोस्त सदक चाहता है इजाजत, लेकिन भूलिएगा नहीं, रात 9:15 पर लेकर हाजिर होंगे कुछ रोमानी गजलें। 9:30 का वक्त होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम का। जी हाँ, लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा। हेलो अयोध्या, जुड़िएगा, एक घंटे का शो है। 73-76-80-40-90 नंबर डायल करना होगा आपको बस।

0: नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हेलो
3: हेलो सुनो, टेलीफोन नंबर,
4: माय नंबर इज
5: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
6: श्रोताओं, आपने सुना है प्यारा सा प्रोग्राम एक ही कलाकार से, अपने प्यारे आकाशवाणी अयोध्या FM 101.9 MHz से, और रात के 8:45 होने वाले हैं। अब आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या और ठीक 9 न्यूज एट 9।
2: 8:45 होने को हैं, अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया, कहा वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है, ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की, 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया, और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
8: देशर प्रधानमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
8: यह मोर आंतरिक कामना।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
10: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास

0: भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा।
0: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान उन लोगों में आती, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस

0: कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान

0: ईरान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
2: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.
1: Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India. He said the center's Purvodaya vision aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
3: Odisha mein aarthik gatividhiyan

0: The recent encounter was during the 2018 FIFA World Cup qualifiers in 2017. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। न्यूज ऑन एयर पर भी आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए akashvani.gov.in पर आप प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। आइए सुनते हैं महफिले गजल।
2: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
3: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
4: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
5: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
4: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
5: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
4: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
1: प्रोग्राम महफिल गजल में आप सभी का इस्तकबाल कर रहा है आपका रेडियो दोस्त सदक। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कुछ रोमानी गजलें लेकर हाजिर हैं आपके लिए। पहली आवाज गुलाम अली की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी।

0: रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: गजलों की महफिल, महफिल गजल आप समाज फरमा रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। और अगली आवाज है चंदन दास की,

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम महफिल गजल। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर कार्यक्रम को आप न्यूज ऑन एयर ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए akashvani.gov.in पर भी सुन रहे हैं। तो वही रात के 9:30 हो चुके हैं और शुरू होने जा रहा है आपका अपना पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। नंबर होता है 7376 80 40 90। इस पर बात करेंगे इस पहले कॉमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या। आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: DLED, BTC, DHP, D-Pharm, B-Pharm और GNM जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
3: आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
0: भाई आइए शुरू करते हैं आपका ये प्यारा सा प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो अयोध्या। जी हाँ, हेलो हेलो करने के लिए तैयार हो जाइए अपनी दिलचस्प बातों के साथ, अपनी पसंद का गीत ले जाइए इस प्रोग्राम में। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं अपने पहले श्रोता के साथ। हेलो हेलो हेलो।
4: चांद अधूरा है,
0: चांदनी के
4: बिना आसमान अधूरा,
0: सितारों
4: के बिना, और हम अधूरे
0: आकाशवाणी
4: अयोध्या के बिना।
0: अरे से अंदाज
4: में जी हसीना भी मंसूरी बोल रही सर, पालदाना का इंदौर से
0: हसीना जी जुड़ गई हैं। वाह भाई, इंदौर के बारे में, हमारे इंदौर से बहुत सारे श्रोता जुड़ रहे हैं, उज्जैन से जुड़ रहे हैं आखिर। और अभी थोड़े दिन पहले मेरा इंदौर जाना हुआ था हसीना जी। इंदौर बड़ा ही साफ सुथरा, बड़ा खूबसूरत शहर है भाई।
4: जी। तो ये कभी सर एक बार और आइएगा आप।
0: मैं जरूर आऊंगा, पूरी कोशिश रहेगी। इतने खूबसूरत शहर में कौन नहीं आना चाहेगा। लेकिन ये बताइए कि आप लोगों ने अपने शहर को इतना खूबसूरत बनाया कैसे, इतना साफ सुथरा कैसे रखते हैं आप लोग?
4: जी मोदी जी की मेहरबानी है सर, और अपन लोगों का भी योगदान है इसमें।
0: हाँ, मतलब कि हमारा शासन भी सख्त है और जो हमारे लोग हैं वो भी उसका सहयोग कर रहे हैं, कि नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है। ये कौन सा गाना सुनवा रहे हैं सबको आप इंदौर से आज?
4: फिल्म का नाम सर जुदाई, और गाने के बोल हैं मैं तुझसे ऐसे मिलो तेरी जान बन जाऊं। ये सुना वाली भी है।
0: जी। चलिए बहुत शुक्रिया हसीना जी। कुछ कह रहे
4: सर, जीतन वाली का गाना दूसरा है तो आप कौन सा बताए सुनवाएंगे ये बता दीजिए।
0: ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, और आपकी

0: वही जान बन जाता है हमारा ये प्यारा सा प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो अयोध्या। बड़ी ही प्यार से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से हमारे श्रोता लगातार कॉल मिलाते हैं इस प्रोग्राम में। हेलो
1: सर
0: जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं हमारे नन्हे श्रोता?
1: सर बड़े मजार में अयोध्या से।
0: अच्छा, अपना नाम भी बता दीजिए सबको।
1: सर अजय।
0: अजय किस क्लास में पढ़ते हैं अजय?
1: सर फोर्थ।
0: फोर्थ में पहुंच गए हैं, वेरी गुड। तो चलिए खूब मजे से पढ़िए। मजा आता है पढ़ने में कि नहीं आपको?
1: यस सर।
0: चलिए बढ़िया, मजे से पढ़ा करिए। तो गाना आपने बॉर्डर फिल्म का चुना है, हम जरूर सुनाएंगे आपको। बॉर्डर के बाद नई बॉर्डर आ गई है, इसका गाना आपको सुनवाएंगे। और कौन कौन आपके साथ ही प्रोग्राम सुन रहा है सर? अजय कौन कौन प्रोग्राम और सुन रहा है आपके साथ?
1: आदित्य।
0: आदित्य भी आपके साथ हैं। चलिए तो आदित्य और आप दोनों लोग सुनिए फिल्म बॉर्डर का ये प्यारा सा गाना। ठीक है, शुक्रिया हमें फोन करने के लिए।

0: प्यारे से गाना चल रहा था हेलो अयोध्या प्रोग्राम में और प्यारे से श्रोता जुड़ेंगे। हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर?
1: जी सर नमस्कार, मैं इब्राहिम जड़ोरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुर्जर बोल रहा हूँ।
0: लोकेंद्र गुर्जर जी का बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश से, आप जुड़ रहे हैं, हमारे दूसरे कॉलर हैं मध्य प्रदेश से। क्या सुनिएगा आज प्रोग्राम में?
1: आज सर जी फिल्म का नाम है नाम और उसका गीत है बेरिया और बेर, एक वाला गीत सुना, कुछ दोस्त है उनको डेडिकेट भी करना है।
0: डेडिकेट कर दीजिए।
1: हाँ तो सर आपको पहले आपको डेडिकेट है, उसके बाद बिलकिशोर कुशवाहा जी है गोंदन जिला दतिया से और मेहरबान नांगल है तालगांव बहादुर दतिया से।
0: लोकेंद्र जी करते क्या आप?
1: जी सर मैं खेती बाड़ी से जुड़ा हूँ, कृषक हूँ, तो खेती बाड़ी करता हूँ और पशुपालन भी है, भैंसे हैं गाय है, खेती बाड़ी का कार्यक्रम करता हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छा, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, आपका गाना पहुँचा रहे हैं, ठीक है, थैंक यू।
1: जी सर धन्यवाद।

0: आइए इस इंटरल्यूड के बीच बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर, नाम बताएं।
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार
1: सर, मैं बात कर रहा हूँ जिला अम्बेडकर नगर गांव अलनपुर से, शादान बेग।
0: शादान बेग साहब जुड़ रहे हैं जिला अलनपुर, ये टांडा के आसपास, जिला अम्बेडकर नगर।
1: जिला अम्बेडकर, हाँ सर।
0: ये टांडा के आसपास है अलनपुर, कहाँ है?
1: हाजी जी, टांडा से 10 किलोमीटर और पश्चिम पड़ता है।
0: पश्चिम की तरफ, ओके। कौन सा गाना सुनवा रहे हैं आज आप सबको शादब जी?
1: बस वही निकाह फिल्म का दिल रुबा मिले, वही गाना सुनना।
0: दिल की आरजू है कोई दिल रुबा मिले। हाँ हाँ, क्या बात है। क्या करते हैं आप शादब जी?
1: निकाह फिल्म।
0: क्या करते हैं आप? क्या करते हैं
1: सर? बस घर पे रहते ही खेती किसानी सब करते हैं। खेती है अपना जो है, और बाकी जानवर रखे, भैंस है, ये सब इसी में लगे रहते हैं।
0: बहुत बढ़िया, अच्छा काम है।
1: बिहार में रहते किसान सर।
0: अच्छा, तो आप दूर रहते हैं तो जाहिर सी बात है आकाशवाणी अयोध्या को आप कैसे सुनते हैं, रेडियो पर सुनते हैं या मोबाइल पर?
1: नहीं सर, रेडियो तो नहीं, रेडियो था तो वो खराब हो गया इस समय, फिलहाल मोबाइल पे जो है, मोबाइल पे सुनते हैं सर।
0: ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपका गाना सुनवा रहे हैं, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।

0: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपने संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोकरंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोकरंग कार्यक्रम।
1: हेलो अयोध्या में आपका फिर से स्वागत है, आइए जुड़ते हैं अपने श्रोताओं से। हेलो
2: सर,
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं आप?
2: सर मुन्ना फर्मा वाले शहर से बोल रहे हैं। सर
1: मुन्ना फर्मा वाले आप हमारे नियमित श्रोता हैं, इससे पहले कब जुड़े थे मुन्ना जी?
2: सर 10-12 दिन हो गया सर पहले।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, अंतराल के बाद हमारे श्रोताओं को जुड़ना होता है इस प्रोग्राम में, और जिन भी श्रोता जो भी हमारा ये ख्याल रखते हैं उनको बहुत शुक्रिया। किस फिल्म का गाना सुन रहे हैं आज आप?
2: सर बेफा फिल्म का याद याद बस याद रह जाती है सर।
1: यही है ना, याद रह जाए। चलिए तो आप तो बराबर, हाँ याद रह जाती है। बोल दीजिए साहब, बोल दीजिए फिर गाना हम चला देंगे।
2: गीत से गजल बना देंगे, फूल
1: गीत से
2: कमल बना देंगे।
1: हाँ हाँ हाँ, क्या बात है।
2: गीत से गजल बना देंगे, फूल से कमल बना देंगे, समस्त आपका प्यार रहा तो जब जाना भी ताजमहल बना देंगे।
1: वाह भाई वाह, मुन्ना जी बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गाना।

0: और भाई आकाश भाई अयोध्या बुलाता है अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं को। हेलो
1: जी सर।
0: जी नमस्कार, अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी सर, मैं सुल्तानपुर से अहदा गांव से बोल रहा हूँ, त्रिभुवन विश्वकर्मा जी।
0: त्रिभुवन विश्वकर्मा जी हमसे जुड़ गए हैं और आपकी पसंद भी हमें मिल गई है, सनम बेवफा फिल्म से आप सुन रहे हैं। तो
1: जी सर, जी सर,
0: बड़ा ही अलग सा गाना है, चूड़ी मजा ना देगी कंगन मजा ना देगा, है कि नहीं?
1: जी सर।
0: तो आपको ये ही गाना पसंद है, क्या करते हैं आप सर?
1: जी सर, एक खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं।
0: अच्छा करते हैं। आज हमारे साथ ढेर सारे कृषक श्रोता जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कम से कम अभी 6 कॉल्स हमारी हुई हैं और 3 हमारे किसान साथी जुड़े हैं। तो ये जो मौसम है गर्मी का, है ना, ये आपके किसानी के काम के लिए कैसा है? ठीक चल रहा है सब?
1: जी सर, गर्मी ज्यादा है थोड़ा, वो जो धान का लगाया जाता है उसमें थोड़ा गर्मी से कम आता है ना।
0: हाँ, मतलब मेहनत ज्यादा पड़ जाती है ना उसमें, थोड़ा
1: जी सर,
0: कठिन
1: जी सर,
0: होता है काम,
1: थोड़ा पानी गिर जाता है गर्मी से, गर्म होते
0: जी
1: जल जाता है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि बारिश आए और आपका खेत लहलाए, है ना, धान की फसल बढ़िया हो।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: और जुड़ रहे हैं हमारे अगले श्रोता। हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: बहुत स्वागत है भगवान जी आपका।
1: जुड़वा सर जी,
0: जुड़वा फिल्म का गाना सुन रहे हैं आप, कौन सा गाना है?
1: सर जुड़वा फिल्म का दुनिया में आए हो तो लव कर लो।
0: वाह भाई वाह, तो बढ़िया संदेश है कि दुनिया में आए हो तो लव कर लो। हर जो भी इस दुनिया में आया है उसे लव करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए एक दूसरे से, है कि नहीं?
1: जी सर, बिल्कुल सही बोला आपने।
0: क्या करते हैं आप सर?
1: सर खेती किसानी करते हैं और एक छोटे से गांव में रहते हैं सर।
0: बहुत बढ़िया, चलिए हमारे ढेर

0: सारे लगातार कृषक श्रोता जुड़ रहे हैं आज, तो मुझे लग रहा है ये किसान स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है।
1: लेकिन हम तो हमेशा ही सुनते हैं आपका कार्यक्रम, सुबह भी सुनते हैं सर, सुबह भी फोन इन कार्यक्रम आता है उसको भी सुनते हैं, लोकगीत आता है सर उसको भी सुनते हैं सर।
0: बहुत शुक्रिया आपका। और ये बताइए साहब कि कितने दिन पहले आप जुड़े थे इस प्रोग्राम से?
1: जी हाँ सर, करीबन 25 दिन पहले जुड़े थे और हमारी बात अमरजीत सर जी से हुई थी। आपका नाम क्या है सर?
0: मेरा नाम सदक है, सदक
1: जी। सर अमरजीत सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी समझ लीजिए सर, वो आकाशवाणी लखनऊ पे जुड़ते हैं तो उनके माध्यम से आपके कार्यक्रम से जुड़ता हूँ सर।
0: चलिए बहुत अच्छा। देखिए भाई अमरजीत सर तो हैं ही, जितने भी आपके प्रस्तुतकर्ता हैं, प्रेजेंटर्स हैं, और आपका अपना आकाशवाणी भी आपका दोस्त है कि नहीं?
1: जी जी सर बिल्कुल।
0: चलिए बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए, आपकी पसंद का गाना पहुंचा रहे हैं, सुनिए।

0: भाई त्रिदेव जी हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्कार त्रिदेव जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर।
0: तो लाइट का काम आपका कैसा चल रहा है? आप इतने नियमित श्रोता, हमें सब याद हो गया है आप लाइट का काम करते हैं।
1: नहीं, परसों नरसों है।
0: परसों नरसों है काम?
1: 26।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। तो काम लगातार चल रहा है गर्मियों में भी?
1: जी जी सर।
0: अच्छा, गर्मियों में लाइट का काम बढ़ जाता होगा ना थोड़ा सा?
1: नहीं, जनरेटर के काम बढ़ता है, लाइट का काम कहाँ।
0: जनरेटर का बढ़ जाता है, बत्ती जाती है इसका मतलब। चलिए, तो आपकी पसंद का गाना तो हमने निकाल लिया है, बड़ा प्यारा सा है वो, आओ प्यार करें फिल्म से। और कुछ कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में कि गाना सुना दिया जाए आपका?
1: नहीं, गाना सुना दिया।
0: चलिए गाना सुनिए।

0: आओ प्यार करें, आओ प्यार करें के बीच भाई हम तो बात करेंगे इस प्रोग्राम में अपने श्रोताओं से और उनकी पसंद का गाना सुनाएंगे। विनोद श्रीवास्तव जी हमारे लाइन पर हैं, उनसे हम बातें करेंगे इस कॉमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का, लेकिन घबराए नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
2: जब भी बाहर निकलें कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
1: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
2: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
1: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
2: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
1: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: सखी सुनते हो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
8: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनते। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
7: हाँ, जहाँ ज्यादा से सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा।

0: रा के साथ कई सकत इन्फॉर्माइज हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
4: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
3: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
4: जी हाँ, और वो है योग।
3: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
4: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
3: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
4: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
3: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
2: योग करिए, निरोग रहिए।
5: भई कल 21 जून है, योग दिवस, भूल मत जाइएगा। योग करना जरूरी है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हमारे अगले श्रोता बात करेंगे इस प्रोग्राम में। हेलो
6: जी। हाँ, हेलो। हाँ सर
5: जी, नमस्कार। विनोद श्रीवास्तव जी, आपको बहुत देर तक इंतजार करवाया, माफी चाहते हैं।
6: नहीं, कोई बात नहीं। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।
5: थैंक यू सर। क्या करते हैं विनोद सर आप?
6: हम पहले कोचिंग वोचिंग पढ़ाते थे, टीचर थे प्राइवेट सेक्टर में।
5: जी जी। और अभी आज आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, और कौन कौन सा कार्यक्रम सुन लेते हैं आप?
6: हम यही सुनते हैं और जो भी मतलब लग जाता है मीडियम वेव पे, जो भी प्रोग्राम आते हैं सुबह शाम सुनते रहते हैं।
5: जी बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम अच्छे लगते हैं सब आकाशवाणी अयोध्या के आपको?
6: हाँ, और सखी सहेली आता है जो 2:30 बजे, वो भी सुनते हैं।
5: बहुत अच्छा। हाँ, वो घर का बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, वो जरूर सुनना चाहिए। चलिए सर, तो आपकी
6: किससे बात हो रही है? अपना नाम बता।
5: मेरा नाम सदक है, सदक नाम है मेरा।
6: अच्छा। हाँ, नाम आता है।
5: जी बहुत शुक्रिया सर, आपकी पसंद का गाना हम पहुंचा रहे हैं। ठीक है
6: जी। हेलो सर, मैं अपनी पत्नी के लिए वो जो गाना जो डेडिकेट करना चाहते हैं।
5: जरूर जरूर लीजिए। भाभी जी का नाम बताइए।
6: हाँ, मीना श्रीवास्तव है उनका नाम।
5: चलिए बहुत शुक्रिया।
6: उनको फोन दें?
5: दे दीजिए, आपकी इच्छा है तो जल्दी से बात कर लें।
6: हाँ, दे दे रहे हैं।
5: जी जी, बात कराइए मैम से।
6: बात करिए।
5: नमस्ते मैम।
7: भाई साहब नमस्ते।
5: नमस्कार, कैसी हैं आप?
7: ठीक है, अपना बताइए।
5: देखिए भाई साहब ने आपके लिए गाना इतना अच्छा सा चुना है और आपको वो सुनवा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है ये।
7: ठीक है।
5: चलिए तो सुनिए, उन्होंने आपके लिए डेडिकेट किया है, सुनिए गाना।
7: ठीक है।
8: हेलो, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ।

0: भई देखें अब टेलीफोन के जरिए अपने प्यारे आकाशवाणी अयोध्या से कौन जुड़ रहा है। हेलो,
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं और कहां से बात हो रही है सर?
1: राजू चौधरी बोल रहा हूं सर, अलीगढ़ से।
0: अलीगढ़ से जुड़ रहे हैं राजू चौधरी जी, बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप?
1: सर खेती बाड़ी करता हूँ, मैं भी किसान ही।
0: वाह वाह वाह, किसानों से भरा है आज हमारा ये हेलो अयोध्या का प्रोग्राम। बहुत अच्छी बात है और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम आप लोगों को खुश कर पा रहे हैं आकाशवाणी के इस मंच के जरिए और आपको एंटरटेन कर पा रहे हैं सर।
1: तो जी बिल्कुल, आज बहुत सारे किसान साथियों ने कॉल किया।
0: हाँ, आज किसान स्पेशल लग रहा है मुझे ये। तो
1: जी,
0: ये बताइए, आपने गाना भी बड़ा अच्छा अर्पण फिल्म का चुना है ना, तौबा कैसे है नादान। चलिए, तो
1: यही वाला
0: पुराने गाने आपको पसंद लगता है काफी?
1: जी बिल्कुल, हमेशा एवरग्रीन गाने हैं कुछ जिनको सुनने को मन करता है सर।
0: लेकिन हम तो ये कहेंगे अपने सुनने वालों से कि भाई जो लोग नए गाने पसंद करते हैं वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हों, ताकि प्रोग्राम में हर तरह के गीत बजे एक घंटे के इस शो में, है कि नहीं?
1: बिल्कुल सब अच्छा, नए कभी नया कभी पुराना। हाँ। उससे थोड़ा अच्छा लगता है,
0: अच्छा लगता है मिला जुला। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपकी पसंद का गाना हम पहुंचा रहे हैं, सुनिए अलीगढ़ में, ठीक है? और सबको सुनवाइए।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्कार।

0: आइए जुड़ लेते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो जी सर। हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं। दूसरे हेलो पे आप ना बोलते तो मैं गाना बजा देता भाई। बताइए अपना नाम बताइए।
1: रुकपुर से बोल रहे हैं
0: जी। रोहित नाम है आपका?
1: हाँ रोहित
0: जी। जी तो क्या करते हैं आप रोहित?
1: पढ़ाई करते हैं सर।
0: चलिए बहुत अच्छा करते हैं। और आपकी पसंद पर हम एक नया गाना सुनवाएंगे आपको, धुरंधर 2 फिल्म का, ठीक है? चलिए ठीक है रोहित जी, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: इस नए गाने के बाद हम जुड़ेंगे अपने इस प्रोग्राम के अंतिम श्रोता से संभवतः। आइए बातचीत कर लेते हैं इनसे। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
1: अशोक कुमार गुप्ता बोल रहे हैं सर।
0: कहाँ से फोन लगाया अशोक जी आपने?
1: नैनीसागर से।
0: ये कहाँ पर है?
1: ये अपने मध्य प्रदेश में।
0: अच्छा, मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सबसे पहले इंदौर से फोन आया और मध्य प्रदेश से खत्म भी हो रहा है। हमारे मध्य प्रदेश

0: के श्रोता बहुत जुड़ रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या से। क्या खास बात है भाई, मध्य प्रदेश का खास प्यार हमको मिल रहा है इस प्रोग्राम में। चलिए, कुली फिल्म में कौन सा गाना सुनना है आपको? कुली बोल रहे थे ना आप?
1: सर, कुली पिक्चर का गाना सुनना है, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा।
0: एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, तो कभी आपका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ?
1: नहीं, पहले हुआ था सर।
0: ये वाला हुआ था ना जो इसमें बताया गया, ये वाला एक्सीडेंट?
1: हाँ, पहले हुआ था सर। कम से कम करीब 20 साल हो गए सर।
0: अच्छा, ठीक है आप अच्छे से? हेलो, मैंने कहा एक्सीडेंट के बाद ठीक है ना आप, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो बहुत अच्छी बात। चलिए, अब आपका जो वक्त बचा है उसे आपके गाने तक हम पहुंचाते हैं, आपके गाने के लिए। हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? जी,
1: इलाज वहाँ पे कराया था गोरखपुर।
0: अच्छा, तो ठीक हो गया ना एकदम से? इलाज कराने के बाद कोई दिक्कत? कहाँ पे चोट लगी थी आपको?
1: हाँ, ठीक है
0: जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गाना हम सब मिलकर, ठीक है? हमें फोन किया आपने, बहुत शुक्रिया। फिर जुड़िएगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में मैं तकनीकी सहयोग दिया अश्विनी कुमार शुक्ला जी ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जयंत पटेल, और अपने दोस्त सदक को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। रात के 10:30 हुए हैं। आइए आपको लिए चलते अपने मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून।

0: पृथ्वी पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से एफएम पर ही आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार